खत्म हो जाएगा, लेकिन जब मेंटेनेंस के काम शुरू किए जाते हैं तो पता चलता है कि कुछ एक्स्ट्रा दिन भी लग सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक काम हो रहा है और उम्मीद वही है कि जो टाइम फ्रेम हमें दिए गए हैं उसके अनुसार ही काम इस पर जो है, जो मेंटेनेंस के काम जो है वो पूरे हों। तो इत्मीनान रखें, इंतज़ार करें, बहुत ही जल्द 1386 AM फ्रीक्वेंसी विल बी बैक। लेकिन तब तक आप निराश ना हो, डिजिटल साउंड में प्रोग्राम सुने। जिस तरह से अगर आप वेलिंगटन चले जाएं, क्राइस्टचर्च चले जाएं, तो वहाँ के हमारे जो सुनने वाले हैं वो तो FM फ्रीक्वेंसी पर प्रोग्राम सुनते हैं एकदम स्टीरियो साउंड में। तो ओकलैंड वासियों, आप भी ज़रा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम सुने और डिजिटल साउंड जो है इसका मजा लें। लेकिन यस, 1386 AM विल बी बैक वेरी सून।

बिल्कुल सुनते रहो ट्रिपल एस विद सागर। हर इतवार की सुबह 9 से लेकर दोपहर 2 के बीच हम आपका साथ देते हैं और इस प्रोग्राम में आप दोस्त भी जमकर साथ देते हैं। हमने थोड़ी देर पहले पिछले घंटे में लैंडस्केप और ट्रेवलिंग की बातें की और माउंटेन्स की बातें की थी, और जैसे ही हमने इस बात का जिक्र किया तो कुछ दोस्त हैं हमारे जिन्होंने शेयर किया कि वो भी कहाँ कहाँ पर गए हैं, क्या कुछ लैंडस्केप्स उन्होंने भी देखा है। और विमल चंद हमारे एक और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, उन्होंने भी एक कासल विला वाला जो जगह है वहाँ से कुछ तस्वीरें हमारे साथ शेयर की। कासल हिल विलेज जो कि साउथ आइलैंड में है, वहाँ पर ये गए हुए थे। उन्होंने तुरंत कुछ फोटोज हम तक पहुँचाया और कहा कि साउथ आइलैंड में है ये, एंड इट्स ए वेरी नाइस सीनरी एरिया। तो आप भी नोट कर लें जगह जो है, जो एड्रेस उन्होंने हम तक पहुँचाया, जो फोटोज भेजे, कासल हिल विलेज अगर आप जाना चाहें तो ये भी चेकआउट कर सकते हैं। और कासल पॉइंट जो है ये अलग है, ये नॉर्थ आइलैंड में है मास्टरटन से आगे, एंड ये भी बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लगेगा कि आप किसी एक फिल्म के सेट पर आ गए हैं। वो फिल्म याद है आपको, चलते चलते, शाहरुख खान और रानी मुखर्जी वाली, सुनो ना सुनो ना वो गाना, और भी कुछ गाने जिस तरह से, जिस बैकड्रॉप के साथ पिक्चराइज की गई थी। अगर आप कासल पॉइंट जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप चलते चलते के गानों की फिल्म सेट पर आ गए हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो मौका लगे वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यस विमल चंद, थैंक यू ब्रो ये शेयर करने के लिए। और लंच ब्रेकफास्ट का भी हमने जिक्र किया, कुछ दोस्तों ने उस बात को लेकर भी कुछ फोटोज वीडियोज हमसे शेयर किए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी ही देर में। आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी दोस्त अब इस नए घंटे में हमारे साथ शामिल हो गए हैं, आपने अपने दिली पैगाम हम तक पहुंचाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस थोड़ी देर में आपको भी हम शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। गुड आफ्टरनून, मैं हूं सागर।

0: बच्चों बताओ डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
1: मैम, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम।
0: जीनियस। अब बताओ रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
1: मैम, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान।
2: बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान। फोन 09255500। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: हार्वी नॉर्मन सुपर वीकेंड। स्पेंड $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. That's 10% of your purchase price back in bonus gift cards. Shop in store and online. See stores or online for more details. Harvey Norman Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. Must end today. Terms, conditions and exclusions apply. Bonus gift cards valid for 36 months.
2: अरे भाई साहब आइए, कैसे हैं?
4: नमस्ते नमस्ते। मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
2: एग्जैक्ट मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
4: प्यारा मंडप तो है पर खर्चा बड़ा किया होगा भाभी।
2: अरे नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एग्जैक्ट मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
0: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09265050505 और विजिट एग्जैक्ट मंडप फेसबुक पेज।
2: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्किस पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट।
5: एट बनिंग्स यू नो यू गोइंग टू गेट द लोएस्ट प्राइसेस एवरी डे, बिकॉज़ वेयर यू फाइंड अ कंपेटिटर्स लोअर प्राइस ऑन द सेम इन स्टॉक आइटम, वी विल बीट इट बाय 15%। कंडीशंस अप्लाई, सी वेबसाइट फॉर डिटेल्स। लोएस्ट प्राइसेस आर जस्ट द बिगिनिंग।
6: ये है न्यूजीलैंड का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन, रेडियो तराना।
7: हेलो।

1984 की ये फिल्म थी और फिल्म का नाम मेरा फैसला। लक्ष्मी प्यारे की मौसीकी पर आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा और आवाजें थी सुरेश वाडिकर और साथ में आशा जी की। फिल्मी पर्दे पर इस गीत को पिक्चराइज किया गया डैशिंग संजय दत्त, जो नए नए बॉलीवुड में आए थे, और साथ में बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जो नहायत ही खूबसूरत हैं आज की तारीख में भी। और इस गीत का जो पिक्चराइजेशन ये भी बहुत ही लाजवाब रहा है। कभी मौका लगे तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। फिल्म का नाम मेरा

0: फैसला, जिसे 1984 में रिलीज की गई थी।
1: बेस्ट ऑफ म्यूजिक, बेस्ट ऑफ शोज, दिस इज रेडियो तराना।
2: मम्मी मम्मी, एयरफोन कान माथी निकाल जरा।
3: खूब खूब आभार,
2: धन्यवाद। इंडेलेबल होम्स,
4: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट, इंडेलेबल होम्स। फोन 0800-233-111।
5: यार मुझे फीजी जाना था।
6: कब जाना है?
5: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
6: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
5: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
6: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं, और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
7: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 0067965202228।
6: एक्सप्लोर फीजी द कोस्टल वे।
8: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.
9: If you're out there working hard, it's time to put down the tools and pick up a pie. Just head into your nearest Zed and show your Zed business fuel card to get $1 off any pie. Now that's worth going to work for. Ends 25 May while stocks last.
10: Get the tick from Mum this Mother's Day and shop massive store-wide savings this weekend at Briscoe's. Whether it's cozy bedding or kitchen favourites, shop Mum-approved deals and massive store-wide savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
0: दोस्तों, अगर खबरों की ओर देखें तो एक खबर जो है काफ़ी मीडिया में आजकल और हर तरफ ये छाई हुई है कि न्यूजीलैंड में ख़ास तौर से कि ये बात आई कैसे। पहले तो ये सवाल उठा और फिर अब इस बिल को पास करने की कोशिश की जा रही है। लेबरलिस्ट MP प्रियंका राधाकृष्णन की ये बिल है, और बिल जो है ये इसमें मांग ये है कि न्यूजीलैंड में विजिनेटरी जो है टेस्ट ये बैन कर दिया जाए। अब पहले तो जनता ये सवाल कर रही है कि न्यूजीलैंड में विजिनेटरी टेस्ट करता कौन है, मतलब कुंवारापन ये कहां पर इसकी टेस्ट होती है और कौन करता है ये। हमने तो कभी नहीं सुना, क्या आपने कभी सुना कि कहीं पर किसी के साथ विजिनिटी टेस्ट जो है कुंवारापन का इम्तहान जो है ये देना पड़ा हो। अब ये मेंबर्स बिल जो है ये पार्लियामेंट के समक्ष रखी जाएगी, जो कि बैलेट से निकाली गई है, और इसके तहत ये मांग की जा रही है कि मेंबर्स बिल ये दे सीकिंग टू बैन विजिनिटी टेस्टिंग इन न्यूजीलैंड। क्या आपको पता है, क्या कभी आपने सुना किसी से अपने समाज में कि या फिर बाहरी समाजों में कि किसी के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, उनको फोर्स किया गया या फिर उन पर उनसे ये मांग की गई कि आप अपने कुंवारेपन का टेस्ट करें, अपने वर्जिनिटी का टेस्ट करें। और अगर आप सोशल मीडिया पर न्यूजीलैंड की जो जनता हैं उनके कमेंट्स देखें तो सभी चकित है कि आखिरकार ये बात आई कैसे। इट्स नॉट अ न्यूजीलैंड थिंग। अगर मान लीजिए कि ऐसे हो रहे हैं यहां पर, तो कौन कर रहा है ये, कहां पर ये वर्जिनिटी टेस्ट की जा रही है, किस समुदाय के लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। जितने भी SSS के सुनने वाले हैं, डू यू नो एनीवन, क्या आपको पता है किसी के साथ ऐसा हुआ है, किसी को फोर्स किया गया। अब इस बिल को अगर पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाए तो लेट्स सी कि क्या इसे वोट्स मिलते हैं या नहीं। और सवाल अभी भी वही रहता है कि न्यूजीलैंड में आखिरकार किसके साथ, कहां, कैसे ये हुआ कि ये बिल लाना ज़रूरी हुआ, क्योंकि ज़्यादातर कीवीज जो है, न्यूजीलैंडर्स जो है, जो यहाँ के हैं, जो यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, वो काफ़ी हैरान हो गए ये सुनकर, ये देखकर, ये पढ़कर कि आखिरकार ये टॉपिक कहाँ से आई। न्यूजीलैंड में तो पहले किसी ने कभी ना तो ऐसा सुना, ना तो देखा, और ना किसी से इसके बारे में कुछ जानकारी मिली। जितने भी दोस्त फिलहाल प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर है? क्या आप जानते हैं कि किसी के साथ ऐसा हुआ, किसी को अपने कुंवारेपन का इम्तिहान देना पड़ा, विजिनिटी टेस्ट? और सवाल ये भी है कि क्या ये दोनों सेक्सेस के लिए होगा, मेल एंड फीमेल? और अगर सिर्फ फीमेल के लिए हुआ तो क्यों? इट विल बी सेक्सिस्ट। आप क्या सोचते हैं कि क्या ये बिल पास करनी चाहिए? और उससे भी बड़ा सवाल कि न्यूजीलैंड में आखिरकार ऐसा काम कौन लोग कर रहे हैं, कहां से आते हैं ये लोग?
1: यू आर लिसनिंग टू योर फेवरेट हिंदी रेडियो स्टेशन, रेडियो तराना।

0: You are listening to your favorite Hindi radio station, Radio Tarana.
1: दोस्तों इधर 32 मिनट हो गए हैं दिन के 12 बजकर और अभी हम जिक्र कर रहे थे कि समाचारों में एक बिल जो है पार्लियामेंट के समक्ष रखी जाएगी वो है वर्जिनिटी टेस्ट बिल। अगर हम आपसे ये पूछें कि अगर आपसे ये डिमांड की जाए, आपसे दरख्वास्त की जाए कि हम आप अपने वर्जिन होने का सबूत पेश करें, टेस्ट करें, तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे, अग्री होंगे टेस्ट पर जाने के लिए, या फिर आपके बेटे या फिर बेटी से ये दरखास्त की जाए तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी कि आप सपोर्ट करेंगे कि हाँ इनको वर्जिनिटी या फिर कुंवारे रहने का जो सबूत ये देना जरूरी है। आखिरकार आज के जमाने में कौन ऐसा करता है? और इसी बात को लेकर लाइबा लिस्ट एमपी प्रियंका राधाकृष्णन ने इस बिल को तैयार किया है और अब इस बिल को बैलेट से ड्रॉ किया गया है, पार्लियामेंट के समक्ष हाउस के समक्ष ये रखी जाएगी और देखते हैं कि क्या इसको समर्थन मिलता है या नहीं। क्या आप इस बिल का समर्थन करते हैं? लेकिन सवाल फिर वहीं जाकर अटक जाता है कि आखिरकार इस बात की नौबत यहाँ न्यूजीलैंड में क्यों आई? कौन सा वो समाज है, कौन सी वो समुदाय है जो ऐसा कर रही है कि इस बात की नौबत यहाँ तक आ गई कि इस बिल को आम पेश करना है और इस बात को लेकर इस पर प्रतिबंध लगानी है, बैन करना है? तो आप भी जरा सोचिए कि अगर आपके किसी एक फैमिली मेंबर को किसी ने यह कहा कि आप अपने वेजिन होने का टेस्ट दें तो क्या आप सपोर्ट करेंगे?
2: फ्यूल का दाम रोज बढ़ रहा है और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है इफिशियंट ड्राइविंग का और वेस्ट सिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, इफिशियंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो एमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट westcityautogroup.nz और सर्च ऑन सोशल्स फॉर वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप।
3: हार्वी नॉर्मन सुपर वीकेंड, स्पेंड $500 और मोर ऑन सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स एंड गेट 10% ऑफ योर परचेस प्राइस इन हार्वी नॉर्मन बोनस गिफ्ट कार्ड्स। दैट्स 10% ऑफ योर परचेस प्राइस बैक इन बोनस गिफ्ट कार्ड्स। शॉप इन स्टोर एंड ऑनलाइन, सी स्टोर्स और ऑनलाइन फॉर मोर डिटेल्स। हार्वी नॉर्मन सुपर वीकेंड, स्पेंड $500 और मोर ऑन सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स एंड गेट 10% ऑफ योर परचेस प्राइस इन हार्वी नॉर्मन बोनस गिफ्ट कार्ड्स। मस्ट एंड today. Terms, conditions and exclusions apply. Bonus gift cards valid for 36 months.
4: Join the Great Big Balance Check at New World. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
5: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे तमाकी तुरुकी ओटुगेदर ओकलैंड।
6: रेडियो तराना का है ये प्लान, बिजनेस को बनाए सुपरमैन।
7: अपने बिजनेस को लेकर जाइए नई ऊंचाइयों पर बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द लीडिंग रेडियो स्टेशन, रेडियो तराना।

0: Call Ajeshni today on 02196-1386 for sales on Tarrana. So yaad rakhna, number ghumana, 02196-1386 for advertising on Radio Tarrana.
1: और एक दोस्त ने मैसेज किया और उन्होंने कहा कि आई विल नॉट अग्री टू गेट दिस टेस्ट डन एंड टेल देम टू गेट एफ. आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमसे शेयर कर सकते हैं. आखिरकार ये नौबत आई क्यों यहाँ न्यूजीलैंड में? आखिरकार रियली सीरियसली
2: यू आर ट्यून्ड इन विद सागर.

0: are tuned in with Sagar.
1: और आइए दोस्तों देखते हैं अब हमारे जो दोस्त हैं जो ट्रिपल एस के सुपरस्टार्स हैं अब क्या कर रहे हैं जबकि 12 बज चुके हैं. लंच बन गया है क्या आपके घर पर या फिर लंच आप कर चुके हैं? मेहमान भी आ चुके हैं, मेहमान नवाजी के लिए आप कहीं जा रहे हैं और आज ब्रंच के लिए क्या कुछ खाया है आपने? आइए चेक करते चलें कि हमारे दोस्त अब क्या कर रहे हैं. ट्रिपल एस सुपरस्टार्स, याद रहे आज है 3 तारीख मई और ऐसे में आप सभी का एक बार फिर से आज के इस प्रोग्राम में हम स्वागत कर रहे हैं. कुछ दोस्त बस एकदम चिल कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से. और चलते हैं इधर लवाहट जहां से अली साहब आपका भी साथ हो गया है और ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम के जरिए आपने अपने बेस्टी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की संगीता जी को याद फरमाया है. तो आइए आप दोनों का हम स्वागत कर रहे हैं ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम में. इसके साथ साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए दीपक टैला ऑल द वे फ्रॉम वेलिंगटन से आपके साथ है प्रकाश बलसारा, आप दोनों का हम स्वागत कर रहे हैं. चलते हैं उधर सिडनी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से विनी प्रसाद आप भी हमेशा हमारे साथ शरीक हो जाया करती हैं, शामिल होती हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपका स्वागत कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में. आपके हस्बैंड हैं रितनेश राज, बच्चे हैं वियाना और ऋत्विक, उनको भी हम आज प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं. अगले तराने में इधर अनुज रोहिणी कुमार गुड आफ्टरनून और इधर पूर्णिमा चंद आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं, वेरी गुड आफ्टरनून आपको भी. विकास नंद और रजनी आप भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं उधर मनिकाओं से. और आइए अगले तराने में विकास नंद और रजनी या फिर रागनी आप दोनों को हम शामिल कर रहे हैं. पत्नी का नाम बदल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो विकास और रागनी आपका हम स्वागत कर रहे हैं. शुक्रिया आप दोनों का साथ देने के लिए. 21 मिनट रह गए हैं 1 बजने में. सुनील मुरार पटेल आप भी हमारे साथ हैं और इधर उदय सिंह जी और संजना सिंह जी मनीरेवा से आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. और आज सुबह आपने ये मैसेज किया था और आपने कहा कि इन नगमों के साथ, इन गानों के साथ दूध वाला चाय और मोटा रेवा बटा ब्रेड पे सवेरे सवेरे. तो उम्मीद है कि सुबह वाला आपका वो ब्रेकफास्ट जो रहा उदय जी और संजना जी, आपने ज़रूर इन्जॉय किया होगा. और रेवा बटा एकदम मोटा वाला आपने अपने ब्रेड पर लगाया और दूध वाले चाय के साथ इसका मज़ा लिया. थैंक यू शेयर करने के लिए. आगे बढ़ते हैं और फ्लैट बुश से अवी और विकी आप भी हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं, शुक्रिया साथ निभाने के लिए. चायानक सोलांकी आप भी हमारे साथ हो गए हैं, आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं. सोनी चंद्रा हैं और साथ ही साथ कार्यक्रम में दीपक और मंजू गौतम और न्यूलिन से नंद कुमार जी. और इसके साथ साथ इधर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए स्नेह शर्मा आपको भी आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं. जय सिंह आपका भी स्वागत हो है आज के इस प्रोग्राम में. मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से अजय ठीकम और दीपिका ठीकम, आइए इस गीत में आपको भी हम साथ लिए चलें. साथ ही साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए शाहजहां खान आपका भी हम इस्तकबाल कर रहे हैं. पापा टोए टोए से मनीषा कुमार और इसके साथ साथ इधर बिमला राबिया अली आपका भी हम इस्तकबाल कर रहे हैं. और भी कई दोस्त आहिस्ते आहिस्ते कार्यक्रम से जुड़े जा रहे हैं. ज्ञान मुदलियार जी आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं. ओके इधर ब्रेकफास्ट की बातें हुई तो चलते हैं उधर चीकू हसन आपके घर पर वेलिंगटन में, जहां पर पेनकेक टावर आपने तैयार किया और पेनकेक के साथ साथ वो स्किपी ब्रांड का पीनट बटर ये बड़े चाव के साथ आप इंजॉय कर रहे थे ब्रेट और आइजेक के साथ. वीडियो शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और पेनकेक टावर जो आपने उस बड़े से प्लेट में बनाया, अब उस पेनकेक टावर के सामने प्लेट छोटा लग रहा है. और जो एक्साइटमेंट आपने दिखाई जिस आवाज़ में आपने इस वीडियो को बनाया और हमसे शेयर किया, थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि वो आइजे की आवाज़ थी. जो एक्साइटमेंट पेनकेक देखकर और स्किपी ब्रांड का जो पीनट बटर देखकर जिस तरह से एक्साइटेड हुई आप, उम्मीद है आपने एकदम दिलो जान से वो जो पेनकेक और स्किपी पीनट बटर इन्जॉय किया होगा. इसके साथ साथ और भी कुछ दोस्त हैं और एक और दोस्त हैं जिन्होंने दूध वाले चाय और टोस्ट और बटर साथ में जैम ये फोटो भी हमसे शेयर की. और उन्होंने भी लिखा कि आफ्टर सो लॉन्ग आई एम हैविंग जैम बटर टोस्ट, यमी यमी इन माई टमी। तो उम्मीद है कि आपने भी अपना टोस्ट और जैम बटर के साथ इंजॉय किया होगा। आइए आप सभी को कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं, शुक्रिया साथ निभाने के लिए, और इसी तरह ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। फिलहाल वेलकम
0: वेलकम फ्रेंड्स टू द शो दैट नेवर एंड्स, आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस, यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव टू द बीट। सो देन व्हिच बीट वुड यू लाइक? दोस्तों कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
2: नो नो।
0: सांबा?
2: नो नो।
0: रॉम्बा?
2: नो।
0: सांबा?
2: नो।
0: टेक्विला?
2: नो।
0: टैंगो?
2: नो।
0: चार्ल्सटन?
2: नो।
0: पोल्का?
2: नो।
0: नो?
2: नो।
0: तो फिर क्या हो? वन
2: नो।

0: यार मुझे फीजी जाना था।
1: कब जाना है?
0: दिसंबर की छुट्टियाँ हो जाए तब जाएंगे।
1: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
0: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
1: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियाँ हैं, और गाड़ियाँ अच्छी कंडीशंस में।
2: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 00679-652-0228।
1: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।
3: घर बनाना स्टार्ट किया है, अब तो टेंशन ही टेंशन है।
4: बिल्डर कौन है तुम्हारा?
3: अभी डिसाइड ही नहीं किया, सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं।
4: यार सिंपल है, KMB कंस्ट्रक्शन से बात करो।
3: क्या स्पेशल है उनमें?
4: अरे वो घर ऐसा बनाते हैं बिना स्ट्रेस, टाइम पे और बजट के अंदर। 18 सालों का एक्सपीरियंस है ऑकलैंड में, और जो काम लेते हैं कंप्लीट करके ही देते हैं। भूपेंद्र कुमार को कॉल करो 021-874-871 पर, या विजिट करो kmbconstruction.co.nz।
5: Get the tech from mum this Mother's Day and shop massive store-wide savings this weekend at Briscoe's. Whether it's cozy bedding or kitchen favourites, shop mum-approved deals and massive store-wide savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
6: चाहे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वेस्ट सिटी GWM हवेल, हवेल की हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पर डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेला और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट westcityautogroup.nz और सर्च ऑन सोशल्स फॉर वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप।

0: मॉर्निंग बज विद जिलेश।
1: दोस्तों, पेट्रोल के बढ़ते दाम से सिर्फ आम इंसान ही नहीं जूझ रहे, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो भी इन बढ़ते दामों से जूझ रही हैं कि किस तरह से पेट्रोल के जो दाम ये बढ़ रहे हैं और इसका असर आम इंसान से लेकर बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस तक सभी झेल रहे हैं। और अब दी स्काई सिटी जो है ओकलैंड में, इन्होंने ये तय किया है आम इस बढ़ते दाम को देखते हुए कि अब वो अपने कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो बेच डालें। और ये तय किया गया है कि दी आईआई सेंटर जो कि स्थित है 99 एल्बर्ट स्ट्रीट ओकलैंड सिटी में, जिसका वैल्यू है $28.9 मिलियन, वो अब इसे बेचने के विचार में है। तो स्काई सिटी जो है ये उनकी प्रॉपर्टी है 99 एल्बर्ट स्ट्रीट, जहां पर आईआई सेंटर स्थित है। अब स्काई सिटी ये सोच रहे हैं कि महंगाई के ज़माने में क्यों ना इस प्रॉपर्टी को $28.9 मिलियन या उससे ज़्यादा अगर मिलता है तो बेच डालें और कुछ पैसे कमाएं, कुछ कैपिटल बनाएं। तो अब देखिए, ये एक ऑफिस ब्लॉक है और कुछ और भी इनके प्रॉपर्टीज़ हैं ओकलैंड सिटी में जो ये बेचने की सोच रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ इनके उधर विक्टोरिया स्ट्रीट में भी है, कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़। तो अब स्काई सिटी भी पीछे नहीं है या फिर बच के नहीं है, उनको भी बढ़ते पेट्रोल के दाम जो हो रहे हैं इसका झटका लगा है। और भी कहां पर क्या कुछ हो रहे हैं इस पर अपडेट्स और जानकारियां आपसे हम शेयर करते रहेंगे। फिलहाल आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ें, और भी कुछ दोस्त हैं जो साथ दे रहे हैं उनको भी शामिल करते हैं। चलें इस बार चलते हैं क्राइस्ट चर्च, यहां से मैसेज आया है और मैसेज पहुंचाए हैं ज्योतिषानंद आपने, और ऑनलाइन प्रोग्राम का मजा ले रही हैं और चटक ब्राइट मौसम है क्राइस्ट चर्च में, उसका भी मजा ले रही हैं अपने हस्बैंड रोनेश नंद के साथ। आपके जो बड़कऊ है और बड़की जो है यहाँ ओकलैंड में, उनको भी शामिल कर रहे हैं एक बार फिर से रोनेश नंद के बड़े भाई विकास नंद, और ज्योत्सना आपकी जो बड़की है रागनी, उनका भी स्वागत कर रहे हैं आज एक बार फिर इस कार्यक्रम में। और आइए आपको इस नगमे में हम साथ लिए चलें, और साथ ही साथ कुछ और भी दोस्त हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे चलकर आप तमाम दोस्तों को आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करते रहेंगे। कुछ दोस्त हैं जो टिकटॉक अपलोड करने वाले हैं, एडिट कर लिया है आपने, अगर नहीं तो कर लें, समय रहते अपलोड कर दीजिए।

0: पिछले साल आप में से कितने दोस्त नॉर्थ हार्बर स्टेडियम में थे और ब्लूज और मोना पैसिफिका का खेल देखने के लिए गए थे लास्ट ईयर? याद है आपको, लास्ट ईयर मोना पैसिफिका ने ब्लूज को हराया था और सभी ने ये सोचा था कि इतिहास जो है शायद दोबारा रिपीट किया जाए इस वर्ष कल रात्रि को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और कल जो खेल हुआ उधर नॉर्थ हार्बर स्टेडियम में, उसी जगह जहाँ पिछले साल ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने थे, इसमें ब्लूज ने अपना बदला लिया और इन्होंने मोना पैसिफिका को 45-19 से पराजित किया। और दूसरी ओर उधर हाइलैंडर्स और फिजियन ड्रोआ के बीच जो खेल हुआ सुपर रग्बी के तहत, कल ये खेल खेला गया और इसमें फिजियन ड्रोआ ने हाइलैंडर्स को 24-14 से पराजित किया। और भी कहां पर क्या कुछ खेल हुए हैं, क्या कुछ होने वाले हैं, इस पर अपडेट्स और जानकारियों के लिए हमारा फेसबुक और सोशल मीडिया साइट्स ये फॉलो करते रहें।
1: मेरी पसंद सोमवार रात 7 से हेमंत के साथ।
2: रेडियो तरवाना टाइम चेक,
3: प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स। ईट बेटर लिव बेटर विद कशिश फूड्स।
0: हाय दोस्तों, ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम में आखिरी बार अपने जो घड़ी का समय है वो हमारे घड़ी से मैच कर लें। कशिश फूड्स की ओर से दिन के 1 बज चुका है।

रेडियो तराना का यह ब्रॉडकास्ट आप एंजॉय कर रहे हैं 155 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस ऑकलैंड सिटी से। और ऐसे में इधर ऑनलाइन कई दोस्त हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए साथ दे रहे हैं, उधर वेलिंगटन में 105.3 एफएम फ्रीक्वेंसी पर, और दुनिया के कोने कोने से हमारे साथ ही जुड़ जाते हैं फेसबुक के जरिए, तो इसके लिए भी शुक्रिया। और याद रहे रेडियो तराना 24/7 आपका साथ देता है। मेरे और आपकी मुलाकात अक्सर होती है इतवार की सुबह 9 से दोपहर 2 के बीच, और आजकल हम मंगलवार की रात भी पिछले कुछ सप्ताह से आपका साथ दे रहे हैं हमारे साथी अजीम की गैर हाजिरी में प्रोग्राम लव इज इन द एयर में। और उम्मीद कर रहे हैं कि इस आने वाले मंगलवार की रात 7 वाले समाचारों के बाद से लेकर रात 12 तक एक बार फिर आप दोस्त लव इज इन द एयर के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ जाएंगे।

बिल्कुल, ट्रिपल एस का यह साप्ताहिक प्रोग्राम हर इतवार को आपने पेश करते हैं सुबह 9 से दोपहर 2 के बीच। आप दोस्त भी बड़े प्यार से, बड़े ही मोहब्बत और शिद्दत के साथ इस प्रोग्राम से जुड़ जाया करते हैं। इसके लिए आप तमाम दोस्तों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मुख्तलिफ नगमे आप लेकर आते हैं और कुछ वो नगमे, कुछ वो तराने जिनकी आवाज़, अंदाज और अल्फाज आप तमाम दोस्तों के दिलों को टच कर जाते हैं। और कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिनके मुरीद हम भी होते हैं, आप भी होते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही हम कलाकारों को, मतलब रियल सिंगर्स को, हम इस प्रोग्राम में आपके लिए पेश करते हैं। दो के बाद हमारे साथ ही सपना जी का साथ हो जाता है और वो आपके लिए पेश करती हैं प्रोग्राम शॉर्ट टाइम विद सपना। शाम 6 तक ये प्रोग्राम चलता है, फिर उसके बाद 6 से 7 के बीच राहुल आपका साथ देते हैं और 7 वाले समाचारों के बाद से लेकर रात 12 तक हमारे साथ ही गोपाल आपका साथ देने के लिए आ जाते हैं और वो आपके लिए पेश करते हैं आज का आखिरी प्रोग्राम सुनहरी यादें। इसी तरह से अलग अलग प्रोग्राम जो है हमारे साथियों के साथ आप इंजॉय करते हैं रेडियो तराना पर। फिलहाल ट्रिपल एस का यह प्रोग्राम जारी है। जितने भी दोस्त अब इस आखिरी घंटे में हमारे साथ शामिल हो गए हैं, आपका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। शुक्रिया इस सफर में शरीक होने के लिए। लंच क्या कुछ किया है आपने या फिर करने वाले हैं? लंच की तैयारियां हो रही हैं, कुछ लजीज खाने आज घर पर आपने तैयार किया हुआ है या फिर टेक अवे लेकर आ रहे हैं? कहीं मेहमान बनकर जा रहे हैं या फिर घर पर कोई मेहमान आ रहे हैं उनके लिए भी कुछ खास आज आप तैयार कर रहे हैं, इंजॉय करते रहे। सागर की ओर से गुड आफ्टरनून। मौसम है गाने का, बजाने का, सुनने का, सुनाने का।

0: Hey Hamiltonians, guess what? अब आपके यहाँ Hamilton में आ गया है Global Finance. For any kind of home loan, business loan, commercial loan, refixing या refinancing के लिए contact करें Global Finance को, जो mortgage के साथ साथ insurance में भी specialize करते हैं. Life, trauma, health insurance, हर चीज के लिए Global Finance. Now in Hamilton at Unit 26, 20 Clyde Street, Hamilton East. Phone 07577-0888. Global Finance, now in Hamilton.
1: राजस्थान की मेहमान नवाजी के तो क्या कहने, और अब वही मेहमान नवाजी और वही स्वाद आपको मिलेगा यहाँ ऑकलैंड में एट श्री रेस्टोरेंट. ऑथेंटिक राजस्थानी एंड डिलिशियस इंडियन वेजिटेरियन क्विजीन, राजस्थान की मशहूर दाल बाटी चूरमा, चाट आइटम्स एंड मेनी अदर स्नैक्स एंड फुल मील्स. ऑकलैंड के मशहूर शेफ रामेश्वर आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं टू द श्री रेस्टोरेंट एट 11 bar 726 ग्रेट साउथ रोड, मानिकाओ, ऑपोजिट रेनबोज इन. और यहाँ फंक्शंस होस्ट करने के लिए भी बड़ी जगह अवेलेबल है. श्री रेस्टोरेंट ओपन 6 days, क्लोज्ड ऑन वेंसडेज. इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ. बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक. और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज. तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश. T's and C's apply.
2: Indelible Homes are specialized in building high quality standalone and terraced houses at very reasonable prices. Please send your RC, BC drawings and they will build for you. Visit indeliblehomes.co.nz or call 0800-233-111. That's 0800-233-111.
3: Your weekly dose of love and great conversations with your very own Sapna.
4: Sapna Sunday ko 2 p.m. se aapke saath.

0: जी, एजे के घर दिया और हमें
1: तुम्हारे पास है घर,
0: वो तो हम खरीदा है, तुम नहीं देगा हमें कुछ?
1: ये तुम लोग को जो मांगता हमसे है, हमें दे देगा कि नहीं यार?
0: रान दो, नहीं मांगता।
1: तुम चाहे मुंह फुलाओ चाहे चिल्लाओ, एक सेंट नहीं देगा।
0: हाँ, सब लेके जाना।
1: हाँ, हम लेके जाएगा। लड़कन तो हमने कंगाल कर दी यार, चल दो यहाँ से।
0: ताजी के नहीं तंग करो।

0: 27th April, Swami Narayan Complex, Papatoetoe, Christchurch में, Saturday 2nd May, Rolleston Community Center और Wellington में, Sunday 3rd May को, Indian Cultural Society Hall, पिठोनी में, Programs 3 PM से शुरू होंगे, Entry free है और महाप्रसाद भी होगा, और जानकारी के लिए, उषा कुमार जी को कॉल करें 021-073-0829 पर।
1: घर को स्वस्थ रखने के लिए अपने बेडशीट्स और पिलो केसेस को हर 7 से 10 दिन में जरूर धोएं ताकि डस्ट, माइट्स और एलर्जीज दूर रहें। आप चिंता मत करो, ये काम स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स माउंट रॉस्किल को सौंप दो। यहाँ आपको 24/7 सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट या फिर आप अपने कपड़े यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ की टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको कपड़े दे देंगे। स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 स्टोरार्ड रोड माउंट रॉस्किल, आसान, भरोसेमंद और 24/7।
2: इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए। फ्लाई विथ एयर इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड, इजी रिटर्न कनेक्शंस वाया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर टू इंडिया, और फिर सीमलेस ट्रैवल विद इन इंडिया। दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, एयर इंडिया कनेक्ट्स यू टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। वही अपनी भाषा, वही अपना जैसा स्वाद, वही फ्रेंडली इंडियन हॉस्पिटैलिटी के साथ।
3: तो अगली बार घर का सफर हो, फ्लाई एयर इंडिया। For more information, visit your local travel agent today.
4: Do you want New Zealand to know about your business? If yes, it's just a call away. Call Colin now on 0274-999015 and get your advert to play on The Edge, Breeze, Mo FM, George or Magic.
5: You're jamming with the hottest disc jockey.
6: Triple S with Sagar.
5: Let's go.

0: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे। iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz।
1: Right now at Woolworths, you can collect 10 times points on some of your favorite brands. Simply hit Boost in the Rewards app, shop products from participating brands, and scan your Everyday Rewards card at the checkout. Ends 10th of May. Visit everydayrewards.co.nz for full T's and C's.
2: यार मुझे फिजी जाना था।
3: कब जाना है?
2: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
3: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
2: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
3: I think you should contact Coastal Rental Cars. इनके पास family cars, SUVs और सभी luxurious गाड़ियाँ हैं और गाड़ियाँ अच्छी conditions में।
4: Coastal Rental Cars. Visit coastalrentalcars.com.fj or for bookings call on 00679-652-0228.
3: Explore Fiji the coastal way.
5: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora. Buy two full price pieces and receive a third one free, just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May in store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply.
6: Radio Tarana, ka hai ye plan? Business ko banaye Superman.
7: Apne business ko lekar jaiye nayi unchaiyon par by advertising on the leading radio station, Radio Tarana.

0: 1984 में बनी फिल्म और 1984 में रिकॉर्ड किया गया ये नगमा भी आप सुन रहे थे। सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब और हुस्न की देवी श्री देवी जी पर पिक्चराइज किया गया 1984 की फिल्म मकसद का ये गीत किशोरदा और एस जानकी जी की आवाजों में बापी लहरी के संगीत पर इंदिवर साहब ने इस गीत को लिखा। वैसे तो हर एक फिल्म में हर एक नगमे में हुस्न की देवी श्री देवी जी बहुत ही हसीन बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन ये वाला गीत अगर आप देखें तो इस गीत में शी वॉज लुकिंग आउटस्टैंडिंग, बहुत ही खूबसूरत। कभी मौका लगे फिल्म मकसद का ये जो नगमा है इसका वीडियो सॉन्ग जरूर चेक आउट कीजिएगा। और हैंड्स ऑन योर हार्ट सभी ने ये कहा फिर या फिर ज़्यादातर लोग ये कहते हैं जब भी इस गीत की जिक्र किया जाता है या फिर इस गीत का वीडियो सॉन्ग ये दिखाया जाता है कि काश ये जो नगमा है ये जो गीत रहा है इसको श्री देवी जी और उनके फेवरेट पेयर जंपिंग जैक जितेंद्र पर पिक्चराइज किया जाता तो बात कुछ और होती। लेकिन इस गीत पर आपको नजर आएंगे सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब और साथ में श्री देवी जी, लेकिन यस अगर जितेंद्र जी होते तो ये गाना और इस गाने का जो डांस स्टेप्स ये कुछ और हो सकता था।
1: Chemist Warehouse has now opened in Fangaparoa. Find the new Chemist Warehouse in Fangaparoa next to the Coast Shopping Mall.
2: With the biggest range of all your health and beauty essentials at the lowest prices. They've got everything you need to look and feel your best. They are open 7 days a week from early till late, including public holidays. If you can't make it in-store, shop online 24/7. Chemist Warehouse, great savings every day.
3: अपनी डेली कुकिंग को बनाएं और भी हेल्दी और भी टेस्टी कशिश ब्रांड के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ। और अब आप इंजॉय कर सकते हैं कशिश का फ्रेश डोसा बैटर फॉर सॉफ्ट फ्रेश इडलीज एंड क्रिस्पी डोसास। अपनाएं कशिश का डोसा एंड इडली बैटर और सीमित समय के लिए इनकी एक्साइटिंग ऑफर में डोसा बैटर रेंज में से कोई भी डोसा बैटर लें और साथ में पाएं 250 ग्राम्स का कशिश जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्री। नो एडेड केमिकल्स नो विनेगर फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड जिंजर गार्लिक पेस्ट बाय कशिश और कशिश का डोसा बैटर अवेलेबल एट ऑल मेजर इंडियन आउटलेट्स।
4: यार मुझे फिजी जाना था।
5: कब जाना है?
4: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
5: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
4: नहीं यार नहीं मिला कुछ।
5: I think you should contact Coastal Rental Cars. इनके पास फैमिली कार्स SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियाँ हैं और गाड़ियाँ अच्छी कंडीशंस में।
6: Coastal Rental Cars. Visit coastalrentalcars.com.fj or for bookings call on 00679-652-0228.
7: Explore Fiji the coastal way.
8: Freedom's flash sale is on now. Get 25% off store-wide. Shop sofas, furniture, outdoor mattresses and homewares and get 25% off. Hurry, sale ends Sunday. Only at Freedom.
9: Get the tech from Mum this Mother's Day and shop massive store-wide savings this weekend at Briscoe's. Whether it's cozy bedding or kitchen favourites, shop Mum-approved deals and massive store-wide savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
0: दोस्तों जिंदगी में कब कहाँ किससे मुलाकात हो जाए इसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा सकते। और अभी स्टूडियोज़ में थोड़ी देर पहले मेरी मुलाकात हमारे साथी नेहा और राज से भी हुई, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनके साथ वो शख्स थे जिनसे अक्सर मेरी मुलाकात साल में सिर्फ एक ही बार होती है और वो मौका होता है वेलिंगटन दिवाली फेस्टिवल। और जब भी हम वेलिंगटन आते हैं वेलिंगटन दिवाली फेस्टिवल के दौरान इस शख्सियत से मुलाकात होती है और हम दोनों मिलकर स्टेज संभालते हैं, मतलब एमसी का जो काम ये हम करते हैं हमारे और भी साथियों के साथ, और उनसे हमेशा साल में एक ही बार वेलिंगटन में ही मुलाकात होती रही है। लेकिन आज अचानक से उनसे यहाँ स्टूडियोज में मुलाकात हो गई। मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो स्टूडियोज आने वाले हैं। नेहा राज वो आए, सरकार राज हमारे साथी, और फिर अचानक से ईशांत घुलियानी ये नज़र आए, तो मैंने बोला इस बंदे को मैंने कहीं देखा है, क्योंकि मैं स्टूडियो में था वो स्टूडियो से बाहर थे, तो मैं यहाँ से देख रहा था। फिर सरकार राज स्टूडियोज़ में आए और मैंने उनसे पूछा कि आप लोग आज का यहाँ स्टूडियोज़ का चक्कर कैसे लगा रहे हो, तो कुछ पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग चल रही थी और उसी दौरान जब मैं स्टूडियो से बाहर मैंने कदम रखा तो जो बंदा मुझे दिख रहा था वो ईशांत घुलियानी निकले जो इंडियन एम्बेसी के साथ काम करते हैं। और फिर उनसे बातें हुई और अच्छा लगा मिलकर कि अब देखिए जिंदगी का सफ़र, जिंदगी कहाँ किस तरह से किससे मुलाकात करा दे और कब मुलाकात करा दे इसका पता ही नहीं चलता। बिल्कुल इस बात से परे कि कभी ईशान से भी यहाँ मुलाकात होगी, तो एक पॉडकास्ट उनको लेकर रिकॉर्ड की गई जो बहुत ही जल्द पब्लिश की जाएगी। लेकिन अब देखिए जिंदगी में कौन कहाँ किससे मिल जाए ये ऊपर वाला ही तय करता है। तो साल में एक ही बार जिनसे मुलाकात होती थी, आज देखिए स्टूडियोज़ में उनसे मुलाकात हो गई। और फिर बातों बात में फिर शादी की बात भी होने लगी, और जब शादी की बात होती है तो याद आया कि अक्सर जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनसे ये पूछा जाता है कि भाई ज़रा ये बतलाएं कि आपको कैसी पत्नी चाहिए या फिर कैसा पति चाहिए। जब आपकी शादी तय की जा रही थी तो क्या किसी ने आपसे ये पूछा था कि आप ज़रा बतलाएं आपको कैसी पति चाहिए या फिर कैसी पत्नी चाहिए, या फिर आपने खुद अपने जीवन साथी का चुनाव किया? सोचिएगा, अगर मौका दिया जाए आपको दोबारा से चुनने के लिए, वुड यू चेंज योर करंट पार्टनर?

0: Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. That's 10% of your purchase price back in bonus gift cards. Shop in store and online. See stores or online for more details. Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. Must end today. Terms, conditions and exclusions apply. Bonus gift cards valid for 36 months.
1: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे।
2: iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शंस पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz।
3: न्यूजीलैंड के कई बड़े बड़े इवेंट्स में होने वाले जो बड़े बड़े माकी आप देखते हैं ना, अरे मनकाओ दिवाली सिख गेम्स में ये माकी इवेंट्स ऑकलैंड माकी एंड पार्टी हायर के हैं। 20 सालों से हैं बिजनेस में। इनके माकी बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस। घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माकी लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा। इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265 0505। और सुनिए, ये पोर्टल लू भी हायर पर देते हैं। इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265 0505।
1: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स, मंडप और माकीज पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा।
4: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
5: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
6: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.
7: You are tuned in with Saga.
8: Saga. Nagila, Nagila. Hamba, Hamba. Nagila, Nagila.

0: are tuned in with Sagar.
1: हाय दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ें और इसके साथ साथ कुछ और भी हमारे साथी हैं जो फिलहाल जुड़े हुए हैं और साथ दे रहे हैं. इधर 13 मिनट रह गए हैं दोपहर 2 बजने में और 2 से हमारे साथी सपना जी का साथ हो जाएगा प्रोग्राम शो टाइम विद सपना में. आजकल एक और फिल्म काफ़ी चर्चे में है, हालांकि इस फिल्म को रिलीज होने में काफ़ी वक्त है. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, मतलब शाहरुख खान की जो कंपनी है, इसके बैनर तले इस फिल्म को तैयार किया गया है और जाहिर सी बात है कि इस फिल्म में हीरो खुद शाहरुख खान ही रहेंगे और उनके साथ इस फिल्म में नजर आएंगी उनकी ही बेटी सुहाना खान और साथ में दीपिका पादुकोण साथ में रहेंगे, अभिषेक बच्चन. इस फिल्म के चर्चे अभी कई जगहों पर हो रहे हैं, प्रमोशन ये शुरू हो गया है और साथ ही साथ इस फिल्म की जो तारीख ये भी मुकर्रर कर दी गई है कि कब इस फिल्म को रिलीज की जाएगी. तो फिल्म जो है, फिल्म का नाम है किंग और शाहरुख खान की जो फिल्म है किंग, इसे रिलीज किया जाएगा. ये क्रिसमस रिलीज रहेगी, क्रिसमस ईव यानी कि इसी वर्ष 24 दिसंबर को. तो देखने वाली बात होगी कि पहली मर्तबा शाहरुख खान जो है जो दीपिका पादुकोण के साथ एक बार फिर आ रहे हैं और दीपिका पादुकोण आपको पता ही है कि ओम शांति ओम में शाहरुख खान के साथ ही उन्होंने अपना जो करियर ये शुरू किया था, फिर बाद में और भी कई फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया. लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान, ये दोनों जब पर्दे पर आएंगे तब इनके जो चाहने वाले हैं उनका जो रिएक्शन वो कैसा रहेगा. एनीवेज 24 दिसंबर उसी तारीख को ये जो फिल्म है किंग ये रिलीज होने वाली है. लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने से पहले किसी ने सोशल मीडिया पर बिहाइंड द सीन्स जो होते हैं वो फोटोग्राफ्स और वो वीडियोस कुछ रिलीज कर दिए हैं और इस बात को लेकर इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ये बहुत ही नाराज है और सभी को चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा ना करें, नहीं तो उन पर मुसीबत आ सकती है. तो फिल्म के कुछ बिहाइंड द सीन्स जो फोटोज वीडियोज वगैरह लिए गए थे ये चुपके से ऑनलाइन रिलीज किसी ने किया है और अब इस बात को लेकर सिद्धार्थ आनंद जो डायरेक्टर हैं वो सबको वार्निंग दे रहे हैं. आइए, और भी कुछ बातें होती रहेंगी लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ और भी दोस्त हैं. अर्चना बेन, आइए कार्यक्रम में आपको भी शामिल करें. इसके साथ साथ वेलिंगटन की जरीना एस अली, इस गीत में आपको भी हम शामिल कर रहे हैं, शुक्रिया साथ देने के लिए. और उधर ठाकुर भीम सिंह जी और सुशीला सिंह जी, आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं.

दोस्तों, देखते ही देखते आज का ट्रिपल एस का ये जो प्रोग्राम है अपने मंजिल तक आ पहुंचा है। अब समय हो गया है कि हम आपसे इजाजत लें। आप तमाम दोस्तों ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही मोहब्बत और शिद्दत के साथ आज एक बार फिर ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया, ट्रिपल एस का साथ निभाया। इसके लिए आप तमाम दोस्तों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब इसी मोड़ पर अपने साथी सागर को यहीं पर इजाजत दें, इसी वादे के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि अगर जिंदगी ने हमें जिंदा रखा और अगर धड़कनों ने दिल का साथ नहीं छोड़ा तो हम आपसे मुलाकात करेंगे आने वाले मंगलवार की रात 7 वाले समाचारों के बाद से लेकर रात 12 तक प्रोग्राम लव इज इन द एयर में। तब तक लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, औरों को भी मुस्कुराने का भरपूर मौका दें। और एक बात हमेशा याद रखें कि जियो और जीने दो। इससे होगा ये कि आपको जहनी सुकून मिलेगा और आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी आपसे बहुत ही खुश रहेंगे। अब इन्हीं बातों के साथ हम यहाँ से रुखसत हो रहे हैं और जाते जाते एक मुसीबत हो गई है। मुसीबत क्या हो गई है वो आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं। मुस्कुराते रहें, इंजॉय करते रहें और अपना जो संडे है इसको सुपर संडे बनाने की कोशिश करें और मुसीबतों से दूर रहें। नमस्कार, खुदा हाफिज।

0: से मैं हूँ आपका कैप्टन सत्येंद्र शर्मा।
1: Drive with Captain Satyendra Sharma, weekdays from 4 to 7 p.m.
2: Radio Tarana. Time check.
3: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
4: Kashish Food ke saath mein hokar time check karte hain. Good afternoon to all the listeners of Radio Tarana. Studio ke ghadi mein samay dopahar ke 2 baj gaye hain. Aur ab chalte hain, shuru karte hain. आपको सुनाते हैं कुछ कम्युनिटी मैसेजेस और उसके बाद में शुरू करेंगे शॉर्ट आई मीट सपना।
5: जागोरे कम लाइफ का आयोजन किया गया है पास्ता अनिल और रीना कान द्वारा। ये हिल्स चर्च 179 हिल्सबरा रोड में होने जा रहा है 9 मई को शाम को 6 बजे से, और जानकारी के लिए आप 0211017959 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया है शनिवार 23 मई को सुबह 9:30 से दिन में 12 बजे तक फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर 546 माउंट एल्बर्ट रोड 3 किंग्स में। श्री वेंकटेश्वरा देवास्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भोजन मेला होने जा रहा है रविवार 17 मई की सुबह 11 से शाम को 4 बजे तक 378 आररीमू रोड रामारामा में। एंट्री बिल्कुल ही फ्री है।
2: This is your dream girl, सपना।
4: और सपना का साथ एक बार फिर से हो गया है। कैसे आप? गुड आफ्टरनून। अब से लेकर शाम 6 तक मेरा और आपका साथ रहेगा। म्यूजिकल जैनी हमेशा की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए मौसम प्यार का। मौसम बहुत ही हसीन है, बहुत ही प्यारा है। इट्स ब्यूटीफुल संडे इन ऑकलैंड।

0: देरी कैसे? राम राम।
1: ठीक बेटा, राम राम। घर बने? कहाँ तक पहुँचा?
0: पेंटिंग हुए डैडी।
1: कितना अच्छा बिल्डर मिल गए रे। क्या नाम है उन लोगों के?
0: इंडेलिबल होम्स।
1: हमारे पास भी 10-15 घर रहता, अगर हमारे टाइम पे ऐसा बिल्डर मिल जाता।
0: अभी भी सकता बनाए डैडी, बनाए के हमें दे दो। हाँ,
1: वाह।
2: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इंडेलिबल होम्स। फोन 0800-233-111।
3: हार्वी नॉर्मन's सुपर वीकेंड। स्पेंड $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. That's 10% of your purchase price back in bonus gift cards. Shop in store and online. See stores or online for more details. Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. Must end today. Terms, conditions and exclusions apply. Bonus gift cards valid for 36 months.
4: भाई साहब आइए, कैसे हैं?
5: नमस्ते नमस्ते। मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
4: एग्जैक्ट मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
5: प्यारा मंडप तो है, पर खर्चा बड़ा किया होगा भाभी।
4: अरे नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एग्जैक्ट मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
6: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल, और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09265-0505 और विजिट एग्जैक्ट मंडप फेसबुक पेज।
7: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्कीज पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट।
8: वीकेंड में घर का सामान लेना है तो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए पहुंचे 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन, जहां पर है DH सुपरमार्केट। और वीकेंड स्पेशल्स में आपको मिलेंगे फ्रेश टमाटोज 199 kg, ओकरा 999 kg, होल मिल्क पाउडर फ्रॉम इक्लिप्स 1 kg 999, एंड मेनी मोर इन स्टोर डील्स एट DH सुपरमार्केट हेंडरसन।
9: और इतने सारे एड्स हमारे पास आते हैं, शादी हो, रिसेप्शन हो, और होल हाया हो, कुछ भी हो, एनी इवेंट इन योर लाइफ, अगर आप हमारे सेल्स टीम अजेशनी को कॉन्टेक्ट करते हैं, डेफिनेटली शी विल कम आउट विद समथिंग वेरी गुड। जो आपका बजट है, जो प्लान आप चाहते हैं टू मेक योर बिजनेस सक्सेसफुल, कॉन्टेक्ट अजेशनी। गीत के बोल कैसा लगता है, अनुराधा पोडवाल अमित कुमार की आवाज में। और आज एक शब्द भी मैं लेकर आई हूँ, 3 गीत मैंने चुना है खुद, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। अभी चलते इस गीत का मजा लेते हैं।

0: सुन रहे हैं रेडियो तराना।
1: और अब चलते हैं लता दी की मधुर आवाज में ये गाना, दिन प्यार के आएंगे। फिल्म का नाम आई थिंक सवेरे वाली गाड़ी, पिक्चराइज ऑन ब्यूटिफुल गोजस पूनम।

0: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
1: यार मुझे फिजी जाना था।
2: कब जाना है?
1: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
2: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
1: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
2: I think you should contact Coastal Rental Cars. इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
3: Coastal Rental Cars. Visit coastalrentalcars.com.fj or for bookings call on 00679-652-0228.
4: Explore Fiji the coastal way.
5: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
6: Schools use fibre to study in virtual reality, whereas Kim used it to study her family's genealogy to discover she has a long-lost relative in Taupo who streams true crime podcasts about missing people that often begin with an ad from Chorus saying New Zealand runs on fibre.
7: और इस गीत के बाद जितने भी लोग आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, जितने भी डेडिकेशंस हमारे पास आए हुए हैं, वो मैं लेकर आऊंगी ऑन एयर। और उसके बाद में एक गीत, और गीत के बाद कंपटीशन। ओके, स्लाइड चेंज थे यार।

0: ये है न्यूजीलैंड का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो तराना।
1: एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, जब मैं हैप्पी बर्थडे कहती हूँ किसी को, या वो अगर शादी की सालगिरह कुछ हो, हमारे लिसनर्स से वो मनाते हैं। ओके, सो हैप्पी बर्थडे डियर अनु ऑफ न्यू प्लिमथ, गॉड ब्लेस यू, टुडे इज योर बर्थडे। विशेस दे रहे हैं आपको कुमार, साथ में है मधु सिन्हा और नीरज, रिंकू, अयान, अंकल सूर्य नारायण रेड्डी ऑफ फ्लैट बुश मिशन हाइट्स, विशेस फ्रॉम डनीडन। और यहाँ है मनहर पिलाया, अवनील, गुगू एंड अदर्स न्यू प्लिमथ से है सारिका, अरुण, आयुष। ओके, सो कैटेगराइज किया गया इसे। सो अनु को विशेस दे रहे कुमार, मधु सिन्हा, नीरज, रिंकू, अयान, अंकल सूर्य नारायण जो फ्लैट बुश में रहते हैं, फिर डनीडन में जो लोग हैं यह है मनहर, अवनीत, गुगू एंड अदर्स, न्यू प्लिमथ में है सारिका, अयुन एंड आयुष। रेडियो तराना की ओर से भी हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू अनु। ओके, सो हमारे पास फ्रॉम हमेशा की तरह भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बर्थडे डेडिकेशन आए हुए हैं, और ये हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं टू बलबीर कौर जी ऑफ न्यूलैंड। और बलबीर, हैप्पी बर्थडे के साथ में बेस्ट विशेस ये देना चाहते हैं आपको, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, और ख़ास करके यहाँ भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी मेम्बर्स हैं, उन सभी की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे। और अगर आज आपका भी बर्थडे है, रेडी तराना स्टाफ एंड मैनेजमेंट की ओर से हैप्पी हैप्पी बर्थडे। सो अनु, और आपके साथ में बलबीर कौर, हैप्पी बर्थडे। तो चलो ये गीत मैं आपको सुनाती हूँ, उसके बाद में एड ब्रेक होगा, और एड ब्रेक के बाद म्यूजिकल क्वीज। और म्यूजिकल क्विज किस फॉर्म में होगा, किस तरह से मैं लेकर आऊंगी, एक डायलॉग सुनाऊंगी, उसके बाद में बहुत ही फेमस लोकप्रिय गाना गाया था हीरो ने, आपको गाना बताना है मुझे। ओके, अभी नहीं, थोड़ी देर में।

0: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई। इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए। फ्लाई विद एयर इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड, इजी रिटर्न कनेक्शंस वाया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर टू इंडिया, और फिर सीमलेस ट्रैवल विद इन इंडिया। दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, एयर इंडिया कनेक्ट्स यू टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही फ्रेंडली इंडियन हॉस्पिटैलिटी के साथ। तो अगली बार घर का सफर हो, फ्लाई एयर इंडिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट योर लोकल ट्रैवल एजेंट टुडे।
1: हार्वी नॉर्मन सुपर वीकेंड। Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. That's 10% of your purchase price back in bonus gift cards. Shop in store and online. See stores or online for more details. Harvey Norman Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. Must end today. Terms, conditions and exclusions apply. Bonus gift cards valid for 36 months.
2: अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड ब्रेथटेकिंग फोटोग्राफ्स। दे ऑफर डीजे वेडिंग वीडियो एंड फोटो पैकेजेस फ्रॉम ड्रोन एंड गिम्बल शॉट्स टू 4K वीडियो शूटिंग फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर और मैसिव वेडिंग। कॉन्टैक्ट मल्टी डीजे।
3: विद ऑल लेटेस्ट इक्विपमेंट दे ऑल्सो ऑफर इजी पेमेंट ऑप्शंस। कॉन्टैक्ट डीजे दिनेश, फोन नंबर 0210584711

0: best of music, best of shows. This is Radio Tarana.
1: आप सुन रहे रेडियो तराना, घड़ी की ओर देखते हैं, सिर्फ 14 मिनट ही बाकी हैं शाम के 4 बजने में। सो चलो जल्दी से मैं डायलॉग सुनाती हूँ। क्या करना है आपको, मुझे टेक्स्ट करना है या अगर आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं info@tarana.co.nz या मुझे कॉल करें 303-1386 पर। डायलॉग सुन के बताएं मुझे कि कौन सा गाना हीरो ने गाया था हीरोइन के लिए। ओके, सो लेट्स पुट एवरीथिंग डाउन।
2: देख कौवे भी बोल रहे हैं कि तू दूर है उस रेहान गाइड से।
3: हमसे दूर जाओगे कैसे, दिल से हमें
1: मिटाओगे कैसे या भुलाओगे कैसे। आई डिडंट वांट टू प्ले दिस बिट, क्योंकि जैसे वो बिट, वो जो कहते हैं डायलॉग हीरो कहते हैं, वो जो गाना है ना उसका म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। सो आई डिडंट वांट टू प्ले दिस। सो चलो एक बार फिर से जल्दी से मैं आपको सुनाती हूँ और सुनकर आप मुझे बताएं। इसकी जो ड्राइंग है अगले सेगमेंट में हम करेंगे। सो हियर वी गो। तैयार है?
2: कौवे भी बोल रहे हैं कि तू दूर है उस रेहान गाइड से।
3: हमसे दूर जाओगे कैसे, दिल से हमें भुलाओगे कैसे।
1: ओके, भुलाओगे कैसे कहते हैं ये। ओके, सो मुझे टेक्स्ट करें 8812 पर। अब चलते पुरानी याद को ताजा करते हैं।

0: But forget it.
1: You are listening to your favorite Hindi radio station, Radio Tarana.
2: अरब चाटे सेगमेंट का आखिरी गीत मैं आपको सुनाती हूँ रफी साहब की मधुर आवाज में. राही मिल गए राहों में, दिल समझा फिर क्या हुआ, आप सुनिए उन्हीं की आवाज में.

0: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जो घर पे मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल। 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन फ्री एंड ग्लूटेन फ्री। स्मूदीज बनानी हो या मैरिनेशन मसाला, या बस सीधा टब से खाने का दिल हो, तो इंजॉय करे कशिश नेचुरल योगर्ट, क्योंकि ये है नेचुरली डिलिशियस। Available at all Indian supermarkets across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish Natural Yogurt.
1: Get the tick from Mum this Mother's Day and shop massive store-wide savings this weekend at Briscoe's. Whether it's cozy bedding or kitchen favourites, shop Mum-approved deals and massive store-wide savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility. Lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
3: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
4: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
5: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.
6: Radio Tarana. Time check.
0: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
7: Kashish Foods के साथ मैं होकर टाइम चेक करते हैं। स्टूडियो के घड़ी में समय शाम के 4:01 हो गया है। Once again, good afternoon.

0: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल प्रोजेक्ट।
1: ये होगा संडे 17 मई को 11 AM टू 4 PM
0: 378 RRE Moo Road रामा रामा साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ।
1: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर।
0: वन टेम्पल वन कम्युनिटी इटर्नल ब्लेसिंग।
2: वीकेंड में घर का सामान लेना है तो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए पहुँचे 5 Moselle Avenue ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन, जहाँ पर है DH सुपरमार्केट। और वीकेंड स्पेशल्स में आपको मिलेंगे फ्रेश टमाटोज 199 kg, ओकरा 999 kg, होल मिल्क पाउडर फ्रॉम इक्लिप्स 1 kg 999, एंड मेनी मोर इन स्टोर डील्स एट DH सुपरमार्केट हेंडरसन।
3: इंडेलेबल होम्स आर स्पेशलाइज्ड इन बिल्डिंग हाई क्वालिटी स्टैंड अलोन एंड टेरेस्ड हाउसेस एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस। Please send your RC, BC drawings and they will build for you. Visit indelibalehomes.co.nz or call 0800-233-111. That's 0800-233-111.
4: Gift instant joy this Mother's Day with Instant Kiwi. Whether you've got flowers, chocolates or a good book, Instant Kiwi is the perfect something extra to spoil her with. Get a $10 gift pack from your local Lotto NZ store. R18.
5: Hi, I'm Selena Jetley and you're listening to Radio Tirana, New Zealand.

और इस गीत के बाद ड्राइंग बोर्ड की ओर हम चलेंगे आपको लेकर, म्यूजिकल क्विज की ड्राइंग कर देंगे। सो अगर आपने हिस्सा लिया तरह सुनते रहे, क्या पता आपका नाम मैं कह दूं।

0: Do you want New Zealand to know about your business? If yes, it's just a call away. Call Colin now on 0274-999015 and get your advert to play on The Edge, Breeze, Mo FM, George or Magic.
1: मुझको अपनी जान से प्यारी है मेरी आजादी, क्या गाना है? उस गीत को मैंने लिया था फिल्म थ्री देव से. ओके, सो चलो, इज प्रॉमिस्ड. नलिनी कौशल, शायद आप बाहर गई थी और अभी भी आपने जुड़ा हमारे साथ. थैंक यू सो मच, आई वॉज मिसिंग यू. और वर्षा जगदीश भाई वेलिंगटन, आज आपका मैसेज भी नहीं आया, सो यू मस्ट बी बिजी, लेकिन मैं यहाँ से आपको हेलो हाय कह रही हूँ. ओके, सो डायलॉग सुनाती हूँ और उसके बाद में गाना. सो डायलॉग कॉम्पिटिशन इज फिनिश्ड, या आप कह सकते हैं म्यूजिकल क्विज इज फिनिश्ड. सो क्विज क्या था? डायलॉग मैंने सुनाया आपको और यही सवाल किया था कि डायलॉग के तुरंत बाद कौन सा गाना हीरो गाता है. सो पूरा मैं सुना दूंगी आपको एंड देन द विनर्स नेम.
2: देख कौए भी बोल रहे हैं कि तू दूर है उस रेहान गाइड से.
3: हमसे दूर जाओगे कैसे, दिल से हमें भुलाओगे कैसे. हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे.

और जितने भी एंट्रीज आज आए मेरे पास दे वर ऑल करेक्ट, सो कुल मिलाकर आई हैड 11 एंट्रीज लेट्स से।

0: और अगर आपका सेल का लास्ट 4 डिजिट्स इट्स 5735, आपका पूरा नाम मेरे पास है, 5735, आप विनर है फॉर द $50 पेट्रोल वाउचर. जितने लोगों ने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, आप सबका शुक्रिया. और नेक्स्ट वीक एक बार फिर से एक कंपटीशन में लेकर आऊंगी, पता नहीं बॉलीवुड क्विज रहेगा या जनरल नॉलेज क्विज, ऐसा कुछ. लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट वीक भी आपको मौका मैं देने वाली हूँ पेट्रोल वाउचर जीतने के लिए. ओके,
1: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ. बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज. तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश. T's and C's apply.
2: I've always wanted you in my life. That's why I bought a trainer bra and put tissues in it before you even existed. When you finally showed up, you were just like me. Perky, bouncy, and fluctuating in size week to week. I love you both evenly, even though one of you appears to be a completely different cup size. You two are the reason I've never run a marathon. And honestly, I thank you for that. I'm Laura Daniel, and this is a love letter to my breasts. Get to know yours so you'll know what's normal for you and what's not. Learn more at breastcancerfoundation.org.nz.
3: माँ.
4: हाँ मेरे लाल.
3: खुश हो ना माँ?
4: बहुत मेरे पुत्र.
3: नागर अच्छा है ना माँ?
4: बहुत वधिया है पुत्र.
3: आशीर्वाद दो ना माँ.
4: हमेशा खुश रहे, चढ़ दिया कला वाच रहे हैं मेरे पुत्र.
3: गालियाँ तो वैसे ही देती रहती है माँ.
4: चुप फिट्टे मुँह तेरे. ओ तो मेरा प्यार है मेरे बच्चे.
5: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इंडेलिबल होम्स. फोन 0800-233-111.
6: Global costs are surging. Rising inflation is on the horizon. Beat the hike with the iFurniture Beat Inflation Sale. Grab designer sofas, dining, beds, and more at warehouse prices. Don't just watch prices go up, get ahead of them. Shop smarter at iFurniture and lock in the value today. Shop online at ifurniture.co.nz with NZ wide shipping. Visit us in Auckland, Hamilton, and Christchurch. iFurniture. Better, cheaper, smarter.
0: दीपक टैलर जी, आप कभी गुड आफ्टरनून.

और ये जो गाना है आधा तेरा दिल आधा मेरा दिल, अनुराधा पौडवाल अमित कुमार गा रहे हैं इस गीत को, और ये जो गाना है नलिनी कौशल, आपने सुनना चाहा। आज अपनी सासू माँ को लेकर आप शॉपिंग गई थी, वेल डन, अच्छी बहू है आप, बहुत ही प्यारी है। वैसे भी यू आर जस्ट सच अ लवली पर्सन नलिनी।

0: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई। वीकेंड में घर का सामान लेना है तो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए पहुंचे 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन जहां पर है DH सुपरमार्केट। और वीकेंड स्पेशल्स में आपको मिलेंगे फ्रेश टमाटोज 199 kg, ओकरा 999 kg, होल मिल्क पाउडर फ्रॉम इक्लिप्स 1 kg 999 एंड मेनी मोर इन स्टोर डील्स एट DH सुपरमार्केट हेंडरसन।
1: हार्वी नॉर्मन सुपर वीकेंड। स्पेंड $500 और मोर ऑन सिलेक्टेड products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. That's 10% of your purchase price back in bonus gift cards. Shop in store and online. See stores or online for more details. Harvey Norman Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. Must end today. Terms, conditions and exclusions apply. Bonus gift cards valid for 36 months.
2: हर थर्सडे रात 10 बजे से तराना के रंग रूपा के साथ
3: रीटा कुमारी जी, हाउ आर यू? हेलो, आप भी कहीं बाहर गई थी और अभी भी आपने अपना रेडियो का डाले हमारे स्टेशन से आपने इसे जोड़ लिया है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।

और इसके बाद मैं तीन गीत मैं आपको सुनाने वाली हूँ और नॉनस्टॉप ये गाना ये तीन गीत बजेंगे आपके लिए और इस सेगमेंट को इन तीनों गीत के साथ मैं समाप्त करूँगी। पुराने गीत हैं और आप इन्हें ज़रूर से इंजॉय करेंगे। सो जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं खास करके जितने भी लोग हैं जिन्हें पुराने गीत पसंद हैं आप अपने आप को इन तीनों गीत में शामिल कर सकते हैं।

0: मैं हूं आपका कैप्टन सत्येंद्र शर्मा।
1: Drive with Captain Satyendra Sharma, weekdays from 4 to 7 p.m.
2: Radio Tarana. Time check.
3: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
4: Kashish Foods के साथ में होकर time check करते हैं. Studio के घड़ी में समय शाम के 5:17 हो गए हैं.
5: This is your dream girl, Sapna.
4: Easy listening का सिलसिला शुरू करते हैं. Fast numbers सुनाऊंगी, कुछ थोड़े से slow, लेकिन थोड़े से नए गीत होंगे. राहुल चोपड़ा स्टूडियोज में आ गए हैं, प्रेप कर रहे हैं. करंट अफेयर्स लेकर आते हैं, बहुत कुछ लेकर आते हैं. Whatever's happening in the news out there, राहुल will actually tell you about it as well. Please उनका साथ दें मेरे जाने के बाद. From 6 to 7 p.m.

0: there's never been a better time to send Solly with Western Union. Right now, when you give to your family back home, you'll get a little something for yourself too. Make two transfers of 200 New Zealand dollars or more to Fiji before the 4th of May, and you'll get a Digicel or Vodafone mobile top-up voucher. Oh, who's that calling? Say hi from Western Union. Stocks limited. Visit westernunion.com for terms and conditions and participating agent locations.
1: Rajasthan ki mehman nawazi ke to kya kehne? Aur ab wahi mehman nawazi aur wahi swad aapko milega yahan Auckland mein. At Shri Restaurant. Authentic Rajasthani and delicious Indian vegetarian cuisine. Rajasthan ki mashhoor dal paati churma. Chaat items and many other snacks and full meals. Auckland ke mashhoor chef Rameshwar aap sabko nimantran de rahe hain to the Shri Restaurant at 11 bar 726 Great South Road Manukau opposite Rainbow's Inn aur yahan functions host karne ke liye bhi badi jagah available hai. Shri Restaurant open 6 days closed on Wednesdays. India jana hai तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए. Fly with Air India from New Zealand. Easy return connections via Australia or Singapore to India. और फिर seamless travel within India. दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, Air India connects you to every corner of India. वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही friendly Indian hospitality के साथ. तो अगली बार घर का सफर हो, fly Air India. For more information, visit your local travel agent today. Weekend में घर का सामान लेना है, तो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए पहुंचे 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन, जहां पर है DH सुपरमार्केट. और वीकेंड स्पेशल्स में आपको मिलेंगे फ्रेश टमाटोज 199 kg, ओकरा 999 kg, होल मिल्क पाउडर फ्रॉम एक्लिप्स 1 kg 999, एंड मेनी मोर इन स्टोर डील्स एट DH सुपरमार्केट हेंडरसन.

0: जरिया।
1: वीकेंड में घर का सामान लेना है तो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए पहुंचे 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन, जहां पर है DH सुपरमार्केट। और वीकेंड स्पेशल्स में आपको मिलेंगे फ्रेश टमाटोज 199 kg, ओकरा 999 kg, होल मिल्क पाउडर फ्रॉम एक्लिप्स 1 kg 999, एंड मेनी मोर इन स्टोर डील्स एट DH सुपरमार्केट हेंडरसन।
2: व्हेन यू सी देम ऑन द रोड यू आर सडनली नॉट इन एज मच ऑफ अ रश टू गेट होम। Suddenly, texting her back can wait. You suddenly remember to put your seatbelt on. And you suddenly remember what your indicator's for. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behavior. Drive like cops are around. Because they are.
3: बच्चों बताओ, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
4: मैम, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम।
3: जीनियस। अब बताओ, रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
4: मैम, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान।
1: बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान। फोन 09255-5500। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: डराना पर अगर आप कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो आपको लगता है कि रेडियो पर नहीं होना चाहिए, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। पहले हमारे पास info@tarana.co.nz पर लिखें। अगर आप हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप info@dsa.govt.nz पर ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी को लिख सकते हैं। वैसे यहाँ तराना पर हमारी कोशिश यही होती है कि सारे प्रोग्राम्स अच्छे स्टैंडर्ड के हों।
6: और कल एक नया हफ्ता शुरू होगा, अनदर वीक, अनदर न्यू बिगिनिंग। जितने भी स्टूडेंट्स कल स्कूल जाएंगे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जाएंगे, प्राइमरी स्कूल, किंडी वाले जो छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे होते हैं, सभी जाएंगे स्कूल। सो ऑल द बेस्ट टू द टीचर्स, मैं कहना चाहती हूँ, यू हैव सच अ हार्ड जॉब। बहुत अच्छे अच्छे वैल्यूज आप सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। इन द सेम टोकन गोज बैक होम कि जो पेरेंट्स होते हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, जो बच्चा जो होता है, बच्चे जो होते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ में कैसा रिश्ता होता है, किस तरह से बिहेव आप करते हैं अपने घर के अंदर। तो जो बच्चा है वही देखता है, जैसे द किड्स डोंट डू व्हाट यू टेल देम, द किड्स विल डू व्हाट दे सी अ पेरेंट डूइंग। सो जो बिहेवियर आप करते हैं, जिस तरह से आप बातें करते हैं, और जिस तरह से इन जनरल आप अपना जो लाइफस्टाइल इसको व्यतीत करते हैं, उसी तरह से जो बच्चा है आपका, उसी तरह से दैट्स हाउ दैट पर्सन विल बी लुकिंग एट थिंग्स एंड लिविंग हिज और हर लाइफ इन दैट वे। सो प्लीज फैमिली वैल्यूज को हमेशा गिव इट टॉप नॉच और उसको हमेशा 100% दे, क्योंकि फैमिली वैल्यूज एंड फैमिली ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर फॉर यू। तो जाते जाते मैंने सोचा क्यों नहीं शेयर कर लूँ, आ फ्रेंड शेयर विद मी। गेट इट्स इंग्लिश में है, द बिगेस्ट सस्पेंस ऑफ टूडेज लाइफ इज दैट। आपको पता है द बिगेस्ट सस्पेंस ऑफ टूडेज लाइफ वट इज दैट? यू डोंट नो हु इज प्रेइंग फॉर यू। आपको पता नहीं कि आपके लिए विनती या प्रार्थना कौन करता है। सो यू डोंट नो हु इज प्रेइंग फॉर यू एंड हु इज प्लेइंग विथ यू। सो कौन आपके लिए प्रार्थना कर रहा है या कौन आपके साथ में खेल रहा है। इन चंद शब्दों के साथ मैं कहती हूँ बाय बाय, और मैं मिलूंगी आपसे आने वाले संडे को। मेरे जाने के बाद आपके साथ में राहुल हो जाएंगे। टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑन संडे। बाय।

0: लड़कियों थोड़ा म्यूजिक कम करो। अरे अरे भाई साहब आइए, कैसे हैं?
1: नमस्ते नमस्ते। मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
0: एग्जैक्ट मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
1: प्यारा मंडप तो है पर खर्चा बड़ा किया होगा भाभी
0: जी। नहीं नहीं देखो, खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एनजेड मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
2: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल, और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09265050505 और विजिट एनजेड मंडप फेसबुक पेज।
3: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्कीज पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट।
4: White Door free range chicken, full of natural goodness and deliciousness. For that summer barbecue feeling. All the feels for all the meals. Available in your local supermarket now.
5: Weekend में घर का सामान लेना है तो grocery shopping के लिए पहुँचे 5 Moselle Avenue off Lincoln Road, Henderson, जहाँ पर है DH Supermarket. और weekend specials में आपको मिलेंगे fresh tomatoes 199 kg, okra 999 kg, whole milk powder from Eclipse 1 kg 999, and many more in store deals at DH Supermarket, Henderson.
6: Radio Tarana ka hai ye plan. बिजनेस को बनाए सुपरमैन,
7: अपने बिजनेस को लेकर जाइए नई ऊंचाइयों पर बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द लीडिंग रेडियो स्टेशन, रेडियो तराना।

0: The Rana. Time check.
1: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
2: हमारे रेडियो की घड़ी में ठीक 6 बज चुके हैं।
3: You are listening to Real Talk with Rahul.
2: अच्छा, हर दूसरे संडे मैं आपके लिए एक शो लाता हूँ, रियल टॉक विद राहुल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। इस शो के अंदर वी कट थ्रू द नॉइज, वी एक्चुअली टॉक अबाउट क्या क्या ऐसी चीजें हुई है विच इज अफेक्टिंग आर लाइफ, आर मनी, आर फ्यूचर। वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, जो जो हो रहा है, यू नो। सो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द शो टुडे हम बातें करेंगे थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स एंड हाउसिंग मार्केट के बारे में, क्योंकि ऐसी ऐसी अभी न्यूज आई है, यू नो। On one side, banks have started pushing the interest rates up. मुझे वो बिल्कुल बात समझ नहीं आ रही। Like if you look at the economy, if you look at a situation, हाँ ठीक है, inflation थोड़ी ऊपर है, ऊपर जाएगी, you know, fuel prices are there. But man, we are not doing well. अगर आप ये कैसे हो सकता है कि banks दोबारा से interest rate उठा रहे हैं? Like I'm in shock. But at the same time, some other news has also come ki jo housing market is actually doing okay. Like, you know, prices are sort of stable. They've gone up slightly. So it's a little bit confusing ki, you know, ho kya raha hai? Abhi, is it getting better? Is it getting worse? Anyways, we'll get Tapan Dave from Balfour & Thompson's very soon to join us and give us a market update on housing and interest rates. उसके बाद सेकेंड हाफ द शो वी हैव द लेबर पार्टी कैंडिडेट माइकल वुड फ्रॉम माउंट रॉस्किल। उन्होंने क्या क्या करा पिछले महीने, व्हाट्स लेबर पार्टी थिंकिंग, व्हाट्स विंस्टन एंड शेन अप टू, व्हाट इज हिज व्यूज ऑन दैट, वो भी बातें करेंगे। एंड दैट विल बी द शो टुडे। यू कैन जॉइन मी ऑन 3031386। अगर आपको कुछ भी बातें करनी है, कुछ ओपिनियंस हैं, 8812 पे आप मुझे SMS भी कर सकते हैं। एंड इन्जॉय द शो, आई विल बी विद यू फॉर नेक्स्ट 1 आवर।

0: This is Real Talk with Rahul.
1: All right, welcome back to the show. आप सुन रहे हैं राहुल चोपड़ा को. आई एम विद यू टिल 7 o'clock. जैसे मैंने बात करी थी इस गाने से पहले कि there's a little bit of fear, uncertainty in the market कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं बैंक्स ने. एट द सेम टाइम वी नीड सम प्रॉपर्टी न्यूज नाउ. लुक, इन्फ्लेशन इज अराउंड 3% अभी मार्च क्वार्टर में, बट द प्रिडिक्शन इज कि ये ऊपर जाएगी. You know, so is OCR hike coming? We have Tapan Dave for Bafur and Thompson with us. Tapanji, welcome to the show.
2: Namaskar, good evening.
1: गुड इवनिंग. गुड इवनिंग भाई, ये मार्केट में हो क्या रहा है? मुझे थोड़ा सी कंफ्यूजन है कि एक तरफ अभी थोड़ी न्यूज आई थी कि हाउसिंग प्राइसेस आर एक्चुअली क्वाइट स्टेबल, लेकिन ऑन द अदर हैंड बैंक्स हैव डन अ बिट ऑफ अ हाइक एंड दे एक्सपेक्टिंग द OCR टू राइज. तो क्या हो क्या रहा है मार्केट में?
2: So, because of the war situation, there is a lot of uncertainty.
1: Huh.
2: And that's why for buyers, it is the best time to buy in uncertain times.
1: Achha.
2: Because if there is uncertainty, they will always get good deals.
1: So, tabhi price achha mil raha hai kya is wakat? Like, but looks like the housing prices, jo data abhi aaya hai, the prices are going pretty good. Like, people are getting what they want. Is that right? Or...
2: तो बायर्स के लिए दैट्स व्हाई इट्स स्टिल बायर्स मार्केट राइट नाउ.
1: अच्छा,
2: दैट्स व्हाई इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड इफ दे बाय इट राइट नाउ देन द बैंक्स दे कैन लॉक द इंटरेस्ट रेट एट अ बेटर इंटरेस्ट रेट प्राइस. सो बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन इट सीम्स दैट द फ्यूल प्राइसेस आर ऑलरेडी क्वाइट हाई एंड द बैंक्स बिलीव दैट द इन्फ्लेशन विल गो अप बिकॉज ऑफ दैट.
1: Yeah.
2: And that's why they are increasing the interest rates. And they also have to borrow from international markets. So international markets are also on the understanding that the oil price is going up, inflation going up, so everybody will increase. So if the buyers can buy a property now, they can lock at a good interest rate for the benefit.
1: लेकिन तपन भाई, अगर देखा जाए इफ द OCR कीप्स राइजिंग, राइट? सो एक तरफ हम देख रहे थे कि द इकोनॉमी नीड्स टू रिकवर, वी नीड टू गेट मोर सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट. दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट दोबारा ऊपर जा रहे हैं, तो हाउ वी गोना कम आउट ऑफ दिस? लाइक, हाउसिंग मार्केट अभी भी स्ट्रांग है? लाइक, यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ पीपल इन ऑक्शंस? व्हाट्स हैपनिंग?
2: इट्स स्टेबल. हाउसिंग मार्केट इज स्टिल नॉट, इट्स टेकिंग लॉन्गर टू सेल. And that's why it is the buyer's market, and that's why the buyers can get the benefit and advantage of it. Interest rate, OCR may or may not go up because the government, the economists want the economy to do well, obviously. The government also wants to do the economy to do well. And everything will depend on the stability of the economy, and that's what makes the difference. If the economy is stable, then it's more likely to bring more investors. And hopefully, because of the Middle East, there are investors who want to now invest in New Zealand as well, as one of the preferred destination.
1: Achha.
2: So hopefully, if investors come, then that will increase probably the price in the market. But at the moment, it is for the buyer's benefit and advantage. A good opportunity to buy for the buyers to buy.
1: Right. Achha, what about rental? Agar rental ka abhi jo aaya hai data wagaira, it's saying that, you know, rents are sort of holding or falling a little bit. It's not rising, jaise humne pehle dekha tha, which is a good thing for some people. Any update on rental, or it's going anything has changed which you have seen in the market, or no?
2: No, the rental is still stable. So, and only if the immigration numbers go up, then the rental is likely to go up. At the moment, it is still stable. A lot of people still moving to Australia.
1: So, ek aur ji Tapan bhai, ki we have seen a lot of people migrate here in the last, you know, year or so. But are they the people who are going to buy a house? Yeah, kaise buyers aa rahe hain? I mean, what kind of buyers are you seeing more?
2: Most of them are first home buyers, and they are investors if they have good opportunities. But definitely, it is stable. It's not going down, it's not going up. But And buyers are getting good opportunity because of that. So all buyers should always take the benefit of that.
1: Okay, thank you, Tapan Bhai. Thank you for joining us, and we will catch up with you. This is Tapan Dave from Barfoot and Thompson. Thank you, Tapan Bhai.
2: Thank you. Thank you for your time. Thank you, bye.
1: अच्छा ये थे तपन दवे लुक द रीजन मैं ये इस बारे में बात कर रहा हूँ कि देर इज अ लिटिल बिट ऑफ अनसर्टेनिटी विच इज नॉट गुड क्या हुआ है कि अभी इन्फ्लेशन इन द मार्च 2026 क्वार्टर इज अराउंड 3.1% ठीक है अगर देखा जाए तो नाउ हो सकता है कि मोस्ट लाइकली थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट थिंग्स लाइक फूड थिंग्स लाइक पेट्रोल सब बढ़ गए हैं आई मीन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज गॉन अप लाइक 12% दैट्स क्रेजी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है 4%, फूड प्राइसेस 4%, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैव गॉन अप, जो लोग खरीदते हैं यू नो मेडिसिन एंड एक्सेट्रा तो इन्फ्लेशन तो ऊपर जाएगी ही जाएगी लेट मी नो व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट यू कैन जॉइन मी ऑन 3031386 ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग इफ यू हैव एनी व्यूज ऑन गवर्नमेंट इलेक्शन यू कैन जॉइन मी राइट दिस इज अ टॉपिक आई एम फोकसिंग ऑन राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स की क्या हो क्या रहा है मार्केट में हाउ आर यू फीलिंग अगर आपको आपको क्या लगता है कि आपकी जो सिचुएशन थी एक या दो साल पहले इट्स गॉटन बेटर इट्स गॉटन वर्स इट्स द सेम यू नो सो 3031386 यू कैन कॉल मी और यू कैन एसएमएस मी ऑन 8812 एज वेल क्योंकि लाइक आई सेड कि एक इट्स गेटिंग अ मिक्स आई एम गेटिंग अ मिक्स मैसेज ठीक है रेंट्स आर लाइक सोर ऑफ ड्रॉपिंग आई मीन आई वुडन्ट कॉल इट अ ह्यूज ड्रॉप बट देर इज अ 1% टू 2% ड्रॉप Because inflation is going up, लोगों को चिंता है कि potentially OCR can rise. So banks ने क्या करा है? They have looked at this forecast, they've gone out and they have increased the interest rates. Now that is a bad cycle. मतलब उसका मतलब कि अगर आपने जैसे ही interest rate बढ़ाया है, जो जो आप fix कर रहे हैं अपने interest rates, they are paying more than they expected to pay. And that extra disposable income is now again going back. हमें लगा था कि अब interest rate अगर stable रहेंगे एक साल दो साल थोड़ा नीचे रहेंगे तो पैसा वापस आएगा market में जो disposable income बचेगी लोगों के पास वो खर्च करेंगे वो market में लेकिन this came as a bit of a shock to me. चलो देखते हैं क्या होता है आगे जाके but you know it's not good for the current government is that's what I would say because You know the promise or the hope was ki you know pichle dhai saal se jo wo hai ki things will improve but just it's just not getting there. Iska matlab ye nahi hai ki agar aap labor ko ya greens ko ya Maori party ko le aaoge ki sab kuch theek ho jayega. Lekin the blame normally goes on the current government. Human psyche aisi hai aur hamari thinking hamesha aisi rahegi ki jo abhi in charge hai usne kyun nahi theek kari cheeze. You know usse kya farak padega. So this is where we are at right now. Let's listen to a song and we will be back very shortly.
0: अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड ब्रेथ टेकिंग फोटोग्राफ्स दे ऑफर डीजे वेडिंग वीडियो एंड फोटो पैकेजेस फ्रॉम ड्रोन एंड गिम्बल शॉट्स टू 4K वीडियो शूटिंग फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे पार्टी गेट टूगेदर और मैसिव वेडिंग कॉन्टैक्ट मल्टी डीजे
3: विद ऑल लेटेस्ट इक्विपमेंट दे ऑल्सो ऑफर इजी पेमेंट ऑप्शंस Contact DJ Dinesh. Phone number 021-058-4711.
4: There's never been a better time to send Solly with Western Union. Right now, when you give to your family back home, you'll get a little something for yourself too. Make two transfers of $200 or more to Fiji before the 4th of May, and you'll get a Digicel or Vodafone mobile top-up voucher. Oh, who's that calling? Say hi from Western Union. Stocks Limited. Visit westernunion.com for terms and conditions and participating agent locations.
5: अरे, Indelible Homes वाली गुड़िया इतनी बड़ी हो गई.
6: Hi, मैं हूँ गुड़िया. भाई गुड़िया, जिसके भैया ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया था. अब मेरे पास मेरा अपना रूम है. बहुत बड़ा, बहुत अच्छा. Thanks to Indelible Homes. Thank you. See you.
7: Naya ghar banana ho ya subdivide karna ho. Indelible Homes. Phone 0800-233-111.
8: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
9: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
10: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.

0: મમ્મી મમ્મી એરફોન કાનમાંથી નીકાળ જરા.
1: હે હે શું કીધું દીકરા?
0: અરે કેટલા વર્ષથી નવું ઘર કરતી હતી, આપણે લઈ લીધું ને ઇન્ડેલેબલ વાળાનું નવું ઘર.
1: તું કેટલો સારો છો દીકરા.
0: મમ્મી નવું ઘર છે, સાચવ જરા, બધું અહીંયા વેરવિખેર પડ્યું છે.
1: તમે ઝેન્ઝી વાળા ઘડીમાં કામ કરાવો છો, હે ભગવાન.
0: મમ્મી
1: ઘર બનાવવા વાળાનો ખૂબ ખૂબ આભાર.
0: ધન્યવાદ ઇન્ડેલેબલ હોમ્સ.
2: ન્યુઝીલેન્ડ કે મોસ્ટ ટ્રસ્ટેડ ઓર એક્સપિરિયન્સ સબ ડિવિઝન એન્ડ બિલ્ડિંગ સ્પેશિયલિસ્ટ ઇન્ડેલેબલ હોમ્સ. ફોન 0800-233-111.
3: હે હેમિલ્ટન, guess what? अब आपके यहाँ हैमिल्टन में आ गया है ग्लोबल फाइनेंस. फॉर एनी काइंड ऑफ होम लोन, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन, रीफिक्सिंग या रीफाइनेंसिंग के लिए कॉन्टेक्ट करें ग्लोबल फाइनेंस को, जो मॉर्गेज के साथ साथ इंश्योरेंस में भी स्पेशलाइज करते हैं. लाइफ, ट्रॉमा, हेल्थ इंश्योरेंस, हर चीज के लिए ग्लोबल फाइनेंस. नाउ इन हैमिल्टन एट यूनिट 26, 20 क्लाइड स्ट्रीट, हैमिल्टन ईस्ट. फोन 0755770888. Global Finance, now in Hamilton.
4: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल प्रोजेक्ट.
3: ये होगा संडे 17 मई को 11 AM टू 4 PM,
4: 378 RRIMU रोड, रामा रामा साउथ ऑकलैंड में. एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ.
3: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें शिवानी जी को 1870012 पर.
4: One temple, one community, eternal blessings.
2: क्या काम की भागदौड़ से कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है? वरी मत कीजिए, स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस के आपकी मदद के लिए तैयार हैं. यहाँ आपको मिलता है 24 आवर्स सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े छोड़ दीजिए और इनकी टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको बिल्कुल तैयार देगी. यहाँ सूट्स, बिजनेस शर्ट्स, ड्रेसेस और फॉर्मल वेयर के प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं. अरे डूबे ब्लैंकेट्स, स्पोर्ट्स गेयर की सफाई भी यहाँ पर होती है. स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री and dry cleaners 220 Stoddard Road, Montrose. Aasan, bharosemand aur 24/7.

0: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: घर को स्वस्थ रखने के लिए अपने बेड शीट्स और पिलो केसेस को हर 7 से 10 दिन में जरूर धोएं ताकि डस्ट, माइट्स और एलर्जीज दूर रहें। आप चिंता मत करो, ये काम स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रो स्किल को सौंप दो। यहाँ आपको 24/7 सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट या फिर आप अपने कपड़े यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ की टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको कपड़े दे देंगे। स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 स्टोरार्ड रोड माउंट रस्को। आसान, भरोसेमंद और 24/7।
2: There's never been a better time to send Solly with Western Union. Right now, when you give to your family back home, you'll get a little something for yourself too. Make 2 transfers of $200 New Zealand or more to Fiji before the 4th of May, and you'll get a Digicel or Vodafone mobile top-up voucher. Oh, who's that calling? Say hi from Western Union. Stocks Limited. Visit westernunion.com for terms and conditions and participating agent locations.
3: Get Mum a gift she'll love from Bunnings.
4: We've got plants, the hanging baskets, the seedlings. We've got a really good range of coloured pots as well. This year, give a Mother's Day gift that keeps on growing.
5: 17-centimetre peace lily, only $52.97. Fiskars Ruby Bypass Pruners, $36.95. Northcote Pottery 20-centimetre Paloma Egg Pot, just $19.98.
4: Pop into Bunnings and find something she'll love.
6: Bunnings Warehouse.
4: Lowest prices are just the beginning.

उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज़ में धड़क धड़क बंटे और बम्बली से। अच्छा, एक और न्यूज़ बिफोर आई गो इज दैट कि जो नया भी डाटा आया है फ्रॉम ज़ीरो, इट्स सेइंग कि जो न्यू बिजनेस सेल्स हैं दैट हैज़ गॉन अप बाय 4%। मार्च क्वार्टर में ही 5 से 6% सेल्स हुई हैं। तो यू नो लाइक जब मैं इस बारे में पढ़ रहा था एंड आई वाज लिसनिंग टू क्रिस स्मॉल हु इज़ द ABC बिजनेस सेल्स मैनेजिंग डायरेक्टर, वो बोल रहे हैं कि यू नो लुक इट हैज़ बीन अ बिजी एंड वेरी टफ 12 months, लेकिन जो वीकर बिजनेसेस थे जिनके कैश फ्लो अच्छे नहीं थे, क्लाइंट्स अच्छे नहीं थे, दे वर नॉट मैनेजिंग प्रॉपरली, दे हैव एग्जिटेड द मार्केट। लेकिन जो अच्छे बिजनेस चल रहे हैं एंड थिंग्स विच आर गोइंग वेल आर एक्चुअली गोइंग ओके, तो यू नो लाइक ट्रांजेक्शन्स आर अप। अब यू नो दैट अगेन पुल्स आउट गिव्स अ बिट ऑफ अ डिफरेंट आउटलुक from what we are used to listening that the market is struggling. Well, there are people are cautious, but obviously people are spending money. Aap chale jao airport pe phir bhi flights full ja rahi hai, so you know if sometimes you go to a mall, people are buying things and there are businesses selling. You know, there is, it says 27,000 people out there looking for a business actively. मतलब यू नो बायर्स आर लाइनिंग अप। और ऐसा लगता है कि कोविड के बाद एंड रिसेंटली पीपल वांट कंट्रोल, दे डोंट वांट टू जस्ट वर्क फॉर समबडी। यू नो चलो अगर यू हैव अ रियली प्रोफेशनल जॉब, यू गेटिंग पेड 200-300K, दैट्स डिफरेंट। लेकिन अपनी वेल्थ खुद बनानी है लोगों को। पीपल आर सेइंग लुक आई वांट कंट्रोल ओवर थिंग्स। सो दिस इज अनदर न्यूज विच इज कम आउट, एंड इफ यू आर अ बिजनेस ओनर एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बिजनेस, देन हे दिस कुड बी अ गुड न्यूज दैट देयर इज पोटेंशियल आउट देयर। चलो दैट वाज अ नोट दैट यू नो वी हैव टू थिंक अबाउट कि सिर्फ न्यूज पढ़नी है या वी व्हाट आर वी फीलिंग लाइक, फील क्या है मार्केट में। जो फील है इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है, बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज दैट्स मी रियल टॉक विद राहुल। अगले संडे द अदर राहुल विल बी विद यू विद स्पोर्ट्स एंड देन आई विल बी बैक इन 2 weeks विद मोर न्यूज, मोर पैनल, मोर डिस्कशंस। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस संडे एंड अ ग्रेट वीक अहेड।

0: Rana.
1: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
2: रेडियो तराना 1386 AM का प्रसारण है और स्विस की घड़ी में शाम के ठीक 7 बजे हैं।
3: अब नित्यानंद सुंदर से आज के समाचार। कल रात करीब 8 बजे बंदूक चलने की एक घटना की रिपोर्ट पर हथियारबंद पुलिस पहुंची वाई। एक गोली पास की एक मोटर को भी लगी थी। वाइकाटो डिस्ट्रिक्ट कमांडर सुपरिंटेंडेंट स्कॉट कैमल ने कहा कि कल रात 8:55 पर रोजमोंट रोड पर हुई इस घटना की सूचना पुलिस को मिली थी। आरोपी को पुलिस कस्टडी में रखा गया है। उसे कल हैमिल्टन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान कराया जाएगा, जिसके नतीजे 24 मई को आएंगे। चुनाव आयोग ने प्रदेश की 144 फालता विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर वोटिंग के दौरान हुई गंभीर चुनावी गड़बड़ियों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उल्लंघन के मद्देनजर ये फैसला लिया है। वहीं फालता के हासिम नगर में कथित धमकी और डराने धमकाने के मामले में पंचायत प्रधान इसराफिल चौकीदार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बिहार के सीवान जिले में कुख्यात इनामी अपराधी के एनकाउंटर का मामला सामने आया है। सोनू यादव की मृत्यु मौके पर ही हो गई थी। सोनू यादव पर 25,000 रुपए का इनाम था। सोनू यादव कई रंगीन आपराधिक मामलों में वांटेड था। हाल ही में पूर्व MLC मनोज सिंह के भांजे हर्ष सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि उनके बहनोई गंभीर रूप से घायल हुए थे। हर्ष सिंह हत्याकांड में सोनू यादव का भी नाम आया था। पश्चिम बंगाल में शनिवार को BJP और TMC वोटों की गिनती के लिए सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियुक्त करने के मुद्दे पर आमने सामने रहे। वहीं चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर राज्य में अतिरिक्त ऑब्जर्वर नियुक्त करने का फैसला लिया है। दूसरी ओर शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को TMC अपनी जीत बता रही है, तो वहीं BJP इसे ममता बनर्जी की हार बता रही है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है। पश्चिम बंगाल समेत देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटों की गिनती 4 मई को होनी है। ईरान ने कहा है कि उसने अमेरिका से हमेशा के लिए युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान को प्लान भेजा है। हालांकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को यह कह चुके हैं कि ईरान की ओर से आए एक प्लान से वो संतुष्ट नहीं है। इसके बाद शनिवार को ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा है कि ईरान ने पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाकर युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने का अपना प्लान दिया है। उन्होंने कहा, अब फैसला अमेरिका के हाथ में है कि वह बातचीत का रास्ता चुनता है या टकराव जारी रखता है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच ईरान ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिका दोबारा हमला शुरू कर सकता है। IRGC का कहना है कि अमेरिका और इसराइल संभवतः ईरान के साथ फिर से युद्ध शुरू कर सकते हैं, और उसने चेतावनी दी है कि ईरानी सेनाएं वाशिंगटन की ओर से किसी भी दुस्साहस या मूर्खता का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि इस बात की संभावना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य हमले फिर से शुरू किए जा सकते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमरीका जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या में बड़ी कटौती करेगा। यह बयान जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ चल रहे विवाद के बीच आया है, क्योंकि ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमरीका की प्रतिबद्धता को कम करना चाहते हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि करीब 5,000 अमरीकी सैनिकों को जर्मनी से वापस बुलाया जाएगा, लेकिन शनिवार को जब ट्रंप से इस फैसले की वजह पूछी गई तो उन्होंने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि कटौती इससे कहीं ज्यादा होगी। नीदरलैंड में एक 33 वर्षीय व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उस पर धुर दक्षिणपंथी चरमपंथी होने का संदेह है। साथ ही उस पर दो डच राजकुमारियों, राजकुमारी कैथरीना अमालिया और उनकी छोटी बहन राजकुमारी एलेक्सिया की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। संदिग्ध की सोमवार सुबह प्रारंभिक अदालती सुनवाई होगी। उसके पास से दो कुल्हाड़ियां बरामद हुई हैं, जिन पर एलेक्सिया मोसाद और सीग हील, जो नाजियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मौखिक अभिवादन है, खुदा हुआ था। और रूस की ईरान से रणनीतिक साझेदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी है। इसके बाद भी वो अमेरिका इसराइल के खिलाफ ईरान की मदद क्यों नहीं कर रहा? ये सवाल लगभग हर आदमी के मन में है। रूस और ईरान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि है। इस पर 17 जनवरी 2025 को हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग को गहरा करता है। समझौते में संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रतिबंधों का विरोध, परमाणु ऊर्जा परियोजना में साझेदारी और डॉलर के बजाय अपनी मुद्राओं में व्यापार शामिल है। यह संधि 20 सालों के लिए की गई है। 2 अक्टूबर को यह संधि अमल में आ गई। ये थे आज के समाचार और अब अपने अनाउंसर नित्यानंद सुंदर को इजाजत दें। नमस्कार।
1: जागोरे कम लाइफ का आयोजन किया गया है पास्ता अनिल और रीना कान द्वारा। ये हिल्स चर्च 179 हिल्सबरा रोड में होने जा रहा है 9 मई को शाम को 6 बजे से। और जानकारी के लिए आप 0211017959 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया है शनिवार 23 मई को सुबह 9:30 से दिन में 12 बजे तक फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर 546 माउंट एल्बर्ट रोड 3 किंग्स में। श्री वेंकटेश्वरा देवास्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भोजन मेला होने जा रहा है रविवार 17 मई की सुबह 11 से शाम को 4 बजे तक 378 आररीमू रोड रामारामा में। एंट्री बिल्कुल ही फ्री है।
0: टराना कम्युनिटी मैसेजेस, आप सुन रहे हैं गोपाल को ऑन रेडियो टराना।
4: बहनों और भाइयों, सुनिए गोपाल भाटिया का मजेदार सुरीला प्रोग्राम सुनहरी यादें।

0: सुनहरी यादें।
1: सुनहरी यादों के सफर में दोस्तों मैं गोपाल आपके साथ में हो गया हूँ। आज की रविवार शाम और आपकी और मेरी मुलाकात का एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा जो है इंतजार कर रहा होता है। और फिर एक बार मैं आपकी खिदमत में आ गया हूँ उन्हीं सदाबहार गीतों की एक खूबसूरत सौगात लेकर। और उम्मीद हमेशा की तरह यही रखता हूँ कि आप मेरे साथ में जुड़ने के लिए तैयार हैं। तमाम हमारे लिसनर्स जो हैं इन दिनों रोवा या फिर आईहर्ड्स ऐप पर हमें सुन रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। और दुनिया भर में वैसे इस ऐप का इस्तेमाल किया जाता है, दुनिया भर में तमाम हमारे जो ऑनलाइन लिसनर्स हैं वो भी इसी के ज़रिए इसी के माध्यम से हमें सुन रहे हैं इन दिनों, सो थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ हमेशा की तरह हमारे साथ में जुड़ने के लिए। रेडियो तराना का ये प्रसारण है आपके लिए दोस्तों, और सुनहरी यादों का ये सफ़र, मेरा नाम है गोपाल भाटिया और अब से लेकर लगभग मध्यरात्रि तक मैं आपका साथ निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। क्या आप तैयार हुए हैं कि नहीं? अगर हो गए हैं तो ज़रूर हमें टेक्स्ट मैसेजेस द्वारा बता दीजिएगा, और अगर न्यूजीलैंड में है तो फ़ोन भी कर सकते हैं। वैसे थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा वो तमाम हमारे श्रोता जो मेरे आने से पहले ही मेरे साथ में जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भेजा करते हैं। अंजू थैंक यू सो मच, और सुजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शैलेंद्र जी वेलिंगटन में आप सुनते हैं, थैंक यू सो मच।

सुंदर यादों में अभी अभी आप जुड़े हैं, थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ फिर से एक बार। मेरे कुछ नाम मुझसे रह गए, अंजू जी सॉरी, आप भी सबसे पहले हमारे साथ में शामिल हुई हैं, और साथ ही साथ नॉर्मा जी आपकी भी फरमाइश मुझे आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद। अमीषा जी थैंक यू सो मच, आपका मैसेज भी मुझे आ गया, अच्छा लग रहा है आप सभी सुन रहे हैं प्रोग्राम, और क्यों ना सुनते, क्योंकि ये तो एक ऐसा प्रोग्राम है, ये एक हमारे लिए एक बड़ा एक आदत सी हो गई है, हर रविवार की शाम को हमें सुनहरी यादों से जुड़े हुए गीत जब तक हम सुनते नहीं हैं तब तक हमें ऐसा लगता ही नहीं कि पूरा जो हमारा वीक है वो गुजरा भी है ठीक से या नहीं लेकिन अगर कैसा भी गुजरा हो इसकी जो ये जो मुकम्मल होता है जब बड़ी खूबसूरती के साथ में होता है, बड़े इन खूबसूरत गीतों को सुनते सुनते होता है, ये बड़ी अच्छी बात है। उधर छायांक आप भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके फ़ोन का सबसे पहले कॉलर आज के आप हमारे रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ, आप भी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और तमाम उन गीतों को आप भी पसंद किया करते हैं जो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुआ करते हैं, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। 7:16 हुए हैं, 8 के बाद सुनहरी यादों की जो कड़ियाँ हैं वो भी आपके लिए वैसे ही होंगी जैसे हमेशा होती हैं, उसके लिए हम आगे चलकर आपको और भी बताएंगे, लेकिन आइए गीतों की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आप भी मुझे अपनी फरमाइशें अभी से देना शुरू कर सकते हैं 8812 पर टेक्स्ट मैसेज करके।

0: New Zealand farmed fresh lamb shoulder chops on special at just $17.90 a kg. Large tray only. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
1: The bell has gone, but is the day really over? Between sports meetups, play dates, homework, and late shifts, you need to be putting in the right stuff. Packed with calcium, vitamins, and protein, grab some Anchor. Real milk, real good.
2: The DJ Shalin Show.
3: DJ Shalin Show every Saturday, subah 6 se.
4: लेकिन फिलहाल आप सुन रहे हैं सुनहरी यादों का ये सफर, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इनके संगीत पर मैंने मंचली फिल्म से शीर्षक गीत चुना है आपके लिए। आपको पता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ये जो जोड़ी है, लक्ष्मीकांत कुदलकर ये जो है महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, और प्यारेलाल जी जो है वो ऑब्वियसली यूपी से। और खास बात ये है कि इस जोड़ी ने स्पेशली मतलब इसमें लक्ष्मीकांत जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 3600 से भी ज़्यादा गीत जो है वो उन्होंने बनाए हैं। अब जब हम फिल्मी पर्दे पर या फिर वैसे भी हम कभी भी गीतों को सुनते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है उन गीतों को सुन के, उनकी वजह, उनकी धुनें, उनके अल्फाज, उनका यू नो म्यूज़िक, ये सारा अच्छा लगता है। लेकिन हम कई मर्तबा जो है ये सोचते नहीं है कि अच्छा ये भी गीत मुझे बड़ा अच्छा लगा, और फिर वो भी गीत मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और वो भी जो है वो गीत बड़ा अच्छा लगता है। और जब भी आप कभी कभी कॉमनली देखेंगे तो हो सकता है कि वो, क्योंकि अगर आपको एक संगीतकार का एक गीत अच्छा लगता है तो इसमें कोई दोराह नहीं है कि उसी संगीतकार के आपको और भी कई सारे गीत पसंद आएंगे, क्योंकि एक जो पैटर्न जो है ना उन संगीतकारों का, तो वो जो है आपके यू नो बैक ऑफ योर माइंड, वो जो आपको कहीं ना कहीं वो आपको पसंद आता है, इसलिए आपको वो पहला गीत जो है वो अच्छा लगता है। और शायद यही वजह है कि जब आप सोचेंगे तो आपको ऐसे कई सारे गीत मिलेंगे जिसको अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इनके ही वो बनाए हुए गीत हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। आइए सुनते हैं एक बहुत ही शरारत भरा ये गीत, और शरारत भरा अंदाज, बड़े ही सीरियस अभिनेता रहते थे, कई अभिनय जो है वो सीरियस रोल्स उनको मिला करते थे, लेकिन बड़े ऐसे कम हैं जो बड़े शरारत भरे रोल उनको मिले हैं। संजीव कुमार

बहुत ही खूबसूरत ये गीत। और वैसे भी आपको पता है कि जब किशोरदा को कोई भी गाना दिया जाता था, आमतौर पर जब उनको ज़्यादा उस गीत के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत वो नहीं समझते थे तभी तो नहीं पूछते थे, लेकिन जब कोई गीत उनको ऐसा लगता था कि नहीं इस गाने के बारे में मुझे जानना बहुत ज़रूरी है कि ये गीत किस पर फिल्माया गया है, तो वो ज़रूर उसी अंदाज़ में, न जाने क्या उनके अंदर ये खूबी थी कि वो जिस भी कलाकार के लिए गाते थे, मतलब ये तो कितनी बार हम रिपीट कर चुके हैं इस बात को, लेकिन आप सोचिए अब संजीव कुमार को भी किशोरदा ने बड़े खूबसूरत गीत दिए हैं और कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि इस गीत को संजीव कुमार के अलावा कोई गा रहा है फिल्मी पर्दे पर। यू नो समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग अबाउट वॉइस ऑफ किशोर कुमार। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गीत बहुत दिनों के बाद इसे शामिल करने जा रहा हूँ, हालांकि मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे स्टूडियो में आता हूँ उसके बाद में फिर कई सारे गीत ऐसे जो है दिलो दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं और फिर मुझे आपकी फरमाइशें जो है वो भी मुझे मेरा काम बड़ा आसान कर देती हैं और मुझे पता चल जाता है कि आज आप तमाम लिसनर्स को किस तरह के गाने सुनने हैं। और थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ जितने श्रोता हमें फरमाइशें देते हैं और जितने नहीं भी देते हैं ये सोचकर कि नहीं सारे ही गाने अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं, एंड दे जस्ट वॉन्ट टू यू नो लिसन टू दोज सॉन्ग्स, आप मेरी चॉइस सुनना चाहते हैं ना? लेकिन उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: stay updated with Radio Tarana.
1: Download now the free Tarana mobile app.
2: न्यूजीलैंड के कई बड़े बड़े इवेंट्स में होने वाले जो बड़े बड़े माकी आप देखते हैं ना, अरे मनकाओ दिवाली सिख गेम्स में ये माकी इवेंट्स ऑकलैंड माकी एंड पार्टी हायर के हैं। 20 सालों से हैं बिजनेस में। इनके माकी बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस। घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माकी लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा। इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265 0505। और सुनिए, ये पोर्टल लू भी हायर पर देते हैं। इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265 0505।
3: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स, मंडप और माकीज पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा।
4: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
5: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, ओटीए द ओकलैंड।
6: कौन?
7: मैं यमराज हूँ।
6: ओह जय हो महाराज, लेने आए हो तो चलो।
7: कमाल है, जाने की इतनी जल्दी?
6: हाँ, मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक, और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है। ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है।
7: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में बांटना चाहिए।
6: ओके, थैंक यू महाराज, मैं बांटता हूँ ये ज्ञान। सभी को कॉल करना चाहिए ग्लोबल फाइनेंस को 09255-5500 पर।
8: और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो गीत मैं इस पायदान पर आपको सुनाने वाला हूँ, ये बड़ी मशहूर फिल्म रही है अपने ज़माने की, हाथी मेरे साथी। और इस फिल्म के एक बहुत ही खूबसूरत वाक्या के बारे में आपको बताऊँगा, एक बड़ा ही खूबसूरत किस्सा है इस फिल्म से जुड़ा हुआ, वो मैं आपको बताऊँगा इस गीत के बाद। आइए सुनते हैं, मौसम से बड़ा ही गहरा ताल्लुक रखता हुआ ये गीत आज का, मतलब न्यूजीलैंड के मौसम से।

0: सुनहरी यादें गोपाल के साथ रविवार को।
1: कभी कभी एक गाना ही काफी होता है किसी को फिर से महसूस करने के लिए। अजीब है ना, हर गाना कोई ना कोई याद जगा देता है।

आपको पता है दोस्तों कि जो हाथी होते हैं ये बड़े ही इंटेलिजेंट जानवर होते हैं, ये तो खैर सभी आप उससे वाकिफ हैं, लेकिन जब तक हम हमने पढ़ा भी है, हमने सुना भी है, लेकिन जब तक हम उसे खुद अनुभव नहीं करते तब तक हमें शायद उन बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन जो कहानियां हैं उनसे जुड़ी हुई उन पर अगर गौर करें तो बड़ा मतलब अमेजिंग ये फीलिंग होती है। आपको पता है इस फिल्म में जिस हाथी को दिखाया गया था, हाथी मेरे साथी, इस फिल्म में शुरुआत में तो सबसे पहले जब ये फिल्म शूट हो रही थी तो वो हाथी इतना अच्छा था कि वो तनुजा को एक मतलब एक शॉट था जिसमें तनुजा को ही हैज़ टू पुश अवे और समथिंग लाइक दैट, लेकिन वो बिल्कुल कर ही नहीं रहा था क्योंकि फॉर सम रीज़न ही हैड अ वेरी गुड बॉन्ड विथ तनुजा, एंड दैट्स द रीज़न तनुजा वो जो इस फिल्म की हीरोइन रही हैं। और फिर कई सालों के बाद, क्योंकि ये हाथी जो था वो तो उन्होंने सर्कस से लेकर आए थे शूटिंग के लिए, लेकिन कई सालों के बाद जब तनुजा अपनी बेटी काजोल के साथ में एक सर्कस में गई थी तो ये हाथी जो है उसने वहाँ पर भी तनुजा को पहचाना और उनका पल्लू जो है अपनी सूंड से पकड़कर वो खींचने लगा। सो सोचिए कि कितने इंटेलिजेंट है और कितनी उनकी जो मेमोरी है कितनी स्ट्रांग होती है कि इतने कई सालों के बाद जो है फिर भी उन्होंने वो पर्सन को कैसे पहचाना, मतलब तनुजा को कैसे पहचाना। और यू नो दिस रियली अमेजिंग, और वैसे भी बड़ी सेंटिमेंटल ये फिल्म रही है। अगर बहुत सालों के बाद इसे देखते हैं एक बार ना तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये उस ज़माने की फिल्में हैं जब हम स्कूल में जाया करते थे और इन फिल्मों को बड़ा हमारे लिए बड़ा फैसिनेटिंग होता था ये इन फिल्मों को देखना। और वैसे भी बड़ी अच्छी इसकी कहानी रही है, आखिर में तो बड़े सेंटिमेंटल सीन्स हैं इसके। और जानवर जो हैं वैसे भी कह नहीं पाते, लेकिन वो अपनी आँखों से अपनी हरकतों से बहुत कुछ कह देते हैं जो हमें शायद समझ में नहीं आता। आइए आज के इस प्रोग्राम की और एक बड़ी खूबसूरत फरमाइश शामिल करने जा रहा हूँ। 7:49 हुए हैं और 8 बजे के बाद सुनहरी यादों की जो खूबसूरत कड़ियाँ हैं वो आपके लिए होंगी, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा।

0: न्यूजीलैंड का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो तराना।
1: आप सुन रहे हैं गोपाल को ऑन रेडियो तराना।

0: Global fuel prices are impacting Kiwis, so these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
1: बच्चों बताओ डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
2: मैम डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम।
1: जीनियस। अब बताओ रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
2: मैम ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान।
3: बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान। फोन 09255500। टीज एंड सीज अप्लाई।
4: फार्मर्स हैज द बेस्ट गिफ्ट्स फॉर मॉम। सरप्राइज हर विद अ न्यू फ्रेग्रेंस और ब्यूटी गिफ्ट। कीप हर कोजी विद अ न्यू रोब एंड स्लीपवेयर। ट्रीट हर विद सम न्यू स्टाइलिंग टूल्स और अ गॉर्जियस डिफ्यूजर और कैंडल। सेलिब्रेट मॉम दिस मदर्स डे। फार्मर्स योर डिपार्टमेंट स्टोर।
5: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
6: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
7: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.
8: Radio Tarana. Time check.
3: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
9: की घड़ी में शाम के ठीक 8 बजे हैं।
10: सुनहरी यादें गोपाल के साथ रविवार को।
11: कभी कभी एक गाना ही काफी होता है किसी को फिर से महसूस करने के लिए। अजीब है ना, हर गाना कोई ना कोई याद जगा देता है।
9: जी दोस्तों, फिर से एक बार मैं सुनहरी यादों के सफर में आपका स्वागत करता हूँ। अभी अभी अगर आप हमसे जुड़े हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अगर नहीं जुड़ पाए हैं आज तो कोई नहीं, अपने जो साथी हैं उनसे जरूर पूछ लेना कि आज आपके पसंदीदा गीत जो है वो शामिल हुए थे और फिर से आपने मिस कर लिया। लेकिन ऐसा मत होने दें, अगर जुड़े हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता दिया कीजिएगा, यू नो बाय टेक्स्ट मैसेजेस, या फिर आप मुझे मेरे फ़ोन पे भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, जो अमूमन होता है जिनके पास वो ज़रिया नहीं है हमें फ़ोन करने का या फिर 8812 पर टेक्स्ट करने का, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल बी हाईली ओबलाइज टू प्ले योर रिक्वेस्ट। आइए अब हमारे सुनहरी यादों का ये दूसरा भाग जो है, इसमें भी हम आपके लिए वो गीत लेकर आए हैं जिन्हें आप सुनना पसंद करेंगे, और फिर इस अगले गीत के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे धुन राउंड, उसके लिए आप ज़रूर शामिल हो जाएगा। आपको ये तो पता होगा कि जब हम ऑनलाइन सुना करते हैं तो थोड़ा सा उसमें, जब मैं यहाँ पर आपको हेलो कह रहा हूँ तो आपके पास वो पहुँचेगा थोड़ी देर के बाद, तो आई डू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आपके फ़ोन का मुझे इंतज़ार होगा। आप सुनेंगे वहाँ पर और अपने लैंडलाइन या अपने मोबाइल से आप स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं, विच इज़ अ नॉर्मल वे टू इंटरैक्ट ऑन रेडियो। सो ये एक जरिया है, जैसे आपने पिछले सप्ताह भी किया था उसके पिछले भी किया था, वैसे ही आज भी आप कर सकते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ कि आप इन दिनों ऐप्स के माध्यम से हमारे प्रोग्राम्स को सुन रहे हैं।

0: फाल्को ऑन रेडियो तराना।
1: और जी हाँ दोस्तों, इस अगले एड ब्रेक के बाद हमारी फोन लाइंस आपके लिए खुल जाएंगी और आप धुन राउंड में शामिल होने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा।
2: Hey Hamiltonians, guess what? अब आपके यहाँ Hamilton में आ गया है Global Finance. For any kind of home loan, business loan, commercial loan, refixing या refinancing के लिए contact करें Global Finance को, जो mortgage के साथ साथ insurance में भी specialize करते हैं. Life, trauma, health insurance, हर चीज के लिए Global Finance. Now in Hamilton at Unit 26, 20 Clyde Street, Hamilton East. Phone 07577-0888. Global Finance, now in Hamilton.
3: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora. Buy two full price pieces and receive a third one free, just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May, in store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply.
4: अरे भाई साहब आइए, कैसे हैं?
5: नमस्ते नमस्ते। मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
4: एग्जैक्ट मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
5: प्यारा मंडप तो है, पर खर्चा बड़ा किया होगा भाभी जी।
4: नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एग्जैक्ट मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
6: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09265050505 और विजिट एग्जैक्ट मंडप फेसबुक पेज।
2: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्किस पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट।
0: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
7: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. क्योंकि हम देंगे IPL पर सभी अपडेट्स, रिव्यूज और प्रीव्यूज। Stay tuned to Tarana.
1: और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके लिए धुन राउंड के लिए जो गाना चुना है, इसकी धुन मैं आपको सुनाऊंगा और आप मुझे फोन करने की कोशिश करें और इस धुन को अगर आप पहचान लेते हैं, जो मुझे यकीन है आप जरूर पहचानेंगे, और फिर आप गा भी सकते हैं। और जी हाँ, यही सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। गीत की धुन कुछ ऐसी है

0: 了。ये गाने की धुन है और आपको ये गीत पहचानना है। हालांकि इस धुन का जो आखिरी हिस्सा था उससे तो आपको बहुत ही अच्छा क्लू मिल गया है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। 303-1386 हमारे फ़ोन का नंबर है दोस्तों। आप चाहें ऐप पर सुन रहे हैं लेकिन आप ऐप पर सुनते रहिए, मोबाइल से अगर फ़ोन कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो मोबाइल जो है उससे रेडियो शायद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अंदर आपका मोबाइल कॉल जो है वो थ्रू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सुना है तो देर इज़ नो हार्म, आप फ़ोन करके फिर से एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी आपको फ़ोन करना है और मुझे बताना है अगर आपने होपफुली अगर धुन को सुना है तो, आई कैन ओनली होप, क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम अभी चेंज हो गया ना और मैं जानता हूँ कि जो ऐप पर सुन रहे हैं उनको फ़ोन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। अगर आप घर पर बैठकर कर रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉल फ्रॉम लैंडलाइन और मे बी सम अदर फ़ोन, क्योंकि अगर आप जिस फ़ोन पर सुन रहे हैं उसी फ़ोन से अगर कॉल करेंगे तो जो आपका रेडियो है वो डिस्कनेक्ट हो सकता है। सो अभी आपको कॉल करके मुझे बताना है ये कौन सा गीत है। 303-1386 हमारे फ़ोन का नंबर। हेलो नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्ते, मैं अशोक परमार।
0: अरे परमार जी, आप क्या दो दो फोन लेकर घूम रहे हैं है कि नहीं, बराबर ना?
1: नहीं आ, जब मोहब्बत जवां होती है।
0: मुझे ये बताइए कि आप दो दो फोन लेकर घूम रहे हैं क्या?
1: नहीं नहीं, दो दो, एक ही है मेरा।
0: एक ही है तो फिर उसी फोन पे सुना आपने और उसी फोन से फोन कर रहे हैं तो फिर वो रेडियो डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएगा?
1: अभी मैं शॉप पर हूँ, हमारे वेस्ट गेट में शॉप है,
0: इसीलिए तो, क्या बात है
1: यानी अभी क्लोज कर रहे हैं हम तो।
0: अच्छा तो, बहुत सही पहचानते हैं आप परमा जी
1: तो शॉप क्लोज की तो अभी हम जस्ट ऑन किया।
0: अच्छा क्या बात
1: तो
0: है,
1: उस पे सुना तो
0: बहुत सही पहचानते हैं आप हमेशा।
1: वेस्ट गेट में हमारी शॉप है चीज केक।
0: अच्छा, किस चीज की?
1: आप कभी पधारिएगा,
0: चीज
1: केक शॉप।
0: अरे वाह क्या बात है
1: जी,
0: बहुत
1: आप कभी पधारिएगा।
0: जरूर जरूर बहुत बहुत शुक्रिया,
1: ठीक है,
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अशोक जी।
1: और इसमें एक एक पंक्ति बहुत अच्छी है।
0: हाँ जी,
1: वो जैसे मुरली में छेद होते हैं,
0: जैसे मुरली में तान होती है,
1: मुरली में
0: हाँ,
1: अच्छा मुरली में तान होती है,
0: है ना,
1: ठीक है, मगर ऐसी कोई लाइन है
0: मैं आपको बताता हूँ अभी उसमें क्या लाइन है।
1: सहा
0: नहीं जाता उसमें, हाँ मैं आपको बता रहा
1: हूँ,
0: गुंचे गुंचे में हंस रहे हो तुम,
1: हो
0: इन ख्यालों में बस रहे हो तुम, यूं मेरे दिल में बस रहे हो तुम, जैसे मुरली में तान होती है।
1: अच्छा ऐसा है, ठीक है,
0: बहुत खूबसूरत शब्द है, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अशोक जी, थैंक यू, एंजॉय करें, थैंक यू, थैंक यू। देव साहब,
2: सर जी
0: कैसे हैं?
2: वैसा ही हूँ सर जी, जैसे पहले छोड़ा था पिछले,
0: वो छोड़ते तो आप हैं मुझे, मैं कहाँ छोड़ता हूँ आपको।
2: हम नहीं छोड़ते सरकार आप ही भाग जाते हो क्या?
0: कहाँ भागा था मैं? कहीं नहीं, मैंने तो छुट्टी नहीं ली बहुत दिनों में,
2: मुझे मालूम है छुट्टी नहीं मिला इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं।
0: और यूं बार बार आप याद दिलाते हो और ऐसा हो जाता है कि बाद में फिर आगे भी और नहीं मिलेगी मुझे छुट्टी
2: मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक आप छुट्टी और रखेंगे आप नहीं आएंगे।
0: नहीं नहीं आऊंगा, आऊंगा क्यों नहीं आऊंगा,
2: नहीं नहीं नेक्स्ट वीक आप आएंगे नहीं, मुझसे बात वो कर लीजिए ना।
0: नहीं नहीं मैं आऊंगा
2: अच्छा फिर तो ठीक है,
0: शर्त लाओ, शर्त लाओ भाजी, शर्त लाओ,
2: आप सब थोड़ा चढ़ा दो फिर आपको बिल्कुल, हमें तो आऊंगा,
0: शर्त लाओ भाजी, शर्त लाओ।
2: अरे सर जी गरीब आदमी है, कहाँ शर्त लगाए हम।
0: सुनाइए और सुनाइए देव साहब, क्या हो रहा है उधर टीपुकी में?
2: टीपुकी में ठंड पड़ रही है सर,
0: है ना,
2: अभी गोल्ड की पिकिंग फिनिश हो रही है, तकरीबन होगी है।
0: अच्छा,
2: तो ग्रीन की पिकिंग नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होगी
0: तो शाम को, क्योंकि आज इन दिनों जल्दी अंधेरा हो जाता है तो फिर आप जल्दी काम खत्म कर देते हैं?
2: हाँ जी, काम तो तकरीबन 5:30 बजे खत्म हो जाता है।
0: तो वहाँ पे लाइट्स वगैरह होती हैं जहाँ पे पिकअप करते हैं?
2: हो भी जाती है, अगर किसी का ऑर्चर फंस जाए तो फिर वो लाइट्स में पिकिंग होती है।
0: अच्छा,
2: कभी कभी रात को भी हो जाती है, 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाता है।
0: उन फलों को भी बड़े प्यार से निकालना पड़ता है ना,
2: वो तो मजा अपना ही है सर, जैसे आपको रेडियो में मजा आता है ना वैसे हमको इधर।
0: क्या बात है,
2: होता है सर,
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, काम को आप एंजॉय कीजिए, हैवी मत होने दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने।
2: कभी आपको काम को बोर मत कीजिए कि ये ऐसे वैसे,
0: सही बात है, एंजॉय कीजिए,
2: ऐसे ही जिंदगी है।
0: बिल्कुल सही बताया, एंजॉय कीजिए, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज की शाम में आपने बहुत अच्छा ये कहा है कि जिंदगी को एंजॉय कीजिए। देव साहब अब गाकर आप थोड़ा सा हमें भी एंजॉय करने का मौका दीजिए।
2: कोशिश करता हूँ सरकार, जी, जी, जी, जी, जी, सूरज के आगे दिए की क्या चलती है।
0: नहीं नहीं नहीं, दिए की रोशनी भी बहुत जरूरी होती है जिंदगी में।
2: हाँ, वो जब अंधेरा हो तब
0: जी।
2: जब मोहब्बत जवान होती है, जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक जवान होती है। सर ये है फिल्म,
0: मुझे ऐसा लग रहा है कि जसू आंटी नहीं आ रही हैं तो आपने भी अभी धुने जो है थोड़ी सी बदलनी शुरू कर दी।
2: अरे सर, जसू आंटी तो जसू आंटी है ना, उसका उनका मुकाबला कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जसू आंटी की हम आपको
0: जी
2: वो क्या बोलते हैं उसको, कमी महसूस नहीं होने देंगे।
0: नहीं।
2: अभी तो मैंने उनके ना जो क्या बोलते हैं उसको, उनके हर्फ जो थे
0: जी
2: वो नहीं चेंज किए।
0: नहीं किया बिल्कुल।
2: हाँ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत चेंज कर देते तो और भी मजा आता।
0: ना ना, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अभी देख लीजिए, हाँ 5 मिनट बाद जसू आंटी भी आएंगी।
0: आएंगी बिल्कुल।
2: ठीक है,
0: थैंक यू सर।

बहुत ही खूबसूरत ये अंदाज रफ़ी साहब का, बड़े देखिए हर शब्द जो है उनकी ज़ुबान से निकला है गीतों के माध्यम से, वो इतना खूबसूरत, इतना नज़ाकत भरा, इतना प्यार भरा, इतनी मोहब्बत उन शब्दों में जिस तरह से रफ़ी साहब ने गाया है इन गीतों को, बहुत ही लाजवाब। उधर पंडित शारदा जी आप भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, पंडित सुनील शारदा जी बहुत बहुत दिनों के बाद आपका मैसेज मुझे आया, अच्छा लग रहा जानकर कि आप भी हमारे इस प्रोग्राम को सुना करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आइए 8:20 हुए हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गीत हाथ लगा है, इसे हम सुनते हैं और फिर लगभग 8:30 फिर एक बार हम 3 गीतों की कड़ी में भी आपका इंतज़ार करेंगे। उन तमाम श्रोताओं का जो हमें फ़ोन किया करते हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, लगभग 8:30 हम आपके लिए 3 गीतों की कड़ी भी लेकर आएंगे।

0: Do you want New Zealand to know about your business? If yes, it's just a call away. Call Colin now on 0274-999015 and get your advert to play on The Edge, Breeze, Mo FM, George or Magic.
1: This is Radio Tarana.
2: आप सुन रहे हैं गोपाल को ऑन रेडियो तराना।
3: दोस्तों, मैंने आपके लिए जो अगला गीत चुना है, रवि साहब का गाया हुआ नया रास्ता फिल्म से 1970 की बनी हुई फिल्म है। और इस गीत के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं तीन गीतों की कड़ी। मैं ये इसीलिए इस गीत के पहले कह रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा तैयार हो जाएं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जब आप ऐप्स के माध्यम से सुन रहे हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं तो थोड़ा सा लेटेंसी की वजह से थोड़ी सी देर से आवाज़ आप तक पहुंचती है। सो ऐसे में जैसे ही आप सुनते हैं तो फिर आपके लिए फ़ोन लाइन जो है हमारी ओपन हो जाएंगी। आप ज़रूर हमें फ़ोन करके उन तीनों गीतों में से एक गीत चुनने का प्रयास कीजिएगा इस अगले गीत के बाद।
4: पहुंच कर

0: सुनहरी यादें गोपाल के साथ रविवार को।
1: कभी कभी एक गाना ही काफी होता है किसी को फिर से महसूस करने के लिए। अजीब है ना, हर गाना कोई ना कोई याद जगा देता है।
2: और चलिए दोस्तों, याद तो जगा देता है, लेकिन जो अगले जो सेगमेंट है जिसमें हम तीन गीत आपके लिए चुनकर लाए हैं, वो तीनों ही गाने जो है महेंद्र कपूर साहब के गाए हुए हैं। और तीनों गीतों की एक एक झलक सुनाने के बाद मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूंगा। आप मुझे ज़रूर बताएं कि तीनों में से कौन सा गीत आपको आज के इस सेगमेंट में सुनना है। पहला गीत है

0: जी हाँ दोस्तों, इन तीनों गीतों में से एक गीत सुनने के लिए आपको मुझे फोन करना होगा अभी, मतलब आई विल टेक मे बी वेट फॉर अनदर 20 seconds, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लेटेंसी. 3031386 हमारे फोन का नंबर है. जैसे कि हमारे अन्य श्रोता जो हैं वो थोड़ी सी जहमत लेकर फोन किया करते हैं, आप भी थोड़ी कोशिश जरूर करें. तीनों गीत बड़े खूबसूरत हैं. मैं जानता हूँ कि एक गीत चुनना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपको चुनना तो होगा. उमेश जी हमारे हमें फोन कर रहे हैं. उमेश जी कैसे हैं आप?
1: सर गुड इवनिंग, आप सुनाए कैसे हैं?
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. आप अच्छे रहते हैं, आपकी आवाज से लग रहा है कि आप बड़े फ्रेश महसूस कर रहे हैं आज.
1: क्या बात है सर, सारा दिन गुरुद्वारे का लंगर खा के आया.
0: क्या बात है यार, गुरुद्वारे के लंगर की एक खास बात होती है कि इतना सेटिस्फैक्टरी रहता है वहाँ पे, है ना
1: सर? मन की शांति होती है, खाया भगवान की दया से, उसके बाद आगे हो गया.
0: वैसी जो क्या कहते हैं, वैसा जो स्वाद है ना, कहीं नहीं आता, है ना गुरुद्वारे में जो
1: शांति और बड़ा प्यार से अच्छा खाना खाके.
0: बिल्कुल
1: सर, ये जो फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसपोंडर पे काम चल रहा है उससे वेलिंगटन में भी फर्क पड़ रहा है क्या?
0: हाँ पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल.
1: नहीं, व्हाट आई मीन टू से, हम पहले ना कवरेज वाज वेरी इजीली ऑल ओवर द वेलिंगटन, अब हमें कहीं जगह बहुत डिस्टर्प्टेड
0: हो रहा है ना,
1: सिग्नल्स आते हैं, वी हैव टू चेंज इट द अदर सोर्स, क्योंकि रेडियो नहीं सुनता.
0: पॉसिबली ये हो सकता है, बट हो जाएगा ठीक.
1: मैंने कहा आपको फीडबैक दे दूं, बट इट शुड बी लाइक दैट ओनली.
0: बिल्कुल,
1: लेकिन सर गाना सुनेंगे
0: जी. हाँ जी बताइए कौन सा.
1: हम जब से मटके आपकी बाहों में आ गए,
0: क्या बात है,
1: लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए. हम जब से मटके आपकी बाहों में आ गए.
0: बड़ा रोमांटिक गीत है ना.
1: ब्यूटीफुल,
0: बहुत बहुत सुंदर.
1: और फिल्माया तो साधना जी पे गया जी, तो हमें डैम फेवरेट है ना जी, खास करके उनकी ड्रेसिंग सेंस और उनकी सुनने का तरीका ब्यूटीफुल.
0: एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मेरे जी, एंजॉय करिए.
1: थैंक यू वेरी मच. सर ये जो जावेद अली का मोहम्मद रफी का हो रहा है, वो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्या?
0: जी मैं भी हूँ उसमें, मैं आई एम प्रमोटिंग दिस शो. जी जी जी.
1: अच्छा, दैट्स व्हाट आई थॉट, मोहम्मद रफी है तो आप तो होंगे ही होंगे.
0: क्या बात है, चलिए बहुत अच्छा लगा.
1: ठीक है सर,
0: थैंक यू सो मच मेरे जी, थैंक यू. बसंत जी और जनोबिया, आपका भी फोन आ रहा था, आप भी फोन कर सकती हैं प्लीज. बसंत जी कैसे हैं आप?
2: हाँ गोपाल भाई बढ़िया, मैं आपका एप सेट किया है हाट पे.
0: अच्छा लग रहा है ना, अभी सुनाई दे रहा है?
2: सभी प्रोग्राम मैं इसी पे सुनता हूँ.
0: अच्छा, आपकी बहुत हाँ. बहुत मेहरबानी है कि आप हाँ,
2: तो अभी मैं जाग रहा था, मैं बोला अच्छा आपको कॉल कर ले.
0: आप यूएस से फोन कर रहे हैं ना?
2: नहीं, यूएस यहाँ माउंटेन से.
0: ओके ओके, हमारे पास और भी एक बसंत है, वो यूएस से फोन किया करते हैं.
2: मैं पहले यूएस में था, मैं 1993 में.
0: हाँ क्या बात है. अच्छा अच्छा,
2: लौट आया.
0: तो आपको कौन सा नंबर सुना है?
2: सॉन्ग नंबर 3
0: ना, मैं जानता था आप भी वही गीत बताएंगे.
2: अभी थोड़ा बीमार रहता हूँ, तबीयत बहुत ठीक नहीं रहता है.
0: अच्छा, तो आप एक्चुअली बीमार रहते हैं तो सही करते हैं कि आप हमारे सुनाए हुए इन गीतों को सुन.
2: मैं सभी यही प्रोग्राम सुन रहा हूँ.
0: अच्छा,
2: मैं एक महीने बाद मैं 75 का हो जाऊंगा.
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात है, बहुत
2: अच्छा. गुड लक
0: जी, थैंक यू सो मच बसंत जी, थैंक यू सो मच. जैनोव आप मुझे अभी फोन कर सकती हैं. यस जी जैनोव, ड्राइव कर रही हैं?
3: हेलो, नहीं नहीं गोपाल जी, ड्राइव कर रहे, घर पे हम लोग सुन रहे हैं.
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात.
3: गोपाल जी,
0: आई एम वेरी गुड, आप बताइए कैसी हैं आप?
3: हाँ मुझे, हाँ वी आर फाइन. मुझे ये तीसरा गाना अच्छा लगा, हम जब से मटके.
0: वही तो अच्छा लगता है आपको हमेशा, मुझे भी तो यही अच्छा लगता है. आप बिल्कुल, मतलब आप लोगों की पसंद जो है ना, बिल्कुल मेरी पसंद के साथ में बड़ी मिलती जुलती है.
3: दैट इज गुड.
0: जितने भी आज के जो श्रोता है ना, जिन्होंने मैसेजेस किए हैं, वो सारे के सारे इसी गीत को सुनना चाहते हैं.
3: लेकिन मैंने जब भी आपने ये लगाया ना, मैंने बोला नहीं,
0: फिर तो यही गाना. बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच जनोबिया.
3: ओके,
0: आप भी हमारे साथ में शामिल होते हैं. सोनिया जी आप ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपने भी मैसेज करके तीसरे गीत को ही अपनी पसंद दी है. सो आइए सुनते हैं उसी खूबसूरत गीत को जो मुझे भी बेहद पसंद है.

0: यमराज हूँ।
1: ओहो जय हो महाराज, लेने आए हो तो चलो।
0: कमाल है, जाने की इतनी जल्दी।
1: हाँ मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक, और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है। ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है।
0: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में बांटना चाहिए।
1: ओके थैंक यू महाराज, मैं बांटता हूँ ये ज्ञान। सभी को कॉल करना चाहिए ग्लोबल फाइनेंस को 09255-5500 पर।
2: इंट्रोड्यूसिंग पिज़्ज़ा हट्स न्यू टीका एंड पनीर रेंज, रिच टीका बेस, क्रीमी पनीर, बोल्ड फ्लेवर। गेट द फर्स्ट टेस्ट फ्रॉम 10.99 पिकअप एट पिज़्ज़ा हट, लिमिटेड टाइम ओनली, टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
3: Global fuel prices are impacting Kiwis, so these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tire pressure regularly and lighten the load like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
4: NZ Post is always nearby. With over 560 stores across the country, you can always count on us to keep bringing the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.
5: आप सुन रहे हैं रेडियो तराना।
6: रेडियो तरह आप सुन रहे हैं। और चलिए दोस्तों, अब देखते ही देखते इतना समय बीत गया, 2 घंटों का समय जो है वो बीत गया है ऑलरेडी। लेकिन फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और एक बड़े ही खूबसूरत गीत को मैं शामिल करने जा रहा हूं। मुझे बड़े अच्छे गीत जो है हाथ लग जाते हैं जब सुंदर यादों में आपकी सेवा में मुझे आने का मौका मिलता है।

0: अपना।
1: प्रेमनगर फिल्म का यह गीत आपने सुना दोस्तों। आपको पता है कि जब इस फिल्म के सारे गीत जो है, वैसे तो एसडी बर्मन साहब ने ही संगीतबद्ध किए थे, लेकिन उन दिनों दादा बर्मन की तबीयत बड़ी नासाज थी और बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन दादा बर्मन की एक बात ये थी खास कि वो काम की तरफ, अपने काम की तरफ इतने डेडिकेटेड थे और इतनी लगन के साथ में उन फिल्मों को संगीत दिया करते, तो बड़े सिंसेयरली काम किया करते थे दादा बर्मन। और बीमारी के चलते भी उनको ये फिक्र हुआ करती थी कि अरे यार, फिल्म अभी रिलीज होने वाली है, गीत तो अभी बने नहीं, अब मैं बीमार हूँ, कौन करेगा। तो बड़ा मतलब उनको खुद को, हालांकि ये सारी जो मतलब प्रॉब्लम है प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जो हैं उनको ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी फिल्में अटक जाती हैं, लेकिन दादा बर्मन उन जिम्मेदारियों को इतनी खूबसूरती से निभाते थे, ये अपने आप में एक मिसाल है। अच्छे संगीतकार तो थे ही, लेकिन ये बात जो है वो भी उनको सबसे हटकर बनाती है। तो इन्होंने फिर वो काम जो है अपने बेटे पंचम को दिया, और उसके बाद में कुछ गीतों में आपने देखा होगा नाम तो एसडी बर्मन साहब का है, लेकिन धुनों पे काम किया था आरडी बर्मन, उनके बेटे पंचम दा ने। और इतने खूबसूरत गीत जो है वैसे भी इस फिल्म के हैं, जिसका नाम था प्रेम नगर। अब आगे बढ़ते हैं। एक गीत मुझे हाथ लगा है रफ़ी साहब और आशा जी का, ये मैं पिछली सप्ताह में प्ले करने वाला था, लेकिन फॉर सम रीज़न आई कुड नॉट इंक्लूड दिस। ये एक फरमाइश आई थी, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इस गीत की फरमाइश किसने दी थी, लेकिन इसमें मैं शामिल करने जा रहा हूँ इस पायदान पर। 8:47 हुए हैं सूरज की घड़ी में दोस्तों।

बहुत ही खूबसूरत ये गीत आपने सुना दोस्तों, और जो अगला गीत मैं सुनाने वाला हूँ उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी का बहुत ही लाजवाब, बहुत ही प्रेशस, बहुत ही ऐसा खूबसूरत लम्हा रहा है वो, इसके बारे में मैं ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ। हालांकि मैंने इससे पहले आपसे किया कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत साल पहले जब मन्ना डे साहब यहाँ पर आए थे तो उनसे मेरी मुलाकात रेडियो पर ही हुई थी, रेडियो तराना पर ही आपने हमने उनको बुलाया था। तो उन्होंने मुझे पहले से कहा था कि मैं ज़्यादा समय नहीं रुक पाऊँगा, सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं आऊँगा और यू नो फिर मैं चला जाऊँगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आइए बस। और उनसे फिर बातें करने का सिलसिला शुरू हुआ। तो 10 मिनट तो बहुत जल्दी गुजर गए, लेकिन वो फिर भी बैठे रहे क्योंकि मैं उन्हीं के गाए हुए कुछ ऐसे गाने सुना रहा था। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि अब मैं जाना चाहूँगा। तो मैंने उनको कहा कि मन्ना दा आप आए हैं, इतने गाने सुने, आप एक गाना और सुनिए जो मैं आप ही का गाया हुआ सुनाने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि इतने सारे गाने तो तुमने सुना दिए, और क्या सुनाओगे? मतलब एक गाना सुन के जाइए और ये गाना सुनने के बाद आप चाहेंगे कि और थोड़ी देर बैठ जाऊं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इतनी देर बैठे, इतने गाने सुने, और एक गीत सुन लेते हैं। और वो गीत सुनने के बाद फिर और वो लगभग और 20 मिनट तक मेरे साथ में स्टूडियो में बैठे रहे। मतलब लगभग एक घंटे से भी ज़्यादा उन्होंने समय दिया, और इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं आपको क्या बताऊँ। आज भी वो सारा जो वाक्या है मेरी नज़रों के सामने बहुत ही ताज़ा है। सो आइए सुनते हैं वही गीत जिस गीत को सुनाकर मैं बड़ा कामयाब रहा मन्ना डे साहब को और भी थोड़ी देर के लिए स्टूडियोज़ में रोकने के लिए।

0: Woolworths has savings in every aisle. Get Cadbury Chocolate Blocks 190 gram for $3.50 each. That's half price. And Kellogg's Crunchy Nut Corn Flakes 640 gram for $8 each. Woolworths Weekly Specials. Now that feels good. T's and C's apply.
1: बच्चों बताओ डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
2: मैम डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम।
1: जीनियस। अब बताओ रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
2: मैम ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान।
3: बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान। फोन 09255500। टीज एंड सीज अप्लाई।
4: मोआ पॉइंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से अनट्रीटेड वेस्ट वाटर कुक स्ट्रेट में डिस्चार्ज हो रहा है और वेलिंगटन साउथ कोस्ट तक जा सकता है। वाटर क्वालिटी जानकारियों के लिए हमेशा याद करके LAWA वेबसाइट देखें। तैरने जाने से पहले LAWA.org.nz देख लें। साउथ कोस्ट के तारकेना बे से दूर रहें। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर तट के करीब डिस्चार्ज हो सकता है शॉर्ट नोटिस पर और बगैर चेतावनी के, खासतौर पर गंभीर बारिश के समय। और जानकारी के लिए wellingtonwater.co.nz

0: Weekdays from 9 a.m. to midday.
1: Radio Tarana.
2: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
3: सूरज की घड़ी में शाम के 9 बजे हैं।
4: बहनों और भाइयों सुनिए,
5: आपके हंसी
4: गोपाल भाटिया का मजेदार सुरीला प्रोग्राम

सुनहरी यादों के सफर में दोस्तों, अच्छा लग रहा है कि आप अपनी फरमाइशें मुझे यू नो लगातार देते जा रहे हैं और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है इन गीतों को आज के सुनहरी यादों के इस प्रोग्राम में शामिल करते हुए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर एक बार हमारी यू नो कुछ देर के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे धुंधराउन का सेगमेंट। उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, बड़े आसान गीतों को हम चुनते हैं आपके लिए।

पराया धन फिल्म से आपने इस गीत को सुना था, देव साहब आपकी फरमाइश पर इस गीत को हमने शामिल किया था। अब अगले गीत के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं धुन राउंड, ये जो अगला गीत है इसे सुनिएगा और फिर तैयार हो जाएगा। मैं आपको एडवांस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगेन थोड़ी सी देर के बाद आपको वो सुनाई देता है एंड देन यू हैव टू रिएक्ट ऑन दैट। सो इस गीत को सुनते हैं एंड देन आपके लिए मैं लेकर आऊँगा धुन राउंड।

0: आप सुन रहे हैं गोपाल को ऑन रेडियो तराना।
1: जी हाँ दोस्तों, धुन राउंड के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ और आप भी बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। ये धुन जो है बड़ी जानी पहचानी है आपके लिए और कोई इसमें शक नहीं कि आप इसे तुरंत ही पहचान जाएंगे, और पहचान जाएं तो फिर तुरंत ही हमें फ़ोन भी कर दीजिएगा। गीत की धुन कुछ ऐसी है

0: अब इससे ज्यादा गाऊंगा तो आप तो वैसे ही पहचान जाएंगे, मैं ज्यादा भी इतना आसान नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी बहुत आसान कर दिया आपके लिए, है ना। सो अभी आप मुझे फोन करके बता सकते हैं ये कौन सा गीत है। 3031386 हमारे फोन का नंबर है, मैं आपको 20 सेकंड दूंगा और भी ज्यादा एडिशनल ताकि आप इसे पहचान सकें। और थोड़ा सा अगर क्लू भी देना चाहूँ, क्लू देने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय है मेरे पास 20 सेकंड्स का, तो मैं आपको बता दूंगा कि देखिए मैं तो समय देने वाला था लेकिन उससे पहले ही फ़ोन आ गया, शायद फिर से एक बार अशोक जी का। जी सर।
1: हाँ जी, हाँ गोपाल जी,
0: जी अशोक परमा, परमा जी, बताइए बताइए, नमस्कार।
1: कोई माने या ना माने,
0: कोई माने या ना माने ना।
1: हाँ जी।
0: क्या बात है,
1: आप तो मान गए।
0: बिल्कुल मान गए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ओके सर, एंजॉय एंजॉय, थैंक यू सो मच। दीदी साहब।
2: हाँ जी, ये फिल्म है अधिकार और ये गाने के बोल हैं

0: गए।
1: क्या बात है,
0: ठीक है
1: बहुत
0: सर,
1: अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे देव साहब, थैंक
0: अभी
1: यू।
0: तो ठीक है ना,
1: आगे
0: अभी
1: जी एकदम
0: वो
1: अभी एकदम
0: अब
1: बढ़िया।
0: जसवंत यादव बात नहीं
1: नहीं
0: है
1: नहीं थैंक यू सो मच,
0: ना।
1: एंजॉय,
0: थैंक
1: थैंक यू सो मच, एंजॉय। शॉन फोन कर रहे हैं, हेलो
2: हेलो जी।
1: जी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो
1: मैं भी ठीक हूँ, सुनाइए आप भी।
2: जी? गाना वही है जो पहले कॉलर ने बताया, कोई माने या ना माने,
1: अरे ऐसे नहीं,
2: जिसको
1: उन्होंने तो
2: सच्चे
1: गाकर बताया
2: अनजाने।
1: था।
2: कोई माने या ना माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए।
1: क्या बात है, अब बराबर सुर लगेगी नहीं? ग्रेट,
2: जी
1: एंजॉय
2: हाँ जी हाँ, बिल्कुल।
1: जी।
2: एक्चुअली मैं पहले से भी खोल कर रही थी, जो आपने वो गाना भी लगाया था वक्त का, आई थिंक, हम जिस दिन लपेट के, समथिंग लाइक
1: हम
2: लिपट
1: जब
2: के आपकी बाहों में।
1: सिमट के आपके
2: इट वॉज सो ब्यूटिफुल कलेक्शन यार,
1: यस
2: थैंक यू
1: यस
2: सो मच,
1: ओ एंजॉय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू, बाय
1: एंजॉय एंजॉय, बाय बाय। बड़ा सही पहचानते हैं हमारे सुनहरी यादों के जो श्रोता हैं, अच्छा लगा मुझे। सो आइए सुनते हैं हम अधिकार फिल्म का ये गाना, वंस अगेन पंचम दा के संगीत पर, ब्यूटीफुल सॉन्ग।

आपको बताएं कि एक जमाने में जब पुराने जमाने में ये गाने जब रिकॉर्ड हुआ करते थे तब तो मोनो सिस्टम था, जब स्टीरियो तो खैर कई साल पहले से अभी स्टीरियो भी है, लेकिन जब जो कुछ गीत जो है वो मोनो रिकॉर्डिंग में ही अच्छे लगते हैं, उसी साउंड में अच्छे लगते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और उसमें थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा भी उसमें बदलाव कर देते हैं किसी भी ओरिजिनल गीत को, थोड़ा सा भी छेड़खानी कर देते हैं, तो मतलब ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि पुराने गीतों के साथ में चाहे फिर विनोद कोई भी कितनी भी छेड़खानी करे तो बड़ा वो गीत जो है ना फिर हम सुन तो लेते हैं लेकिन बड़ा ख़राब सा लगता है। और इसीलिए जिन गीतों को ओरिजिनली हम सुना करते हैं उनको रिक्रिएट भी जब करना हो तो ये ख्याल रखना चाहिए कि गाना जो है ओरिजिनल तो नहीं हो सकता लेकिन फिर भी ओरिजिनल के नज़दीक जाने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें अगर हम अपने कन्वीनियंस के साथ में अगर उसको बदलना चाहें क्योंकि हम ये नहीं कर सकते इसीलिए वो कर देते हैं, ये नहीं तो फिर वो चला लेते हैं, फिर उससे फिर काम खराब हो जाता है ना। आइए अब एक बड़ा ही खूबसूरत गीत सुनाने जा रहा हूँ। सायरा उधर सिडनी में आप प्रोग्राम सुन रही हैं, थैंक यू सो मच।

बहुत ही खूबसूरत ये गीत आपने सुना बहुत दिनों के बाद, वैसे इसे शामिल किया था। और अब चलते हैं अगली पायदान पर। सोनिया जी, जिस गीत की फरमाइश आपने की है, यू नो सो थैंक यू सो मच। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग न्यूजीलैंड के बाहर रहते हैं उनके पास एक जरिया

समझने के लिए फिर थोड़ा सा आपको यू नो यू हैव टू टेक सम एफर्ट्स। सोनिया जी, आपकी फरमाइश पूरी करने जा रहा हूँ। बड़ा ही खूबसूरत गीत आपने सुनना चाहा है। एंड सायरा, आपका मैसेज मुझे मिला। वंस अगेन थैंक यू सो मच।

ही रांझा फिल्म का ये गीत आपने सुना दोस्तों। आपको बताया ही रांझा फिल्म में एक साइड रोल के लिए, एक्चुअली ये एक साइड रोल के लिए जीनत अमान को साइन किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको जब ऑडिशन के लिए बुलाया गया था तो क्योंकि उनकी उर्दू जो है वो ठीक नहीं थी, अब ठीक है कि नहीं पता नहीं, लेकिन तब तो ठीक नहीं थी, इसलिए उनको इस रोल से रिजेक्ट कर दिया गया था, ये बताया गया। और आपको बताया कि चेतन आनंद और राजकुमार की ये वो पहली फिल्म रही जिसमें उन्होंने साथ में काम किया। और साथ ही साथ इसमें मतलब ये तो एक बात हुई कि जीनत अमान को इस रोल से निकाला गया, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखें तो मुझे राजकुमार का अभिनय इतना पसंद नहीं आया ही रांझा के रोल के लिए। देयर कुड हैव बीन बेटर ऑप्शन। आपको ये भी पता होगा या नहीं होगा कि राजकुमार की जो पत्नी थी वो यहाँ पर हॉलीडेज के लिए आई थी, तब जाके उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद में वो शादी में तब्दील हुई, तो ये उनकी मुलाकात जो है वो भी इस शूटिंग के दौरान हुई थी ऐसा बताया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, 9:28 हुए हैं सूरज की घड़ी में, अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं और फिर एक बार 3 गीतों की कड़ी लेकर मैं आपकी सेवा में बिल्कुल तैयार हूँगा।

0: It's 10 a.m. and you forgot about dinner at yours tonight. Your fridge is empty. Your place is a mess after watching last night's game. And you're still painted the same blue as your team. No time to do the shop? Get what you need with New World Online Same Day Click and Collect. T's and C's and exclusions apply. See newworld.co.nz for details.
1: Bunnings can help you get your indoor project sorted with an easy storage 60 litre round flexi storage tub, just $11.68. And all set pack of 20 microfiber cleaning cloths, only $10. Shop online or in store at lowest prices are just the beginning.
2: Hey Hamiltonians, guess what? Ab aapke yahan Hamilton mein aa gaya hai Global Finance. For any kind of home loan, business loan, commercial loan, refixing ya refinancing ke liye, contact kare Global Finance ko, jo mortgage ke saath saath insurance mein bhi specialize karte hain. Life, trauma, health insurance, har cheez ke liye Global Finance. Now in Hamilton at Unit 26, 20 Clyde Street, Hamilton East. Phone 07577-0888. Global Finance, now in Hamilton.
3: क्या काम की भागदौड़ से कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है? वरी मत कीजिए. स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस के आपकी मदद के लिए तैयार हैं. यहाँ आपको मिलता है 24 आवर सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट. या फिर आप अपने कपड़े छोड़ दीजिए और इनकी टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको बिल्कुल तैयार देगी. यहाँ सूट्स, बिजनेस शर्ट्स, ड्रेसेस और फॉर्मल वेयर के प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं. और डुबे ब्लैंकेट्स, स्पोर्ट्स गेयर की सफाई भी यहाँ पर होती है. स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 स्टोडार्ड रोड माउंट रॉस्को. आसान, भरोसेमंद और 24/7.
4: आप सुन रहे हैं गोपाल को ऑन रेडियो तराना.
5: चलिए दोस्तों, मैं बिल्कुल तैयार हूँ तीन गीतों के साथ साथ, और फिर आपको भी तैयार होना होगा जैसे जैसे आप इन गीतों को सुनते हैं. तो चुनने की कोशिश कीजिएगा. अब जानता हूँ कि शायद ज़्यादातर लोग एक ही गीत को चुनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, वो जो गीत इसमें मैंने तीन गीतों की इस कड़ी में जो शामिल किया है, वो गीत तो आप बहुत बार सुन चुके हैं. मैंने जानबूझ के उस गीत को डाला है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि कितना पसंद करते हैं आप उस गीत को, जबकि दूसरे गीत जो है वो भी उतने ही खूबसूरत हैं. चलिए देखते हैं आपकी पसंद क्या है. पहला गीत मैंने जो चुना है वो ये है.

0: जी हाँ दोस्तों, वैसे ये नहीं सुनाने वाला हूँ जब तक कि मुझे आपके फ़ोन कॉल्स नहीं आते। पहला गीत तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, दूसरा गीत लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, और तीसरा जो अभी अभी आपने सुना तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इन तीनों गीतों में से एक गीत आपका कौन सा पसंदीदा, ये मैं जानना चाहता हूँ आप ही से। सो आई विल गिव यू अनदर 20 seconds टू गिव मी कॉल। यस ओके, हेलो नमस्ते।
1: नमस्ते
0: जी, बताइए।
1: मुझे नंबर 3 सुनना है।
0: नंबर 3 जो अभी भी आपने सुना ना,
1: तेरी आंखों के,
0: तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, एंजॉय, थैंक यू, बाय बाय। आप भी हमारे साथ में शामिल हो सकते हैं। देखिए पहली चॉइस जो है, पहले कॉलर हमारे हैं पिंकी जी, आपकी चॉइस जो है वो तेरी आंखों के सिवा। अशोक एडी साहब जो है वो भी जग गए हैं, राजकुमारी जी वो भी शामिल होना चाहती हैं। जी अशोक एडी साहब कैसे हैं आप?
2: गोपाल जी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार,
2: आप इतने देर सालों के बाद आते हैं ना, वीकेंड आता है ना आपको।
0: अच्छा वीकेंड
2: पे फ्राइडे आना चाहिए आपको।
0: अच्छा
2: मैं कई बार बोलती हूँ मंडे को फ्राइडे आना तो बाहर ही बाहर है।
0: देखिए आपको क्या है कि जब जैसे जैसे शाम गुजरती है तो आपको हर दिन बाहर जैसा लगता है।
2: हाँ जी बिल्कुल,
0: है ना अशोक जी साहब?
2: हाँ जी बिल्कुल, आप जब आते हैं ना धमाका आ जाता है। किया भी 2 मिनट पहले
0: जी,
2: तो मेरा गाने तीनों बहुत टॉप के हैं, सॉन्ग है
0: जी।
2: तो फर्स्ट सॉन्ग सुनना चाहता हूँ।
0: फर्स्ट सॉन्ग
2: तेरा जाना
0: दिल के अरमानों का लुट जाना। अच्छा क्या,
2: वेरी नाइस। उसके बाद मैं और सुनना चाहूंगा।
0: ठीक है जरूर। ओके ठीक है जी, थैंक यू सो मच।
2: मैं एंटर करूंगा आपके साथ।
0: ठीक है जरूर, क्यों नहीं, जरूर।
2: अच्छा लगता आपके साथ ऐसे बातें कर देना,
0: है ना,
2: बहुत अच्छा लगता।
0: थैंक यू सो मच शुक्रिया साहब,
2: थैंक यू,
0: एंजॉय कर, थैंक यू सो मच। राजकुमारी जी कैसे हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ गोपाल जी।
0: अच्छा कैसे सुन रही हैं आप रेडियो, मोबाइल पे सुन रही हैं ना?
3: नहीं हाँ मोबाइल पे सुन रही, तो बैटरी डाउन हो रही थी तो उसको लगाने की मुसीबत हो गई थी।
0: तो उसको ये बताइए कि उसको आप हेडफोन में सुनती हैं या ऐसी?
3: हाँ जी
0: हेडफोन लगा के सुनती हैं, जो एयरफोन होता है ना वो लगा के सुनती हैं आप जब फोन पे सुनती हैं तो?
3: नहीं वो तो कोई नहीं, घर में हम 2 ही लोग हैं, दोनों को शौक है आपका प्रोग्राम देखने सुनने का।
0: अच्छा तो ऐसे ही ऑन स्पीकर पे ऑन करती हैं आप?
3: हाँ स्पीकर ऑन है तो गाने सुनूंगी ना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ओके, चलो बढ़िया, बहुत अच्छी। सुनाइए राजकुमारी जी आपको कौन सा गीत पसंद आया तीनों में से?
3: मुझे तो लता जी का वही गाना बहुत पसंद है, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो।
0: अब ये बताइए कि ये गाना किसको पसंद नहीं है?
3: वही तो गाना तो आंखियों के झरोखे से वही बहुत अच्छा, बट
0: आंखियों के झरोखे से मैंने सुना है नहीं।
3: अरे वो तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये था ना। तो मुझे तो वो लता जी का ही बहुत पसंद है, ये वाला
0: लग जा गले ना। ओके ठीक है जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जा करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे अभी 2 गीतों में से 1 गीत चुनना है और उसके लिए मुझे एक ही कॉलर की जरूरत है। अब तेरी आंखों के सिवा या फिर लग जा गले, इन दोनों में से 1 गीत चुनने के लिए 1 कॉलर का मुझे इंतजार है। वो जो बताएंगे उसी गीत को हम सुनेंगे, ठीक है, ऐसा करते हैं, क्योंकि मैं अपनी मनमानी नहीं करना चाहता। क्या करूं, मेरा मन ही ऐसा है। 3031386 हमारे फोन का नंबर है, मुझे 1 कॉलर का इंतजार है। नॉर्मा जी बताएंगी आज की कौन सा गीत सुना जाए। जी नॉर्मा जी कैसे हैं आप?
4: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ, बताइए बताइए आपको तीनों में से, सॉरी दोनों में से कौन सा गीत?
4: नंबर 3
0: ना। ओके थैंक यू सो मच नॉर्मा जी, वही गीत सुना देते हैं। थैंक यू सो मच, एंजॉय, थैंक यू। चलिए दोस्तों सुनते हैं हम

0: सुनहरी यादें गोपाल के साथ रविवार को।
1: कभी कभी एक गाना ही काफी होता है किसी को फिर से महसूस करने के लिए। अजीब है ना, हर गाना कोई ना कोई याद जगा देता है।
2: और जी हाँ, ऐसा ही और एक गाना मुझे याद आया है, लता जी के कुछ ऐसे गीत हैं, उनको सुनने के बाद मतलब जाहिर सी बात है मुझे ढेर सारे गाने फिर याद आ जाया करते हैं और मैं फिर अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, क्योंकि अगर उन गीतों को अगर मैं शामिल ना करूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, प्रोग्राम तो समाप्ति की ओर बढ़ जाता है और वो गीत जो है वो रह जाते हैं। एक और लता जी का ही गाया हुआ गीत मैं सुनाने जा रहा हूँ और ये भी बड़ा लाजवाब गीत इस पायदान पर आपके लिए।

0: रेडियो तराना, आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन।
1: रेडियो तराना आप सुन रहे हैं और उधर अशोक रेड्डी साहब, आपने भी बड़े खूबसूरत गीत की फरमाइश दी है, इसे मैं शामिल करने जा रहा हूँ। हालांकि 10 बजने में अब लगभग 6 मिनट बाकी हैं और इसके भीतर भीतर इस गीत को हम सुनने वाले हैं। बड़ा ही रोमांटिक ये गीत हमने चुना है, रवि साहब का गाया हुआ, आप ही की फरमाइश पर।

0: Karana. Time check.
1: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
2: सूरज की घड़ी में ये रात के ठीक 10 बजे हैं।
3: आप सुन रहे हैं गोपाल को ऑन रेडियो तराना।
2: और चलिए दोस्तों, जैसे ही 10 बजे आते हैं तो फिर कुछ सेंटिमेंटल गीतों को हम शामिल किया करते हैं इस प्रोग्राम के फॉर्मेट के अनुसार। और उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, बड़े मतलब लाजवाब गीत इस सेगमेंट के भी होते हैं, तो इसे भी ज़रूर सुनिएगा। पहला गीत जो मैंने आपके लिए चुना है, बहुत ही कम सुना है इस गीत को, हालांकि सुना है हमने हमारे इस प्रोग्राम में, इसे हमने इससे पहले भी प्ले किया हुआ है। ब्यूटीफुल सॉन्ग, आइए सुनते हैं। इसकी शुरुआत जो है इस सेगमेंट की इसी गीत से करते हैं।

किशोरदा का बहुत ही खूबसूरत अंदाज आपने सुना दोस्तों, और बहुत दिनों पहले इस गीत को मैंने शामिल किया था और वक्त हो चला था कि इस गीत को भी हमारे सेंटिमेंटल सेगमेंट में शामिल किया जाए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, लता जी का गाया हुआ शीर्षक गीत आपको सुनाने जा रहा हूँ कटी पतंग फिल्म से।

0: बहुत ही खूबसूरत ये भी गीत रहा, कटी पतंग फिल्म से आपने लता जी को सुना आर डी बर्मन साहब के संगीत पर। और अगला गीत मेरे सनम फिल्म से मैंने आपके लिए चुना है, 1965 की बनी हुई ये फिल्म और बहुत ही खूबसूरत ओपी नैयर साहब का संगीत, ब्यूटीफुल सॉन्ग।
1: गाने के सारे

0: सुनहरी यादें गोपाल के साथ रविवार को।
1: कभी कभी एक गाना ही काफी होता है किसी को फिर से महसूस करने के लिए। अजीब है ना, हर गाना कोई ना कोई याद जगा देता है।

मुकेश साहब का गाया हुआ ये अपने जमाने का बहुत ही पुराना गीत, जिसे हमारे तमाम सीनियर सिटीजन जो है वो तरसते रहते हैं कि उनके ज़माने के भी कुछ गीत जो है वो शामिल किए जाएं। एंड आई ऑलवेज यू नो ट्राई टू फाइंड आउट फ्यू सॉन्ग्स फॉर देम, और उम्मीद करता हूँ कि वो श्रोता जो सीनियर सिटीजन हैं उनको तो बिल्कुल बखूबी ये गीत जो है वो याद होंगे। वैसे अगली पायदान पर जो गीत मैंने लता जी का गाया हुआ चुना है वो भी अपने ज़माने का पुराना ही गीत है, और उसके बाद में और एक मैंने गीत चुना हुआ है मुकेश साहब का ही गाया हुआ, आंसू भरी है ये जीवन की राहें कोई उनसे कह दे हमें भूल जाएं, लेकिन ये गीत जो है वो दूसरी पायदान पर है। फिलहाल जो है मैंने आपके लिए जो चुना है वो चुना है उठाए जा उनके सितम और जिए जा।

बहुत ही खूबसूरत ये गीत आपने सुना है ना। और उसके बाद मैंने आपसे वादा किया था हम सुनेंगे आंसू भरी है ये जीवन की राहें, और उसके बाद और एक गीत जो हाथ लगा है वो है जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। कुछ ऐसे कुछ गीतों की यू नो लड़ी जो है वो मैंने आपके लिए क्यों की हुई है, उनका भी मज़ा लेते रहिएगा। और देखते देखते मेरे भी जाने का समय करीब आ रहा है, लेकिन आई होप कि आपने आज का भी ये प्रोग्राम इन्जॉय किया होगा, और आने वाला भी सप्ताह यूं ही आपके लिए बड़ा अच्छा रहे।

0: सुनहरी यादें गोपाल के साथ रविवार को।
1: कभी कभी एक गाना ही काफी होता है किसी को फिर से महसूस करने के लिए। अजीब है ना, हर गाना कोई ना कोई याद जगा देता है।

सेंटिमेंटल जो सेगमेंट होता है उसमें अगर मुकेश साहब के गीतों को अगर शामिल ना किया जाए तो बड़ा अधूरा लगता है। वैसे मैंने अगला जो गीत है लता जी का गाया हुआ लग जा गले, क्योंकि जब हमने इसे तीन गीतों की कड़ी में शामिल किया था तब भी हमारे लिसनर्स की ये ख्वाहिश थी कि ये गीत जो है वो शामिल किया जाए, इसलिए मैं शामिल करने जा रहा हूँ। एंड देन वी हैव वन मोर सेंटिमेंटल सॉन्ग ऑफ मुकेश साहब, भूली हुई यादों इतना न सताओ। एंड देन वी हैव फ्यू लिंक्ड, जैसे आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑल फॉर यू।

0: सुनहरी यादें गोपाल के साथ रविवार को।
1: कभी कभी एक गाना ही काफी होता है किसी को फिर से महसूस करने के लिए। अजीब है ना, हर गाना कोई ना कोई याद जगा देता है।

0: की हसल से ब्रेक लीजिए, पजल को छोड़ म्यूजिक की दुनिया में चलिए और थोड़ा चिल कीजिए विद मी नेहा इन द शो चिल विद नेहा, मंडे टू सैटरडे 1 PM टू 4 PM ओनली ऑन रेडियो तराना।
1: लाइफ तो बस हसल है।

0: शहर में
1: एक दीवाना नहीं, एक

कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार ना होते तो क्या होता। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार।

वो भीगे बाल, वो भीगा बदन, वो भीगी भीगी हर धड़कन, वो गाल हया में डूबे हुए, वो होंठ वफा से लरसे हुए, वो आंखें सोई सोई सी, वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो क्यों खामोश हो तुम, इस दिल से क्या नाराज हो तुम।

क्या अब भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है? क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है? क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है? क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है?

मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शानी से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

0: इमोशनल शो
1: रेडियो तरंग आप सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है संजेश नारायण। आज का मंगल प्रभात आपको बहुत बहुत बार शुभ हो। आज है मंडे, इस हफ्ते का पहला दिन, 4 मई की सुबह आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद है वीकेंड आपका अच्छा गया होगा। चले प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अच्छा विचार, फिर भजनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कहते हैं जो खो गया उसके लिए शोक ना करो, जो खो गया उसके लिए शोक ना करो, जो बचा है उसका मूल्य समझो। प्रोग्राम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग।

0: एक शिव कथा को पेश करने की मुझसे मांग की गई थी, तो चले मैं शिव कथा। अनिरुद्ध आचार्य जी आजकल काफ़ी फेमस हैं, उनके काफ़ी मजाकिया अंदाज में जिस तरह से वो बातें करते हैं काफ़ी फेमस होता है, मतलब लोग इसको देखते हैं टिकटॉक पर भी। तो शिव कथा चले सुनते हैं।
1: एक बार शंकर जी सती को लेके कथा सुनवाने गए, जैसे आप लोग आए हैं ना कथा सुनवाने, ऐसे शंकर जी बोले चलो सती तुम्हें आज कथा सुनवाने चलते हैं। कथा सुनवाने ले गए, कौन गुरु जी कौन थे? अगस्त्य जी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर जी पहुंचे, खूब पूजा पाठ हुई, अगस्त्य जी ने पूजा की, खूब राम कथा सुनाई, राम जी हैं श्री राम जी हैं श्री राम जी हैं श्री राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी, खूब कथा सुनाई। शंकर जी तो बहुत ध्यान से सुन रहे थे, पर माता सती का मन यहां वहां जा रहा था। अरे कौन से राम जी, क्या राम जी, समझ में नहीं आ रहा, क्या राम जी, कौन से राम जी, क्या। सती समझी नहीं। तब शंकर जी, सती को कथा पूरी हो गई, 9 दिन की हुई। अब शंकर जी प्रणाम करते हैं, सती से बोले चलो। अब शंकर जी सती को लेकर जा रहे थे आकाश मार्ग से, और वो त्रेता युग था, उसी समय रावण सीता का हरण किया, और शंकर जी का संयोग से वहीं से निकलना हुआ। अब राम जी खोज रहे हैं, हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो, राम जी रो रहे हैं। शंकर जी ऊपर से देखते हैं, वाह प्रभु कितनी बढ़िया लीला कर रहे हो, आप सब जान रहे हो कि सीता कहाँ है, और तुम्हारी पत्नी चुरा कौन सकता है, भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है, लेकिन राम जी कितना बढ़िया अभिनय कर रहे हैं, हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय जय जय सच्चिदानंद जगदीशा, हे ईश्वर हे जगदीश सब जानने वाले, आपको मेरा शंकर का कोटि कोटि नमन। शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया, ये रामचरितमानस के अनुसार हम कथा सुना रहे हैं आपको। हाँ, शंकर जी ने प्रणाम किया, किसको? भगवान श्री राम को, सती को लगा। अरे आप किसे प्रणाम कर रहे हैं, किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी बोले आप भी प्रणाम करो, ये वही भगवान है जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है। सती बोली यदि ये भगवान होते तो इन्हें अपनी पत्नी का पता होता, इन्हें अपनी पत्नी का पता नहीं है, मतलब ये भगवान। सती को संदेह हुआ, शंकर जी बोले भाग्यवान इन्हें तो कण कण का पता है, तो फिर ये रो क्यों रहे हैं, लीला कर रहे हैं लीला। सती बोली ना हम नहीं मानते। शंकर जी ने लाख समझाया पर माता सती नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि माता सती के विनाश का समय नजदीक था। जब पत्नी अपने पति के कहने से ना माने, जब बेटा अपने बाप के समझाने से ना माने, समझ लेना कि अब विनाश का समय नजदीक है। सती नहीं मान रही है ना, शंकर जी समझा रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं मान जाओ ये भगवान है, नहीं मैं परीक्षा लूंगी। तो सती सीता बन के चली गई परीक्षा लेने। शंकर जी ने विचार किया, अब सती का कल्याण होने वाला नहीं। हरि इच्छा भावी बलवाना, बड़ी बलवान है ये भावी, होनी तो होके रहे अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी मार सके ना कोई। अब सती गई, सती सीता बन के गई, राम जी के सामने खड़ी हो गई, राम जी के सामने सीता बन के खड़ी हो गई, मैं आ गई रावण के पास से। सती को देखकर राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। सती बोली आप हमें माता जी क्यों कह रहे हैं, हम तो आपकी पत्नी है। राम जी बोले माँ असत्य क्यों कहती हैं, आप तो शिव की पत्नी है, आप तो हमारी माँ है, हम तो आपके पुत्र हैं। अब शंकर जी राम जी की बातें सुन के माता सती के तो पसीना छूटने लगा, प्रभु आपने हमें पहचाना कैसे, हम तो सीता बन के खड़ी हैं। राम जी ने कहा माँ स्वरूप बना लेना सरल है, स्वभाव बना पाना कठिन है। मेरी सीता का स्वरूप तो आपने बना लिया, पर मेरी सीता का स्वभाव कहां से लाओगी, मेरी सीता तो सदा अपने पति अर्थात राम के पीछे खड़ी होती है, आप तो आगे खड़ी हो, आगे तो माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता कभी नहीं खड़ी हो सकती, आप आगे खड़ी हो गई है, सीता हमेशा पीछे खड़ी होती थी राम के, और ये आप आगे खड़ी है, इसलिए आप मेरी सीता नहीं। अब सची सती वहां से जाने भागने लगी। जब सती माता गई तो राम जी ने अपना रूप दिखाया, जहां देखे वहां सीताराम सीताराम सीता, सब जगह सीताराम कण कण में दिखाई। अब सती ने आंख बंद कर लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके मन मुताबिक बात ना हो तो लोग सत्य से भी आंख मूंद लेते हैं, और सत्य से आंख मूंद लेने से काम नहीं होगा, सत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। तुम्हारे आंख बंद करने से क्या होगा? तुम आंख बंद कर लोगे तो क्या सत्य नजर नहीं आएगा? तुम्हें नजर नहीं आएगा, औरों को नजर तो आ रहा है। सत्य से आंख बंद ना किया करो, सत्य से आंखें ना चुराया करो, सत्य से आंखें मिलाया करो। माता सती को लग रहा था कि ये सामान्य मनुष्य है। शंकर जी ने समझाया था, ठीक ही कहा था भगवान शंकर ने, पर माता सती नहीं मानी और बाद में गई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा तो झूठ कह दिया, कछु ना परीक्षा लीन है गुसाई, तुम्हारी तरह प्रणाम करके चली आई। शंकर जी ने त्याग दिया, आपने मेरी माँ का रूप बनाया है। शंकर जी सीता को अपनी माँ मानते हैं और राम को अपना पिता मानते हैं। अब मेरी पत्नी ने माँ का रूप बना लिया है, अब इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करें? शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। और वही सती दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हुई, और वही जब पार्वती के रूप में आई तब शंकर जी उन्होंने स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य इन कथाओं का यही है कि जो समझ रहे हैं भगवान की कथाओं को, समझ लेना कि भगवान उन्हें समझाना चाह रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं समझ लेना कि ईश्वर की कृपा भी इन पर नहीं है। ये ईश्वर की कृपा के अधिकारी अभी तक नहीं बने, बन गए होते तो भगवान पर संशय ना करते। संशयात्मा विनश्यति, माता सती ने भगवान पर संशय किया, विनाश हो गया। इसलिए ईश्वर संदेह का नहीं, ईश्वर श्रद्धा का विषय है। ईश्वर पर संदेह ना हो, ईश्वर की सत्ता पर संदेह उंगलियां ना उठाना कभी कि भगवान है या नहीं। हम आपको कई बार कह चुके हैं कि भगवान पर विश्वास करने के पहले भगवान को पहले प्रैक्टिकली आप देख लो, आप ठोक बजा के देख लो भगवान को, आपके विश्वास पर भगवान खरे उतरते हैं कि नहीं, इसके बाद विश्वास करना। वो ऐसा विश्वास करना, एक तो भगवान पे विश्वास करो मत, और करो तो ऐसा करो कि फिर कभी किसी के तोड़े टूटे ना। ये नहीं कि आज कहने से कर लिया कल तोड़ दिया कर लिया, ऐसा नहीं। भगवान पे एक बार विश्वास करो फिर टूटे ना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, कितनी भी मुसीबत आ जाए। अब हम बहुत भजन करते हैं भगवान का, पर कल से हमारे खाने की रोटी ना रह जाए तो हम कहेंगे अरे भगवान तुम्हारी इतनी पूजा की, तुमने तो खाने को रोटी नहीं दी। अरे तो हम पूजा इसलिए नहीं करते कि हमें खाने को रोटियां मिलती रहें। अरे भूखे सोएंगे तो भूखे सो जाएंगे, पर भूखे में भी अपने भगवान का चिंतन करेंगे। ये तो हमारा प्रेम है, हम रोटी के लिए थोड़ी भगवान की पूजा कर रहे हैं कि रोटी मिलेगी। सुदामा को तो रोटियां नहीं मिलती थी, चार चार दिन सुदामा जी का चूल्हा नहीं जलता था। क्या इस हाल में सुदामा जी कृष्ण की पूजा नहीं करते थे? मीराबाई तो रानी थी, मीराबाई तो सोना चांदी से भरी थी, लेकिन सब छोड़ के पांव में घुंघरू बांध के संतों के बीच में नाचती थी। कभी खाना मिलता था कभी नहीं मिलता था, कभी भूखी सोनी पड़ता सोना पड़ता था, लेकिन इस हाल में भी मीराबाई ने तो भगवान को नहीं छोड़ा ना। मेरी मां, एक बात समझा दूं आपको, तुम्हारा सुख दुख हानि लाभ ये विषय अलग है और भक्ति अलग विषय है। आप लोगों को यही समझ में नहीं आता कि भक्ति विषय क्या है। आप लोगों को लगता है महाराज हम तो भगवान की पूजा करते हैं, अब हमारे घर में कोई मरे ना, किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अचानक किसी का पति मर गया, अरे हमने तो इतनी पूजा की और हमारा तो पति मर गया, अरे हमने तो इतना पूजा की हमारा तो बेटा मर गया, अरे हमने तो इतनी पूजा की हमारी तो पत्नी मर गई। क्यों पूजा करते थे तो क्या तुम्हारी पत्नी अमर हो जाएगी, बेटा अमर हो जाएगा? मरेगा नहीं, मौत तो आएगी। जितना तय था उतना तुमने भोग लिया। तुम्हारी जो भक्ति है उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, वह फल अलग मिलेगा आपको, है ना, वह अलग मिलेगा। एक आदमी बड़ा भजन करता था भगवान का, बहुत भक्त था, लेकिन उस भक्त के यहां ऐसी स्थिति आई कि उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, रोटियां नहीं थी, कोई रोटी की व्यवस्था नहीं थी, और वो रोज माला जपता था सीताराम सीताराम सीताराम। कि उसकी पत्नी कहती जी ताना मारती जी, बड़ा भजन करते हो, खाने को रोटी तक तो देता नहीं है तुम्हारा भगवान। तो वो कहते हैं कि देख मैं रोटी की चाहत लेके थोड़ी भजन कर रहा हूं, रोटी ना मिले मैं भूखा रह जाऊंगा, पर फिर भी इस हाल में मैं भजन करना नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ जब तुम्हें जीवन में मुसीबत आने लग जाए, जीवन में संकट आने लग जाए, विपत्तियां आने लग जाए, तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा है और इस परीक्षा में तुम्हें पास होना है। तुम बिल्कुल अपने मन को डगमगाना मत, कसौटी में अपने आप को कस के रखना, पार हो जाओगे। ईश्वर की परीक्षाएं, राजा हरिश्चंद्र पर मुसीबत आई कि नहीं? सोने को चमकाना होगा ना तो भट्टी में डालना ही पड़ता है। ईश्वर भी अपने भक्त को भट्टी पे डालते हैं, दुखों की आग में तपाते हैं। देखता हूं तुम कितने कच्चे और कितने पक्के हो। अरे 100 रुपए का घड़ा खरीदते हो ना मेरी माँ, उस घड़े को भी तुम तक पहुंचाने के पहले आग से गुजरना पड़ता है। कुम्हार भाई पहले घड़ा बनाता है, सुखाता है, फिर आग की भट्टी में डालता है, तपाता है, हाँ या ना? बिना तपाए घड़ा तुम तक आएगा तो वो घड़ा तुम्हारे काम का होगा ही नहीं। मिट्टी का घड़ा किस काम का जब तक पके ना। इसलिए आग से गुजरना ही पड़ता है। माता सीता को भी आग से गुजरना पड़ा, राम को भी 14 साल के वनवास से गुजरना पड़ा, पांडवों को भी 12 साल और 1 वर्ष के अज्ञातवास से गुजरना पड़ा। कौन है वो जिन्हें कष्टों से ना गुजरना पड़ा हो? यही कसौटी है। ईश्वर अपनी कसौटी में कस के देखते हैं तुम कितने कच्चे हो कितने पक्के हो। मुसीबत आएगी, घबराना मत, ईश्वर आपके साथ। हरिश्चंद्र पर मुसीबत आई लेकिन उन्होंने अपना धर्म, उन्होंने अपना सत्य, उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। अंत में उनका कल्याण भगवान मिले कि नहीं? ये जीवन में जो विपत्तियां हैं, कष्ट है, यह हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए। तुम कितने धैर्यवान हो, संकट में किस प्रकार इन मुसीबतों को डील करते हो, ईश्वर ये देख रहे हैं कि तुम कितने कच्चे कितने पक्के हो। इसलिए मुसीबत आवे शिकायत ना करना, बल्कि भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करना। हे नाथ, इस मुसीबत से मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, आप ही मेरे आराध्य हैं, आप ही मेरे ईश्वर हैं, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। नाथ मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं, करता हूं। जब प्रार्थना करोगे ना तो भगवान मुसीबतें आने ही नहीं देंगे। इसलिए मेरी माँ क्या जरूरी है, क्या जरूरी है,

आगे बढ़ते हुए शिव चालीसा और आरती, ये भी मैं मंडेस को आपके लिए पेश करता हूँ। शिव चालीसा, उसके बाद में आरती, फिर शिव तांडव, ये सब कुछ आपके लिए आने वाला है। आप सुनते रहें रेडियो तराना, मैं हूँ संजय।

शिवतांडव। रावण ने शिवतांडव स्तोत्र से भगवान शंकर को इतना प्रसन्न कर लिया कि आशुतोष भगवान शिव ने उसे केवल सकल समृद्धि सिद्धि से युक्त सोने की लंका ही वरदान के रूप में नहीं दी, अपितु संपूर्ण ज्ञान विज्ञान एवं अमर होने का वरदान भी दिया। रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र के सुनने मात्र से व्यक्ति समस्त बाधाओं से छूटकर समृद्धि संपत्ति और संतति प्राप्त करता है।

अनुराधा भोरवाल अपने साथियों के साथ में अब की बार जूनियर प्रदीप नारायण आ रहे हैं और फिर अभिलाषा को आप सुनेंगे एक और शिव मतलब भजन के साथ में, वो आ जाएंगी प्रोग्राम के अंत में, फिर उसके बाद में जिलेश आपका साथ देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे 7 AM न्यूज़ में।

0: Radio Tarana.
1: Time check. Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
2: Hello, welcome back. Monday ka din hai, I know how it is. Lekin koi baat nahi, aap bilkul hamare saath show sunte rahiye. You will start feeling good. धीरे धीरे होगा, you'll be better, I guarantee you. तराना क्लॉक में सुबह के 6 बज चुके हैं. गुड मॉर्निंग.
3: वेदर रिपोर्ट ब्रॉट टू यू बाय क्रूकेयर. विजिट क्रूकेयर.co.nz.
2: ऑलराइट, इज इट जस्ट मी या आप लोगों को भी ठंड लग रही है? आज बड़ी ठंड लगी यार मेरे को. आज का मैक्सिमम टेम्परेचर मैं आपको बता देता हूँ, इट इज 19. मिनिमम टेम्परेचर टेक्निकली 11 डिग्रीज है. इवन इन द वीकेंड मैन आई वाज सो कोल्ड. कल का मैक्सिमम टेम्परेचर ट्यूजडे का दिन है कल 19 है और मिनिमम टेम्परेचर 13 है. अच्छा, आज सनसेट होगा 5:34 पे और करंट टेम्परेचर बाहर का 9.4 डिग्रीज है.
4: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट.
1: पैसिफिक में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजे डीजीसेल का $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप, या करे कैश ट्रांसफर $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ और जीते एक्साइटिंग
2: प्राइजेस.
1: Well,
2: मंडे ट्रैफिक इज व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ. ऑकलैंड में नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्सोलेशन ड्राइव से सिटी पहुंचने में लग रहे हैं आपको 19 मिनट. सिल्वरडेल से सिटी पहुंचने में लग रहे हैं आपको 36 मिनट. मेसी से सिटी लग रहे हैं आपको 22 मिनट. मैनिकाव से सिटी 23 मिनट. ड्रूरी से सिटी 42 मिनट्स. और अगर आपको एयरपोर्ट जाना है ऑकलैंड सिटी से लग रहे हैं आपको 24 मिनट. वेलिंगटन स्टेट हाईवे 1 पोरिरुआ से सिटी सेंटर लगेंगे 21 मिनट. लेवन से सिटी सेंटर 1 hour 10 मिनट्स. लोअर हट से सिटी लग रहे हैं आपको 16 मिनट और अपर हट से सिटी लग रहे हैं आपको 31 मिनट. अगर आप वेलिंगटन जाना चाहते हैं, दिस इज फ्रॉम द एयरपोर्ट, इट इज टेकिंग यू 14 मिनट्स.
1: बी इन द ड्रॉ टू विन वन ऑफ $15,500 कैश प्राइजेस दिस मदर्स डे विद डिजी सेल. तो भेजे $20 का टॉप अप या $300 कैश टू योर फैमिली.

0: रमेश और संजेश आपका दिल बहलाने।
1: सुनिए मॉर्निंग बज सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 9 जिलेश और संजेश के साथ।
2: मॉर्निंग बज मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि किस तरह से न्यूजीलैंड में अब जो डेवलपर्स है वो ऐसे घर बना रहे हैं जो कभी कोई खरीद ही ना सके। ओके लिसन, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो आप लोगों ने रेंटिंग टेम्प्रेरी बेसिस पे सुना होगा, लोग टेम्प्रेरी बेसिस पे रेंट करते हैं, फिर वो डिपॉजिट के पैसे जमा करते हैं, फिर वो घर खरीद लेते हैं, राइट? लेकिन अब न्यूजीलैंड में बिल्डर्स जो है वो 10 ईयर प्लान दे रहे हैं। सो देयर इज अ मैसिव 297 अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स दैट इज जस्ट ओपन इन ऑकलैंड एंड इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग ट्रेंड कॉल्ड बिल्ड टू रेंट। ठीक है ना, इट्स कॉल्ड बिल्ड टू रेंट। आई थिंक सिंप्लिसिटी का ये प्रोजेक्ट है जिसमें इंस्टेड ऑफ ओनिंग द हाउस डेवलपर्स आर बिल्डिंग द हाउस, ओनिंग देम कम्प्लीटली एंड रेंटिंग देम लॉन्ग टर्म। आप मल्टी ईयर लीसेस भी ले सकते हैं, जैसे 10 साल तक आपको रेंट करना है तो एक साथ 10 साल तक आप साइन कर लें। एंड द रियलिटी इज बहुत सारे लोग घर खरीदने के बारे में कभी सोच ही नहीं पाएंगे, इसलिए इस तरह की चीजें काफी कॉमन हो रही है अब न्यूजीलैंड में। इन प्लेसेस लाइक क्वींसटाउन फॉर एग्जाम्पल, जहां पे एवरेज हाउस प्राइस $2 million है, 2 million, कैन यू बिलीव दैट? कल मैं किसी से बात कर रहा था, मेरे क्लाइंट थे, एरोटाउन में रहते हैं वो, सुनने लायक बात है, एरोटाउन में रहते हैं वो, 145 हेक्टेयर्स की जमीन है उनके पास। सो ही इज नॉट टेक्निकली अ फार्मर, लेकिन उन्होंने ये जमीन किसी और को दी थी फार्मिंग करने के लिए। अब वो फार्मर रिटायर हो चुके हैं, ठीक है? नाउ ही इज लाइक, यार इतनी जमीन का मैं क्या करूं? सो ही इज आउट देयर इन द मार्केट आस्किंग, राइट, कि किसी डेवलपर को अगर ये जमीन चाहिए खरीदने के लिए तो खरीद लें। एंड यू नो वॉट ही इज लाइक, अगर मैंने ये जमीन बेच दी, मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे होंगे, इट्स लाइक द अकाउंट विल लुक लाइक अ मोबाइल नंबर। यू आर टॉकिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, दैट्स एरोटाउन क्वींसटाउन, मैन, दैट्स क्रेजी। और शायद इसी तरह का कोई डेवलपर वहां पे आएगा। सो इफ यू हैव लैंड इन ईयर 2026 इन दिस कंट्री, मैन, यू विल बैंक इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, आई फील। हमारे शो का नाम है मॉर्निंग बज। सुबह सुबह आपको प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में बता दिया मैंने आपको। आप शो सुनते रहिए, आई विल बी विथ यू ऑन रेडियो अंटिल 9 o'clock।

0: जीवन में कुछ पल बहुत ही अलग होते हैं और जब किसी प्रियजन को अलविदा कहना हो तो हर चीज आसान होनी चाहिए और सम्मानजनक भी। ओकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में सभी धर्मों के अंतिम संस्कार की सेवा प्रदान की जाती है। इनके इजी पे फ्यूनरल प्लान के साथ परिवार के लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है। और एडवांस पेमेंट और इजी इंस्टॉलमेंट टर्म्स के बारे में जानकारी के लिए आप उन्हें आज ही 2788600 पर रिंग करें। ओकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम, हर विदाई में सम्मान और सेवा।
1: At Bunnings Trade, no matter where you are, we're here to help. Our builders team with dedicated account managers has got you covered at every building stage, from the front fence to the back gate. Call 0800 134 872 to find out more. Bunnings Trade, helping business is our trade.
2: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे। iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शंस पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz।
3: अजीम के साथ मंगल की रात 7 से।
4: अभी ना पिछले हफ्ते इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने अपना एक डेटा रिवील किया जिसमें ये बताया कि सबसे ज्यादा वीजा रिजेक्शंस कहां से होते हैं। अंदाजा लगाइए कहां से हो रहे होंगे। यप, इट्स इंडिया। 18,000 पिछले साल 2025 में 18,000 वीजा वर रिजेक्टेड फ्रॉम इंडिया, 8,000 अबाउट 8,000 फ्रॉम चाइना एंड 5,000 फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, इंडिया और चाइना का जो वीजा रिजेक्शन रेट है वो एक्चुअली नीचे जा रहा है। सो पाकिस्तान टेक्निकली इज दी ओनली कंट्री जहां का वीजा रिजेक्शन रेट ऊपर जा रहा है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे भाई किस वीजा कैटेगरी की यहां पे बात हो रही है। सो इट्स नॉट वर्क वीजा, इट्स नॉट स्टूडेंट वीजा, इट्स नॉट योर रेसिडेंस वीजा, इट्स एक्चुअली विजिटर वीजा। विजिटर वीजा के बारे में लोगों की आम समझ ये होती है, अरे ये तो आसान है, मैं खुद अप्लाई कर दूंगा, अरे कोई बात नहीं। और वहीं सबसे ज्यादा रिजेक्शंस होते हैं। तो मैंने आपको ये बात बता दी, इंडिया अभी भी परसेंटेज शेयर में सबसे हाईएस्ट है, वहां के रिजेक्शन सबसे हाईएस्ट है। अच्छा, इसमें चाइना किस तरह से बच गया? चाइना के सिटीजन्स को अगर ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिलता है, सर्टन वीजा टाइप, तो उसी ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीजा पे वो न्यूजीलैंड भी आ सकते हैं। न्यूजीलैंड के लिए अलग विजिटर वीजा अप्लाई करने की चाइनीज सिटीजन्स को जरूरत नहीं है, इवन पैसिफिक नेशन सिटीजन्स, राइट? तो इसलिए उनका जो ओवरऑल वॉल्यूम है रिजेक्शन का वो नीचे चला गया। इंडिया के सिटीजन्स को ये सहूलियत नहीं है। सो या दैट्स न्यूजीलैंड इन 2026 फॉर यू।

0: drawing inspiration from urban communities around the world.
1: We present Pick O Toy Toy, a brand new urban development in Papa Toy Toy. Brick, low maintenance, 2 and 3 bedroom homes from 649,000.
0: 5 minutes from New World, eateries, schools, City Rail Link, Pohinui Bus Interchange and major motorways.
1: Join the new community. Selling now. Find out more at pikotoetoe.nz.
0: That's pikotoetoe.nz.
2: न्यूजीलैंड के कई बड़े बड़े इवेंट्स में होने वाले जो बड़े बड़े माकी आप देखते हैं ना, अरे मनगांव दिवाली सिख गेम्स में ये माकी इवेंट्स ऑकलैंड माकी एंड पार्टी हायर के हैं। 20 सालों से हैं बिजनेस में। इनके माकी बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस। घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माकी लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा। इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265 0505 और सुनिए, ये पोर्टल लू भी हायर पर देते हैं। इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265 0505
0: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स, मंडप और माकीस पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा।
3: फार्मर्स हैज द बेस्ट गिफ्ट्स फॉर मॉम। सरप्राइज हर विद अ न्यू फ्रेग्रेंस और ब्यूटी गिफ्ट। Keep her cozy with a new robe and sleepwear. Treat her with some new styling tools or a gorgeous diffuser or candle. Celebrate Mum this Mother's Day. Farmers, your department store.
4: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
5: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
6: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.
7: World in 1 minute. One global story explained simply with Jalesh.
8: आज जो मैं आपको वर्ल्ड इन वन मिनट में बताने वाला हूँ ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, दुनिया में शादी किसी ने सोचा होगा, स्पेशली ये जो शीन वेबसाइट चलाते हैं या आपका टीमू वगैरह चलाते हैं जो फास्ट फैशन की चीजें बेचते हैं। बेसिकली उन्हें ऐसा लगा कि वो सामान इतना सस्ता बेच रहे हैं कि दुनिया में हमेशा लोग हमसे ही चीजें खरीदते रहेंगे। लेकिन आज वर्ल्ड इन वन मिनट में ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री जो है वो इवॉल्व हो रही है। अब बहुत से लोग पता है क्या प्रेफर कर रहे हैं, देयर इज अ ग्लोबल रीसेल क्लोदिंग मार्केट जो उतने ही तेजी से ऊपर आ रहा है। अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट माइंड नाउ बाइंग रीयूज्ड क्लोदिंग, सो रीसेल ऑफ क्लोदिंग is now competing with the traditional retail. More consumers are buying second-hand clothing items through online platforms. Jaise branded clothing hai. Ab maan lijiye ki kisi ko, I don't know, Gucci ya Louis Vuitton ka kuch khareedna hai, theek hai? Wo brand new nahi khareedenge. Wo dekhenge, yaar, kisi aur ka khareeda hua hai jo unhone bahut kam istemal kiya. Because these people, man, they're super rich people. They sell things online. You'll be surprised how so many people sell their super branded stuff online. फिर जब वो online उसको रखते हैं, आप उनके घर पे delivery pickup करने जाते हैं, you realize कि man क्या लोग हैं इस दुनिया में, बताओ। They will sell like, I don't know, like $1,000 shoe for $200. तो लोगों को ऐसा लगता है क्यों नया खरीदे, पहन लेते हैं, उसमें क्या है, क्योंकि उनको भी तो आगे दिखाना ही है लोगों को, भाई ये सब वही तो है ना, कि ओ हो देखो हम क्या ब्रांड के जूते पहनते हैं। It's all about that, man. So yeah, resale clothing market is giving tough competition to fast fashion now.

0: लुटाने से। फ्यूल का दाम रोज बढ़ रहा है और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है इफिशियंट ड्राइविंग का और वेस्ट सिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, इफिशियंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो एमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट westcityautogroup.nz और सर्च ऑन सोशल्स फॉर वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप।
1: अरे भाई साहब आइए, कैसे हैं?
2: नमस्ते नमस्ते, मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
1: NZ मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
2: प्यारा मंडप तो है पर खर्चा बड़ा क्या होगा भाभी जी?
1: नहीं नहीं देखो, खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर NZ मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
3: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09265050505 और विजिट NZ मंडप फेसबुक पेज।
4: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्किस पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट।
5: यार मुझे फीजी जाना था।
6: कब जाना है?
5: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
6: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
5: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
6: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
4: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 00679652228।
6: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।
1: इंडिया जाना है तो सफर भी तो

0: वैसा ही होना चाहिए. फ्लाई विद एयर इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड, इजी रिटर्न कनेक्शंस वाया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर टू इंडिया, और फिर सीमलेस ट्रैवल विद इन इंडिया. दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, एयर इंडिया कनेक्ट्स यू टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया. वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही फ्रेंडली इंडियन हॉस्पिटैलिटी के साथ. तो अगली बार घर का सफर हो, फ्लाई एयर इंडिया. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट योर लोकल ट्रैवल एजेंट टुडे.
1: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट.
2: टेस्ट करे कशिश आटा, 100% चक्की फ्रेश आटा, हर दिन के लिए सॉफ्ट और डिलीशियस रोटी के लिए परफेक्ट क्वालिटी जो आप ट्रस्ट.
3: आज ट्रैफिक ठीक है, मंडे का दिन है. गुड मॉर्निंग इफ यू जस्ट वोकन अप. ऑकलैंड में नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्सोलेशन ड्राइव से सिटी पहुंचने में लग रहे हैं आपको 19 मिनट. 11 से सिटी पहुंचने में लग रहे हैं आपको 36 मिनट. मेसी से सिटी लगेंगे 22 मिनट. ड्रूरी से सिटी लग रहे हैं आपको कहाँ गए 42 मिनट्स. और मैंने कहा उसे सिटी बताया मैंने आपको 23 मिनट. अगर आपको एयरपोर्ट जाना है ऑकलैंड सिटी से लगेंगे 24 मिनट. वेलिंगटन स्टेट हाईवे 1 पोरिरोवा से सिटी सेंटर लग रहे हैं आपको 21 मिनट. 11 से सिटी सेंटर 1 आवर 10 मिनट्स. लोअर हट से सिटी लग रहे हैं आपको 16 मिनट. अपर हट से सिटी लगेंगे 31 मिनट. एंड इफ यू गोइंग टू द एयरपोर्ट फ्रॉम वेलिंगटन सिटी ओनली 14 मिनट्स.
2: फ्रेशनेस और ऑथेंटिक टेस्ट के लिए चूज करें कशिश आटा फ्रॉम कशिश फूड्स. ईट बेटर लिव बेटर अब नेशन वाइड स्टोर्स में अवेलेबल.

0: यार मुझे फिजी जाना था।
1: कब जाना है?
0: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
1: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
0: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
1: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
2: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 00679-652-0228।
1: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।
3: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora. Buy two full price pieces and receive a third one free, just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May in store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply.
4: Kia ora, Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it.
5: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, e-waste हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। auckland.gov.nz/where-it-goes पे। Tamaki Turuki, All Together Auckland.
6: Workplace reality check, the truth about work they don't put in the job description.
7: अगर आप लोग अपने workplace में किसी decision making position में है तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। आज workplace reality check में आपको ये बता रहे हैं कि ज्यादातर workplace decisions जो होते हैं ना, they are risk decisions, they are not right or wrong answers. समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं होता कि ये सही है ना। ज्यादातर वर्कप्लेस डिसीजंस होते हैं रिस्क डिसीजंस, मतलब मेनी चॉइसेस इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी, नॉट क्लियर आंसर्स। पीपल ऑफन डिले डिसीजंस ट्राइंग टू एलिमिनेट रिस्क कंप्लीटली। मतलब फॉर एग्जांपल, वो परफेक्ट डेटा सेट का इंतजार करेंगे बिफोर एक्टिंग। इन रियलिटी डिसीजंस आर अबाउट एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल। तो अगर आप उस लेवल पे हैं अपने कॉर्पोरेट एनवायरमेंट में, देन यू वुड हैव रियलाइज्ड कि एक सर्टेन पॉइंट पे आपने एक मैथमेटिक्स अपने दिमाग में कर रखा है कि ठीक है यार, इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे मैं अगर ये डिसीजन लेता हूं या लेती हूं, देन आई कैन रिलाई बैक और फॉल बैक ऑन दिस एज अ कॉन्सिक्वेंस। इतना तो आदमी ने कर ही लिया होता है उस पोजिशन में। एंड दैट्स वर्क प्लेस रियलिटी फॉर यू, कि डिसीजंस जो आप ले रहे हैं, इट इज मोर टू डू विथ कितना रिस्क आप ले सकते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट राइट और रॉन्ग।

0: Auckland and Wellington traffic report.
1: पापाटोई, फ्लैटबुश और पापाकुरा के बाद अब डीएच सुपरमार्केट का सबसे बड़ा स्टोर खुल गया है इन हेंडरसन. दैट्स राइट, योर लोकल इंडियन ग्रोसरी स्टोर नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन. ह्यूज क्लीन हाइजीनिक प्लेस टू शॉप विद एम्पल पार्किंग.
2: ऑकलैंड में नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्सोलेशन ड्राइव से सिटी पहुंचने में लग रहे हैं आपको 19 मिनट. 11 से सिटी सेंटर. लुक एट मी मैन, दिस इज द थर्ड टाइम आई सेड 11, आई डोंट नो व्हाई. सिल्वरडेल से सिटी लग रहे हैं आपको 36 मिनट. मेसी से सिटी लग रहे हैं आपको 22 मिनट. मैनकाव से सिटी लग रहे हैं आपको 23 मिनट. और ड्रूरी से सिटी लग रहे हैं आपको 42 मिनट्स. अगर आपको एयरपोर्ट जाना है ऑकलैंड सिटी से लगेंगे 24 मिनट. वेलिंगटन पुरीरोवा से सिटी सेंटर लगेंगे 21 मिनट. 11 से सिटी सेंटर 1 आवर 10 मिनट्स. लोअरहट से सिटी लग रहे हैं आपको 16 मिनट. अपरहट से सिटी 31 मिनट. एंड इफ यूर गोइंग टू द एयरपोर्ट इट्स टेकिंग यू 14 मिनट्स.
1: फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस और सभी इंडियन ग्रोसरी सामान बहुत ही अच्छे प्राइसेस में. DH Supermarket now in Henderson at 5 Moselle Avenue off Lincoln Road.

0: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक है म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन।
1: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन। नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार।
2: रेडियो पे एंड ऑफ द आवर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एवरी सिंगल वीक हमारे जो आर्टिस्ट है वो चेंज होते रहते हैं। आज के भी जो चेंज्ड आर्टिस्ट है, यू विल एंजॉय इट। ये गाना सुनिए आप, काफी मजे का गाना, यू लव इट ऑन अ मंडे मॉर्निंग। इट इज 4th ऑफ मई, राइट? बाप रे, 4 मई आ गया, बताओ।

0: Tarana. Time check.
1: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
2: Hello, good morning. Tarana clock mein subah ke 7 baj chuke hain.
3: Weather report brought to you by Crew Care. विजिट crewcare.co.nz.
2: आज अगर आप ठंड की बात करें ऑकलैंड में तो ठीक है, लेकिन इफ यू लिसनिंग टू आवर शो फ्रॉम क्वींसटाउन, मैन वी एनवी यू. इट्स 2 degrees इन क्वींसटाउन राइट नाउ. डनीडन इज 8, इनवकागल इज 4 एंड क्राइस्टचर्च इज 6 degrees. ऑकलैंड में करंट टेम्परेचर बाहर का है 11.7, आज का मैक्सिमम 19 है, मिनिमम 11 है. कल का मैक्सिमम टेम्परेचर ऑकलैंड में 20 है, मिनिमम 15 है और सनसेट होगा 5:34 पर.
4: This is Tarana News.
5: समाचार सुनिए संजेश नारायण से. प्रधानमंत्री क्रिस्टोफ हलक्सन और उनके दो सबसे भरोसेमंद और वरिष्ठ मंत्री कल सिंगापुर पहुंचे. वे 2 दिवसीय दौरे पर हैं ताकि उस रिश्ते को मजबूत कर सके जिस पर न्यूजीलैंड की ईंधन या फ्यूल सिक्योरिटी बहुत हद तक निर्भर है. दोनों देशों के बीच में सालाना $11 बिलियन का व्यापार होता है और सिंगापुर न्यूजीलैंड में निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है. दोनों देश अलग अलग वस्तुओं का व्यापार करते हैं जिससे यह रिश्ता और भी अधिक पूरक बन जाता है. सिंगापुर फ्यूल, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन और टेक का प्रमुख केंद्र है, जबकि न्यूजीलैंड से ज्यादा भोजन सामान सिंगापुर निर्यात किया जाता है. ड्राइवर लाइसेंसिंग में परिवर्तन किया जा रहा है. सरकार अगले साल 25 जनवरी से फुल लाइसेंस के लिए दोबारा टेस्ट को पूरी तरह से खत्म कर देगी. नए नियम के तहत रेस्ट्रिक्टेड ड्राइवर्स जिनकी उम्र 25 साल से कम है उन्हें फुल लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए 12 महीने इंतजार करना होगा. उन्हें दोबारा टेस्ट पर नहीं जाना होगा, जबकि 25 साल से ज्यादा उम्र के ड्राइवरों को 6 महीने इंतजार करने के बाद में फुल लाइसेंस के लिए. इस दौरान अगर रेस्ट्रिक्टेड ड्राइवर्स को डिमेरिट पॉइंट मिला तो उन्हें फुल लाइसेंस के लिए अतिरिक्त 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा. ऑस्ट्रिया में पमाकेट में बेबी फूड जार्स में रेड पॉइजन पाए जाने के बाद में 39 वर्षीय एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है. इस घटना के बाद में ऑस्ट्रिया में हिप ब्रांड के बेबी फूड जार्स को शेल्फ से हटा लिया गया है. साथ ही स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक के सुपरमार्केट से भी हिप ब्रांड के बेबी फूड जार्स को शेल्फ से हटाने का फैसला किया गया है. ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनीज मूल की 5 साल की लड़की कुमांजई लिटिल बेबी की हत्या करने के आरोप में जिस संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया था उन पर मेरा वाले चार्जेस लगा दिए गए हैं. 5 साल की लड़की पिछले शनिवार को एलिस स्प्रिंग से लापता हुई थी. जहां से वह लापता हुई थी उससे 3 किलोमीटर दूर पर उनकी लाश मिली है. बच्ची की हत्या के लिए जेफरसन लेविस को गिरफ्तार किया गया था, अब उन पर मेरा वाले चार्जेस लगा दिए गए हैं. जेफरसन लेविस को बच्ची के लापता होने से कुछ ही पहले उसी इलाके में जेल से रिहा किया गया था. लेबर पार्टी के इमिग्रेशन मामलों के प्रवक्ता फिल ट्वाय फोर्ड ने एक्ट पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसी की निंदा की है. उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ में मजदूरों या माइग्रेंट्स के लिए होड़ कर रहा है. ऐसे में इस तरह की नीति से माइग्रेंट्स को देश में आने से रोका जाएगा. एक्ट पार्टी की पॉलिसी के तहत वह चाहती है कि सीरियस ऑफेंडर्स जो यहां पर गंभीर अपराध करेंगे वे चाहे कितने भी सालों से न्यूजीलैंड में रह रहे हों उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए. इसके साथ ही एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा हर 1 साल के लिए दिया जाएगा. साथ ही माइग्रेंट्स जो न्यूजीलैंड आएंगे उन्हें वेलफेयर हासिल करने के लिए 5 सालों तक इंतजार करना होगा. इसके साथ ही टेम्प्रेरी वर्क वीजा पर जो लोग आएंगे उन्हें $6 पर डे इंफ्रास्ट्रक्चर से चार्ज भरना होगा और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को वर्क वीजा के लिए बढ़ाने की बात एक्ट पार्टी कर रही है.
4: स्पोर्ट्स न्यूज.
5: आईपीएल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पंजाब को 4 विकेट से हरा दिया. एक बॉल के रहते गुजरात टाइटंस ने मैच में जीत दर्ज की है. इसके साथ ही गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल पर बढ़त हासिल करते हुए 5वें स्थान पर आ गई है. उसके पास में 12 पॉइंट्स है. पंजाब अभी भी टॉप पर, उसके पास में 13 पॉइंट्स है. आईपीएल पर जानकारी चेसेस और इंडेलिबल होम्स की ओर से.
4: Auckland and Wellington traffic report.
1: Saturday 9th May ko Tarana team ke saath aaye shopping karne ke liye at NZ Beds Manukau Super Center store and get some exclusive deals jaise one free pillow with every purchase of any bed.
2: So Auckland mein agar aap Northern Motorway istemal kar rahe hain, Consolation Drive se City pahunchne mein lag rahe hain aapko 25 minute, Silverdale se City lag rahe hain aapko 55 minute, Messi se City lagenge aapko 27 minute, Manukau se City 28 minutes aur Drury se City lag rahe hain aapko 58 minutes. अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं ऑकलैंड सिटी से लगेंगे 27 मिनट, वेलिंगटन स्टेट हाईवे 1 पुरीरुआ से सिटी सेंटर 21 मिनट्स, लेवन से सिटी सेंटर 1 आवर 17 मिनट्स, लोअर हट से सिटी लग रहे हैं आपको 18 मिनट्स, अपर हट से सिटी 31 मिनट, एंड इफ यू आर गोइंग टू द एयरपोर्ट फ्रॉम वेलिंगटन सिटी इट्स टेकिंग यू ओनली 14 मिनट्स.
1: मैट्रेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $299, द वाइडेस्ट रेंज ऑफ बजट बेड्स एंड हाईटेक बेड्स एट एनजेड बेड्स. तो आए इनके मनिका सुपर सेंटर स्टोर में ऑन सैटरडे 9th मई एट द कॉर्नर ऑफ लैम्बी ड्राइव.

0: निलेश और संजेश आपका दिल बहलाने।
1: सुनिए मॉर्निंग बस सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 9 निलेश और संजेश के साथ।
2: हमारे शो का नाम है मॉर्निंग बज़ और मेरा नाम है जलेश। आई होप यू गाइस हैड अ वेरी रिलैक्सिंग वीकेंड। भाई बहुत जरूरी है, एवरीथिंग एल्स सेकेंडली, लेकिन रिलैक्स करना वीकेंड में सबसे ऊपर है। वीकेंड से मुझे याद आया, न्यूजीलैंड में इसी वीकेंड को डक हंटिंग सीजन भी शुरू हुआ है। आप लोगों ने सुना है इसके बारे में होगा। सो फॉर पीपल हु लव ईटिंग डक, उन लोगों को तो पता ही होता है, वो काफी एक्टिव रहते हैं कि यार मई का महीना आएगा और डक हंटिंग सीजन जो है देश में वो शुरू होगा। सी देयर इज वन गुड न्यूज। द गुड न्यूज इज कंप्लायंस जो है टू डू विद डक हंटिंग, इट इज एट इज हाईएस्ट। तो आप लोग ये जानते ही होंगे कि न्यूजीलैंड में एनफोर्समेंट है, यू नीड टू हैव प्रॉपर लाइसेंसिंग टू एक्चुअली गो आउट एंड हंट फॉर डक्स, लाइक नॉट एनी वन कैन गो एंड डू इट। फर्स्ट संडे, ये जो संडे गया ना अभी कल का दिन, तब से ऑफिशियली डक हंटिंग सीजन शुरू हुई है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे गौर में फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं जो अपने रेस्टोरेंट्स में डक मेन्यू इंक्लूड करती है फ्रॉम द मंथ ऑफ मे, एंड दैट हैज स्टार्टेड टू हैपन। हमारे शो का नाम है मॉर्निंग बज। डेविड सीमोर ने एक चीज अनाउंस की है, उसके बाद नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट डेविड सीमोर। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी अगर आप इमिग्रेशन के बारे में कुछ भी अनाउंस करेंगे, एवरीवन इन द कंट्री विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू। I mean, that's exactly what happened with Shane Jones, right? The way he said, butter chicken tsunami. Abhi David Seymour ne ye kaha hai, which is, who, by the way, is right now the Prime Minister of New Zealand. Kyunki hamare jo Christopher Luxon hai, he's in Singapore. So David Seymour is the active Prime Minister in the country right now. He said, ki unki party agar wapas se power mein aayengi, he wants to introduce $6 per day levy on migrants, people who are here on a work visa. उसके पीछे का लॉजिक ये है कि उनका ये मानना है कि वर्क वीजा पे जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो न्यूजीलैंड का रोड इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, सो दे गॉट टू पे $6 अ डे। एंड दीज माइग्रेंट्स आर आस्किंग, होल्ड ऑन, हम आते हैं तो हमसे भी तो आप टैक्स ले रहे हैं, तो हमसे टैक्स भी लेंगे और पर डे $6 भी लेंगे। दैट्स अ बिट अनफेयर।

0: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
1: जब बात होती है पर्दों की तो नाम आता है डी कैरो कर्टन्स का, जो कर्टन्स के साथ साथ स्पेशलाइज करते हैं इन सन फिल्टर रोलर ब्लाइंड्स, जो दिन में दे सही लाइट और यूवी रे से प्रोटेक्शन और नाइट में दे कंप्लीट प्राइवेसी। इनके सभी ड्रेप्स एंड कर्टन्स आते हैं विद फ्री लाइनिंग, प्लस तराना का नाम मेंशन करने पर 20% का डिस्काउंट। कम एंड मीट देयर फ्रेंडली टीम एट 19 मॉर्निंग साइड ड्राइव, माउंट एल्बर्ट। फोन 09815-3811। डी कैरल कर्टन्स।
2: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल प्रोजेक्ट।
1: ये होगा संडे 17th मई को 11 AM टू 4 PM,
2: 378 आरारीमू रोड, रामा साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर्स, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कैसल्स और बहुत कुछ।
1: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर।
2: वन टेम्पल वन कम्युनिटी इटर्नल ब्लेसिंग्स।
3: देयर आर डेज व्हेन यू नेल पेरेंटिंग बट दिस इजंट वन ऑफ देम। There's not even a single cherry tomato for their lunchbox. And is that a tumbleweed? Luckily, a DoorDash hero emerges. That's me.
4: Dash! Savior of the lunchbox!
3: Now the kids have a tasty lunch that you can totally share on the gram. With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
4: Dash!
5: Bunnings gift card is a great gift for Mother's Day because it unlocks the whole warehouse for Mum. She's in for a treat. She'd be like, oh my gosh, yes, now I can buy all those extra plants that I was looking for the front garden. Perfect.
4: Bunnings Warehouse.
6: भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, जोरों की भूख लगी. की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: जी एजे के घर दिया और हमें
1: तुम्हारे पास तो है घर,
0: वो तो हम खरीदा है, तुम नहीं देगा हमें कुछ।
1: ये तुम लोग को जो मांगता हमसे हमें दे देगा कि नहीं यार?
0: रान दो, नहीं मांगता।
1: तुम चाहे मुंह फुलाओ चाहे चिल्लाओ, एक सेंट नहीं देगा।
0: हाँ सब लेके जाना।
1: हाँ हम ले जाएगा, लड़कन तो हमने कंगा कर दी यार, चल दो यहाँ से।
2: ताजी के नहीं तंग करो, अपन घर अपने बनवा लो। इंडेलिबल होम्स के रिंग करो 0800-233-111 पे।
3: सैटरडे 9 मई को रेडियो तराना की टीम आपको शॉपिंग करवाने वाली है इन एनजेड बेड्स मानिकाओ सुपर सेंटर स्टोर, और एक्सक्लूसिवली उस वीकेंड इन स्टोर डील्स के अलावा यू विल रिसीव अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड ऑफ एनी बेड। ट्रेड इन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और आपको फ्री लोकल डिलीवरी भी मिल सकती है। टीज एंड सीज अप्लाई। एनजेड बेड्स विद 40 इयर्स इन बिजनेस एंड थाउजेंड्स ऑफ हैप्पी कस्टमर्स, ये आपको देंगे गारंटीड बेस्ट प्राइस। और 9 मई को मिलते हैं इनके मानिकाओ सुपर सेंटर वाले स्टोर at the corner of Lambie Drive and Cavendish Drive. इस Mother's Day को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
4: With local grants, anytime you play a Lotto NZ game, it's a win for your local community. Because 100% of profits go back into wins across Aotearoa. Cheers, Lotto NZ players.
5: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
6: And now, making their debut for Macca's, dishing up the new Dunk Chicken range with Korean sticky barbecue sauce, the Harlem Globetrotters.
7: Available between 11 a.m. and 11 p.m. T's and C's apply.
8: Science says what research says in plain language with Jalesh.
9: एक बात बताओ, आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है when you basically go for like a really long trip, I shouldn't say long trip, but a long holiday, किसी और continent में चले गए छुट्टी के लिए, और फिर आपको जेट लैग्ड फील होता होगा कि हाय मेरा नींद का जो पैटर्न है पूरा ऊपर नीचे हो गया। कम से कम एक आध हफ्ता लग जाता है बहुत सारे लोगों को टू फील नॉर्मल। नाउ व्हाई Why do we feel jet lagged? Irregular sleep pattern. आपने इसके बारे में सुना होगा। In fact, मैं आपको एक बड़े कमाल

सिमिलर टू जेट लैग. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टे अप लेट या वेकिंग अप सुपर अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका जो पूरा रिदम है दिन का वो ऊपर नीचे हो जाता है एंड यू फील अ बिट अनकंफर्टेबल डिस्टर्ब्ड. नॉर्मली अगर आपको दोपहर को नींद नहीं आती आप नहीं सोते, लेकिन सुबह अगर बहुत जल्दी उठे होंगे तो आपको उस दिन दोपहर को थोड़ा नींद जैसा आता रहेगा एंड दैट्स बिकॉज योर बॉडी इज आस्किंग यू टू रीसेट इट सेल्फ विच इज वाई यू फील अ सर्टन वे एंड नाउ यू नो इट.

0: हुए हैं। व्यापार मंत्री टॉड मैकले और फाइनेंस मिनिस्टर निकोला वेलेस भी इस दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ में गई हुई हैं। दोनों देशों के बीच में सालाना रूप से 11 बिलियन डॉलर्स का व्यापार होता है। सिंगापुर न्यूजीलैंड में सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। सिंगापुर का मुख्य व्यापार फ्यूल, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन और टेक है। वहीं न्यूजीलैंड बड़ी मात्रा में भोजन सामान सिंगापुर को सप्लाई करता है। लेबर पार्टी के इमिग्रेशन मामलों के प्रवक्ता फिल ट्वाइफोर्ड का कहना है कि अगर एक्ट पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसी लागू कर दी जाती है तो माइग्रेंट्स को देश में लाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से होड़ करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर एक्ट पार्टी की पॉलिसी लागू हो जाती है तो उसके तहत कम माइग्रेंट्स देश आएंगे। एक्ट पार्टी ने 6-पॉइंट प्लान की अनाउंसमेंट की है जिसके तहत सीरियस ऑफेंडर्स को देश से डिपोर्ट किया जा सकेगा चाहे वे कितने दिनों से न्यूजीलैंड में रह रहे हों। इसके साथ ही एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजा हर साल रिन्यू किया जाएगा और 5 ईयर वेलफेयर स्टैंड डाउन रेसिडेंस क्लास वीजा होल्डर्स के लिए लागू किया जाएगा। इसके साथ ही वर्क वीजा पर देश आने वाले लोगों को $6 पे डे के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर से चार्ज भरना होगा और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को बढ़ाने की बात एक्ट पार्टी कर रही है। साथ ही ओवरस्टेयर एनफोर्समेंट यूनिट का गठन करने की बात भी एक्ट पार्टी कर रही है। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया में बेबी फूड जाम में रेड पॉइजन पाए जाने के बाद में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। इस घटना के बाद में ऑस्ट्रिया सहित स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक में हिप ब्रांड के बेबी फूड जार्स को शेल्फ से हटा लिया गया है और पैंथर्स एनआरएल पॉइंट्स टेबल पर अभी भी टॉप पर है। पैंथर्स ने कल सी ईगल्स को 18-16 से हराया और फिजी में प्रीमियर लीग मैच में बा को लंबासा के हाथों 2-1 से हार का सामना करना पड़ा है। ये मैच गोविंद पार्क बा में खेला गया।
1: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
2: पैसिफिक में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजे डीजीसेल का $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या करे कैश ट्रांसफर $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ और जीते एक्साइटिंग प्राइजेस।
0: ट्रैफिक इस वक्त सदर्न मोटरवे पर मैनकाउ से 38, नॉर्थ वेस्टर्न पर मेसी से 30, नॉर्थर्न पर कॉन्स्टलेशन ड्राइव से 39, टू द एयरपोर्ट 27 मिनट्स आपको लग रहा है। वेलिंगटन में इस वक्त पूरी रुआ सिटी सेंटर से बिजी 54, लवा हद से 32, अपा हद से 58, हैवी बिफोर द मेलिंग लिंक टू द एयरपोर्ट 14 मिनट्स।
2: बी इन द ड्रॉ टू विन वन ऑफ 15 $500 कैश प्राइजेस दिस मदर्स डे विद डिजी सेल। तो भेजे $20 का टॉप अप या $300 कैश टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक।
3: कौन?
4: मैं यमराज हूँ।
3: ओह जय हो महाराज, लेने आए हो तो चलो।
4: कमाल है जाने की इतनी जल्दी।
3: हाँ मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है। ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है।
4: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में बांटना चाहिए।
3: ओके थैंक यू महाराज, मैं बांटता हूँ ये ज्ञान। सभी को कॉल करना चाहिए ग्लोबल फाइनेंस को 09255-5500 पर।
5: डैडी कैसे? राम राम।
6: ठीक बेटा, राम राम। घर बने? कहाँ तक पहुँचा?
5: पेंटिंग हुए है डैडी।
6: कितना अच्छा बिल्डर मिल गए रे। का नाम है उन लोगों के?
5: इनडेलेबल होम्स।
6: हमारे पास भी 10-15 घर रहता अगर हमारे टाइम पे ऐसा बिल्डर मिल जाता।
5: अभी भी सकता बनाए डैडी, बनाए के हमें दे दो।
6: वाह।
7: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इंडेलिबल होम्स। फोन 0800-233-111।
8: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
2: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.
9: Macca's weekly deals are back. That means more of your favorites for less every week. Jump on the Macca's app and check out this week's offer. Macca's weekly deals only on the app. T's and C's apply. Ba-da-ba.

0: नाम ने आपको सुनाया गाना तन्नू वेड्स मन्नू मूवीज है, मुझे लगा कि मंडे मॉर्निंग को आपको इस तरह के गाने की जरूरत होगी, थोड़ा एनर्जेटिक यार, यू शुड फील गुड राइट। एवरीवन हु जस्ट ट्यून्ड इन, हमारे शो का नाम है मॉर्निंग बज और मेरा नाम है जलेश, आई होप यू गाइज आर फाइन, गुड मॉर्निंग। एक बात बताओ, एक्चुअली एक बात क्या बताओ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वी've got 4 मूवी टिकट्स टुडे टू गिव यू, मंडे का दिन है, वी थॉट वी शुड स्टार्ट द वीक विद अ बैंग। सो एवरीवन हु इज लिसनिंग टू अस राइट नाउ, आप बस हमें 8812 पर SMS कर दीजिए अपने नाम स्पेस आपके शहर से हमारा रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आई मीन दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टिकट दैट वी वॉन्ट टू गिव यू, विच इज वाई आई एम आस्किंग यू। शहर का नाम लिखना बहुत जरूरी है, अपना नाम स्पेस शहर का नाम ऑन 8812। आपके पास तकरीबन 4 मिनट का समय होगा, बिकॉज इट्स टाइम आई विल टॉक टू अ ग्लोबल फाइनेंस कस्टमर वेरी सून ऑन रेडियो, सो एज सून एज आई फिनिश दैट आई कम बैक टू यू एंड लाइक ओ कंग्रेचुलेशन यू आर द विनर। सो योर नेम स्पेस द सिटी वेर यू लिसनिंग फ्रॉम एंड सेंड इट टू अस ऑन 8812, ये हमारा नंबर लिख लीजिए फॉर पीपल जिन्होंने कभी हमें SMS नहीं भेजा, द प्लेस वेयर यू सेंड अस एन SMS इज 8812। हे, इस संडे को मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे बहुत सारे लोग, सो बी रेडी फॉर दैट। अगर आपने अपनी मम्मा के लिए तोहफा नहीं खरीदा अब तक, गेट इट सॉर्टेड मैन। आई गिव यू एन आइडिया, डिजीसेल के बारे में सुना है, यू कैन सेलिब्रेट मम दिस मदर्स डे विद डिजीसेल, यू कैन सेंड $20 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू माई कैश वॉलेट इन द पैसिफिक and you could be into a draw to win one of 15 $500 cash prize. How good is that? Digicel, make it easy to share the love. T's and C's apply, obviously. और अगर आपके पेरेंट्स वहां पे रहते हैं, आप उनको हेल्प करना चाहते हैं, then you should totally go for it. The other thing that you need to know is DH Supermarket. इसके बारे में पवन जी और नेहा जी अपने शो में आपको बताएंगी, so you stay tuned for that. I thought this deal was equally amazing. So DH Supermarket के बारे में पवन जी और नेहा जी आपको बताएंगे.
1: The Calm Minute. 1 minute to slow your mind with Jalesh.
0: Right, the Calm Minute. Are you ready for this one? Sensory Subtraction Reset के बारे में सुना है? साइंस में इसको सिखाते हैं, इट्स कॉल्ड सेंसरी सब्स्ट्रैक्शन रीसेट, जिसमें आपका ब्रेन जो है, सो योर ब्रेन बेसिकली प्रोसेसेस मल्टीपल इनपुट्स एट वंस। जैसे आप कुछ देख रहे हैं तो उसका साउंड भी आपको सुनाई दे रहा है, आपने कुछ देखते देखते उसको टच किया तो टच साउंड एंड व्हाट यू आर विजिबली सीइंग, ये सारी चीजें एक साथ हो रही है आपके बॉडी में। इससे क्या होता है, कई बार ओवरलोड हो जाता है, व्हेन ऑल चैनल्स स्टे एक्टिव एट वंस योर ब्रेन कुड गो इन टू समथिंग कॉल्ड ओवरलोड। इसीलिए सजेशन ये है कि यू शुड रिमूव वन इनपुट फ्रॉम अ मोमेंट, क्लोज योर आईज और स्टेप अवे फ्रॉम द साउंड। ये तीनों चीजें जहां एक साथ होगी ना फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड उसको यू कांट रियली टेक इट। इसीलिए बहुत सारे लोग जब क्लब में जाते हैं, यू नो हाउ यू आर डांसिंग क्लोज टू ईच अदर, सो यू आर ऑल्सो टचिंग पीपल, देन देयर इज साउंड, लाउड म्यूजिक and then there are these disco lights. ये सारी चीजें एक साथ होती है, उससे बहुत सारे लोग uncomfortable हो जाते हैं. So if you're one of those, you should remove yourself from at least one of these three things. Sound, touch, or vision. Even if you close your eyes, all of a sudden you'll feel, हाँ, अब relatively थोड़ी ज्यादा शांति है.
2: Money Matters on Morning Number 1 brought to you by Global Financial Service Limited. Weekdays at 7:45 a.m. Global Finance, phone 09255500.
0: Hey, welcome back to the show. हम रेडियो तराना पे Global Finance के कस्टमर से बात करते हैं और आज भी बात करेंगे पटेल साहब से. Good morning, पटेल साहब, केम छो?
3: केम छो मजामा?
0: ફર્સ્ટ ક્લાસ એકદમ. શું તમે ગ્લોબલ ફાઇનાન્સ ની કઈ સર્વિસ યુઝ કરી હતી?
3: અમે અત્યારે એક નવું હાઉસ જે બાઇક કરવાનું હતું એના માટેની મોર્ગેજ સર્વિસ એનો યુઝ કર્યો છે અને અમને પોતે આ સર્વિસ આપી છે.
0: ઓ નાઇસ. સોરી પટેલ સાહેબ, હું તો બહુ આમ ભાવનાઓમાં બહી ગયો. આપણે હિન્દીમાં વાત કરીએ તાકી બધાને સમજમાં આવે. સો વોટ રીલી હેપન્ડ ઇઝ, અભી આપને એક મોર્ગેજ લિયા જિસકે લિયે આપને ગ્લોબલ ફાઇનાન્સ કો કોન્ટેક્ટ કિયા થા?
3: ग्लोबल फाइनेंस का कॉन्टेक्ट किया न्यू मॉर्गेज के लिए.
0: तो कैसे हैं ये लोग, सर्विस वगैरह में ठीक है या सिर्फ तारीफ करते हैं लोग इनकी?
3: ना ना, बहुत अच्छे हैं, जो अच्छी तरह वो सभी के साथ कॉन्टेक्ट बना रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो त्वरित भी वो सब सॉल्यूशन कर सकते हैं और कर देता है.
0: राइट. अच्छा पटेल साहब, मेन बात तो ऐसी है कि जब आदमी लोन लेता है तो वो चाहता है कि थोड़ा तो अगर कैशबैक मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, और इंटरेस्ट रेट अगर मिल जाए तो अच्छा, इंटरेस्ट रेट तो अच्छी बात है. आपके केस में मिला आपको ये दोनों, अच्छा इंटरेस्ट रेट और कैश बैक?
3: अच्छा इंटरेस्ट रेट मिला मुझे, मेरे महीने दो महीने पहले किया था तो तब जो इंटरेस्ट रेट था और वो नेगोशिएट करके मैंने जो दिलाया वो भी अच्छा रेट दिलाया था दो महीने पहले का इन अप्रैल में। और अभी आगे चला है तो अभी भी जो दूसरा पैकेज है इसमें भी अच्छा लोन करवाया है।
0: Oh, that's nice. एक बात बताइए, अगर आप डायरेक्टली बैंक के पास गए होते तो आपको ऐसा लगता है कि आपको इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता या ग्लोबल फाइनेंस के पास जाने से फायदा हुआ? ये
3: फायदा तो हुआ ही है कि बैंक के जाने से जो उसका जो नॉर्मल रेट होता है, पर कभी कभी तो नॉर्मल रेट में भी वो अपना लोन दे देते हैं और कभी जो डिस्काउंट रेट रहता है, पर इसमें हमारा वो चाहिए डिपॉजिट,
0: right.
3: तो 20% डिपॉजिट, तो हमें यहाँ जाते हैं तो कुछ वो सॉल्यूशन निकाल के।
0: और हमारे वो लिसनर्स जो इस वक्त रेडियो सुन रहे हैं, क्या आप उन्हें सलाह देंगे कि वो ग्लोबल फाइनेंस के पास जाएं मॉर्गेज या इंश्योरेंस के लिए?
3: हाँ, तो मुझे तो फायदा हुआ ही है, तो मैं भी कस्टमर को और जो भी सुन रहे हैं उसको भी मैं रिकमेंड करता हूँ जो जाके उसकी सलाह भी ले और वो फायदा भी उसको भी मिलेगा।
0: અને આપણા ગુજરાતી ભાઈઓ બહેનો માટે ભી કહી દો કે ગુજરાતી માં એમને ભી જવું જોઈએ કે નહીં?
3: હા, જવું જોઈએ ને, જવું જોઈએ, એમાં ક્યાં એમાં કોઈ ફાયદો જણાતો હોય તો આપણે પહેલો ફાયદો ગુજરાતી તો પહેલો ફાયદો જ શોધે, તો ફાયદો લેવામાં ક્યાં વાંધો છે।
0: अगर आप भी पटेल साहब की तरह ग्लोबल फाइनेंस जाना चाहते हैं आप चले जाइए, उनका नंबर है 09255500। थैंक यू वेरी मच, बाय
3: बाय।

0: बच्चों बताओ डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
1: मैम, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम।
0: जीनियस। अब बताओ रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
1: मैम, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान।
2: बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान। फोन 09255500। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: घर बनाना स्टार्ट किया है, अब तो टेंशन ही टेंशन है।
4: बिल्डर कौन है तुम्हारा?
3: अभी डिसाइड ही नहीं किया, सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं।
4: यार सिंपल है, KMB कंस्ट्रक्शन से बात करो।
3: क्या स्पेशल है उनमें?
4: अरे वो घर ऐसा बनाते हैं बिना स्ट्रेस, टाइम पे और बजट के अंदर। 18 सालों का एक्सपीरियंस है ऑकलैंड में, और जो काम लेते हैं कंप्लीट करके ही देते हैं। भूपेंद्र कुमार को कॉल करो 021-874-871 पर, या विजिट करो kmbconstruction.co.nz।
5: साली जी, ऑकलैंड फिर कब आओगी?
3: जीजू, मैं तो स्पेशली यहाँ क्राइस्टचर्च से बार बार ऑकलैंड बेकन बीन्स के लिए आती थी, पर आपको पता है अब हमारे यहाँ क्राइस्टचर्च में ही बेकन बीन्स खुल गया है, या एट 268 लिंकन रोड एडिंगटन क्राइस्टचर्च। अब यहाँ पे बेकन बीन्स के डिलिशियस बिस्किट्स, पैटीज, पेस्ट्रीज, केक्स, सब कुछ मिलता है। मैं तो कॉल करके ही अपना ऑर्डर दे देती हूँ 0800-786-101 पे। अब तो यहाँ क्राइस्टचर्च में ही है मेरा बेकन बीन्स।
5: तो हमसे मिलने नहीं आओगी?
6: क्या काम की भाग दौड़ से कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है? वरी मत कीजिए, स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस के लाभ की मदद के लिए तैयार हैं। यहाँ आपको मिलता है 24 आवर्स सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े छोड़ दीजिए और इनकी टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको बिल्कुल तैयार देगी। यहाँ सूट, ब्लेजर, शर्ट, ड्रेसेस और फॉर्मल वेयर की प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं। अरे डूबे ब्लैंकेट, स्पोर्ट्स गेयर की सफाई भी यहाँ पर होती है। स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 स्टोडार्ड रोड मॉन्ट्रोस। आसान, भरोसेमंद और 24/7।

0: थैंक यू वो सारे लोग जिन्होंने 8812 पे हमें SMS भेजे हैं. मैन लव यू गाइज, लाइक एब्सोल्युटली लव यू गाइज. सो वी कैन ओनली पिक टू विनर्स और मूवी टिकट्स है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया. सो वॉट वी डिसाइडेड टू डू इज, हमारे वेलिंगटोनियंस जो है, हमारे वेलिंगटन के लिसनर्स, वो अक्सर हमें कंप्लेन करते थे, यार आप टिकट्स वगैरह जो भी देते हैं हमेशा ऑकलैंड के ऑडियंस के लिए देते हैं, हमारा क्या? गेस व्हाट, वी हर्ड यू नाउ. Every time I'll give something on my show from today onwards will also include people from Wellington. ठीक है ना, ताकि आप left out feel ना करें. So we are giving 4 tickets in total. Couple tickets है तो ऑकलैंड के एक लकी विनर को देंगे एक कपल टिकट और एक वेलिंगटन को. ठीक है, सबसे पहले वेलिंगटन से ही शुरू करते हैं. वी रिसीव सो मेनी SMSs फ्रॉम वेलिंगटन. मैं सब नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा, आई जस्ट अनाउंस द विनर फ्रॉम वेलिंगटन. देयर यू गो पद्मा जी, कांग्रेचुलेशंस. पद्मा जी इज लिसनिंग टू अस फ्रॉम लोअर हार्ट इन वेलिंगटन. आपके मोबाइल फोन के लास्ट 4 डिजिट्स 4728 है. Congrats, we'll send you the ticket directly digitally on your mobile phone number. Easy man, life's easy now. Auckland ke winner ko bhi announce kar lete hain. There we go. Gaurang, congratulations, you are the winner from Auckland. And I'm assuming aap log smart speakers pe sun rahe honge Auckland mein, right? Because Radio Tarana is not yet, well, aap radio sets pe nahi sun pa rahe hain because of the major maintenance that's going on. Gaurang, aapke mobile phone ke last 4 digits hai 6472. Again, the same thing, will send the ticket directly on your mobile phone as an SMS.
1: This Mother's Day, Michael Hill is celebrating all kinds of mums. From the new mums, the stepmums, and even the pet mums. Celebrate Mother's Day with pieces she'll love forever. Make sure to visit Michael Hill online or in-store today.
2: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे.
3: iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शंस पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी. iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है. प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं. आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz.
4: इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए. फ्लाई विद एयर इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड, इजी रिटर्न कनेक्शंस वाया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर टू इंडिया, और फिर सीमलेस ट्रैवल विद इन इंडिया. दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, एयर इंडिया कनेक्ट्स यू टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया. वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही फ्रेंडली इंडियन हॉस्पिटैलिटी के साथ. तो अगली बार घर का सफर हो, फ्लाई एयर इंडिया. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट योर लोकल ट्रैवल एजेंट टुडे.
5: व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस रन ऑन बिजनेस Fiber. Cloud thriving businesses, CGI building businesses, even big file sharing, video calling, meme sharing businesses. For uncompromising bandwidth and reliability, get your business running on Business Fiber.
6: Auckland and Wellington traffic report.
7: Indelible Homes. Build your dream house with us. Call 0800-233-111.
8: Traffic citybound, Manukau se 43, Messi se 37, Constellation Drive se 38, to the airport 27 minutes. Wellington mein Puri River City Center se 54, Lavahat se 31, Upper Hutt se at least 49, to the airport 17 minutes.
7: When you build your dream house with Indelible Homes, you can personalize everything from kitchen and bathroom colors to flooring. Proud members of New Zealand Master Builders.
9: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक हैं म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सेन.
10: ब्रॉट टू यू बाय KMP कंस्ट्रक्शन. नया घर बना रहे हैं या एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आज ही कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871 पर.
11: अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ. मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड ब्रेथ टेकिंग फोटोग्राफ्स. दे ऑफर डीजे वेडिंग वीडियो एंड फोटो पैकेज from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party, get together or massive wedding. Contact Multi DJ.
12: With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021-058-4711. Yes, sir.

0: At Bunnings Trade, we can help you build big. We've got a wide range of landscaping supplies and building materials to help you get the job done. From Green Life decking and fencing to irrigation, top brand power tools and loads more. Plus, our trade team's here to help you get back on site fast. Shop the range in-store or online today. Or call 0800 134 872 for fast quotes and delivery to site. We can help you build big at Bunnings Trade.
1: इस Mother's Day को बनाए और भी special Digicel के साथ. बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का top up या $300 या उससे ज्यादा का cash transfer इनकी किसी भी partner website से. My Cash Wallet के साथ. To your family and friends in the Pacific. और आपका नाम तुरंत जाएगा draw में to win one of the 15 $500 cash prize. तो $20 का top up भेजे या $300 का cash. और Digicel के साथ मौका पाएं जीतने का $500 cash. T's and C's apply.
2: Atakia, turn clutter into calm. With our wide range of storage solutions. Because behind every mess, every avalanche of toys is a new possibility. Shop in store or at ikea.co.nz.
3: IKEA. Radio Tarana.
1: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
4: Hello, good morning. Tarana clock mein subah ke 8:01 exactly. Hey, we have a really sweet listener from Tauranga. Unhone likha, hi Jalesh, now you've started to give tickets to Wellington listeners. How about Tauranga listeners? Am I the only supporter for Tauranga? I don't think so. It depends on the volume, yeah. Aap thoda aur Tauranga se listeners leke aaiye humare liye. And if a lot of people collectively ask us to give something to Tauranga listeners as well every time we do like a little giveaway on radio, sure, we'll include Tauranga as well. किसी ने हैमिल्टन से भी मुझे मैसेज किया. सी हैमिल्टन का तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैमिल्टन से ना हर एक महीने में एक आध बार तो ऑकलैंड आ ही जाते हैं. सो यू कैन स्टिल आई थिंक make use of giveaways that we give in Auckland, right?
5: Weather report brought to you by Crew Care. Visit crewcare.co.nz.
4: Thund Auckland mein hai aaj. It is what? It is 12.2 degrees right now. Aaj ka maximum 19 hai, minimum temperature 11 hai. Kal ka maximum temperature 20 hai, minimum temperature 15 hai. Current temperature bata diya maine aapko. Aur sunset hoga 5:34 par.
6: This is Tarana News.
7: समाचार सुनिए संजेश नारायण से. फ्यूल सिक्योरिटी पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफ लक्सन सिंगापुर गए हुए हैं. व्यापार मंत्री टॉड मैकले और फाइनेंस मिनिस्टर निकोला वेलेस भी इस दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ में गई हुई हैं. दोनों देशों के बीच में सालाना रूप से $11 बिलियन का व्यापार होता है. सिंगापुर न्यूजीलैंड में सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है. सिंगापुर का मुख्य व्यापार फ्यूल, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन और टेक है. वहीं न्यूजीलैंड बड़ी मात्रा में भोजन सामान सिंगापुर को सप्लाई करता है. इस दौरे पर सिंगापुर के साथ में फूड फॉर फ्यूल वाले समझौते को और मजबूत किया जा सकेगा. एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर डेविड सीमो का कहना है कि वे इसलिए माइग्रेंट्स के इंग्लिश रिक्वायरमेंट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें शिकायत मिलने लगी है कि जो माइग्रेंट्स बिना इंग्लिश टेस्ट के देश आते हैं उनके लिए ट्रांसलेशन पर बहुत समय बर्बाद हो रहा है.
8: I talk to people who work in healthcare who normally would say, mate, without migrants, we wouldn't have a hospital, so you know, you've got to get on board. What they're now saying is actually the amount of time that I spend dealing with people that came in as partners, parents or dependents who didn't have to face an English language test, the amount of time we spend, the amount of translating that we require, it's actually gunking up the whole healthcare system where I work.
7: लेबर पार्टी के इमिग्रेशन मामलों के प्रवक्ता फिल ट्वाइफोर्ड का कहना है कि अगर एक्ट पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसी लागू कर दी जाती है तो माइग्रेंट्स को देश में लाना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से होड़ करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि अगर एक्ट पार्टी की पॉलिसी लागू हो जाती है तो उसके तहत कम माइग्रेंट्स देश आएंगे. एक्ट पार्टी ने 6-पॉइंट प्लान की अनाउंसमेंट की है जिसके तहत सीरियस ऑफेंडर्स को देश से डिपोर्ट किया जा सकेगा चाहे वे कितने दिनों से न्यूजीलैंड में रह रहे हों. इसके साथ ही एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजा हर साल रिन्यू किया जाएगा और 5-ईयर वेलफेयर स्टैंड डाउन रेसिडेंस क्लास वीजा होल्डर्स के लिए लागू किया जाएगा. इसके साथ ही वर्क वीजा पर देश आने वाले लोगों को $6 पे डे के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर से चार्ज भरना होगा और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को बढ़ाने की बात एक्ट पार्टी कर रही है. साथ ही ओवरस्टे एनफोर्समेंट यूनिट का गठन करने की बात भी एक्ट पार्टी कर रही है. चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और बेस्टिलिटी मटेरियल अपने पास रखने के आरोप में 9 महीनों की होम डिटेंशन की सजा काट रहे पूर्व डिप्टी पुलिस कमिश्नर जेवन मैक्स किमिंग को मिले सम्मान उनसे छीन लिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर रिचर्ड चैम्बर्स ने पुलिस मंत्री मार्क मिचेल के पास में एक खत लिख करके मैक्स किमिंग को दिए गए सम्मान को वापस लेने की मांग की थी। मैक्स किमिंग को जुलाई 2010 में लॉन्ग सर्विस और गुड कॉन्डक्ट मेडल से सम्मानित किया गया था, जबकि उन्हें 2017 और 2024 में भी सम्मानित किया गया था। पिछले एक महीने से देश के 5 राज्यों में चुनावी माहौल बना हुआ था। 4 मई यानी कि आज इस लोकतांत्रिक त्यौहार का आखिरी दिन है। पिछले एक महीने में कौन किस पर भारी पड़ा और किसने कितनी रैलियां की, इसका पूरा हिसाब होने वाला है। बता दें कि असम, केरल और पांडुचेरी में 9 अप्रैल को ही शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो गई थी। इसके बाद 23 अप्रैल को तमिलनाडु चुनाव संपन्न हुआ। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग पूरी हुई। इसके बाद में 29 अप्रैल को बंगाल की बाकी सीटों पर मतदान हुआ था। फिजी की अर्थव्यवस्था को अभी भी इनवर्ड रेमिटेंस से काफी लाभ मिल रहा है। इस साल फरवरी में $274.2 मिलियन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के पास फिजी में रेमिटेंस के रूप में भेजा। रिजर्व बैंक के मुताबिक फरवरी में जनवरी के मुताबिक रेमिटेंस में 22.1% की बढ़ोतरी देखी गई है। फरवरी महीने में $110.1 मिलियन आउटवर्ड रेमिटेंस रहा है। माइग्रेंट वर्कर्स जो फिजी में काम करते हैं वे अपने रिश्तेदारों के पास विदेश रेमिटेंस में पैसे भेज रहे हैं।
6: स्पोर्ट्स न्यूज।
7: लियम लॉसन मियामी ग्रैंड प्री से बाहर हो गए हैं। 6th lap में क्रैश के बाद में उनकी गाड़ी का ब्रेक पहले तो लॉक हो गया था, उसके बाद में वे अल्पाइन ड्राइवर के सामने आ गए थे। 6th lap के बाद में वे रेस नहीं कर पाए हैं। मर्सिडीज टीनेजर किम एंटोनोली ने एक और रेस जीतते हुए फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में और बढ़त हासिल कर ली है। गुजरात टाइटंस को आईपीएल पॉइंट्स टेबल पर और बढ़त मिली है। आज सुबह हुए मैच में गुजरात टाइटंस ने पॉइंट्स टेबल लीडर्स पंजाब को 1 बॉल के रहते 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने 20 ओवर्स में 163 for 9 बनाए थे, जिसमें सूर्यांश शेजे के 57, मार्कस टोनिस के 40 रन शामिल है। जवाब में 19.5 ओवर्स में 167 for 6 बनाने के बाद में गुजरात ने इस मैच को जीत लिया। साई सुदर्शन ने 57, वाशिंगटन सुंदर ने 40 रनों का योगदान दिया। जोश बटला ने 26 रन बनाए थे। पंजाब अभी भी 9 मैचों के बाद में 13 पॉइंट्स लेकर के टॉप पर है। गुजरात के पास में 10 मैचों के बाद में 12 पॉइंट्स हो गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स और राजस्थान रॉयल्स के पास में भी 12-12 पॉइंट्स है। आईपीएल पर जानकारी इंडेलिबल होम्स और चेजर्स की ओर से। एनआरएल पॉइंट्स टेबल पर पैंथर्स अभी भी टॉप पर कायम है। पैंथर्स ने कल हुए मैच में सी ईगल्स को 18-16 से हरा दिया है। पैंथर्स के पास में 9 मैचों के बाद में 16, वॉरियर्स दूसरे स्थान पर उसके पास 14 पॉइंट्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल को 3-2 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही मैनचेस्टर यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल पर तीसरे स्थान पर कायम है। टॉटनहम हॉटस्पर ने एस्टन विला को 2-1 से हराया, जबकि बेनमाउट की जीत क्रिस्टल पैलेस से 3-0 से हुई है। पॉइंट्स टेबल पर आर्सेनल 76, मैनचेस्टर सिटी 70, जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास में 64 पॉइंट्स है। और फिजी में जो प्रीमियर लीग मैच हुआ उसमें बाको गोविंद पार्क बा यानी कि अपने होम ग्राउंड में लंबासा के हाथों 2-1 से हार का सामना करना पड़ा।
6: Auckland and Wellington traffic report. Looking to make your brand heard during the busiest hours of the day.
4: ऑकलैंड में अगर आप नॉर्दर्न मोटरवे इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्सोलेशन ड्राइव से सिरी पहुंचने में लग रहे हैं आपको 38 मिनट, सिल्वरडेल से सिरी लग रहे हैं आपको 1 आवर प्लस, अगर आपको मैसी से सिरी जाना लगेंगे आपको 37 मिनट्स, मैनकाव से सिरी लग रहे हैं आपको 43 मिनट्स, ड्रूरी से सिटी लग रहा है आपको 1 आवर प्लस, एंड इफ यू गोइंग टू द एयरपोर्ट फ्रॉम ऑकलैंड सिटी 27 मिनट्स, वेलिंगटन स्टेट हाईवे 1 पुरीरोआ से सिटी सेंटर 47 मिनट्स, लेवन से सिटी सेंटर 1 आवर 14 मिनट्स, लोअर हट से सिटी 29 मिनट, अपर हट से सिटी 45 मिनट्स। नाउ इफ यू गोइंग टू द एयरपोर्ट फ्रॉम वेलिंगटन सिटी ओनली 19 मिनट्स। हाँ,
6: स्पॉन्सर रेडियो टिराना'स ट्रैफिक रिपोर्ट, वन ऑफ आर मोस्ट लिसन टू सेगमेंट्स ड्यूरिंग 6 AM to 9 AM एंड 3 PM.

0: जिलेश और संजेश आपका दिल बहलाने।
1: सुनिए मॉर्निंग बस सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 9 जिलेश और संजेश के साथ।
2: मॉर्निंग बस मॉर्निंग बस मॉर्निंग बस
3: शो का नाम है मॉर्निंग बस। मेरा नाम है जिलेश। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज तारीख क्या है वैसे? कंप्लीटली फॉरगॉट। इट इज द 4th of May। ओके, आज 4th of May का दिन है। न्यूजीलैंड के लिए कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्रंट से आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर कमिंग टुडे, क्योंकि जो देश के हमारे मेजर पॉलिटिशियंस हैं, लाइक बिग पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इज नॉट इन न्यूजीलैंड, ही इज इन सिंगापुर। वो एक फ्यूल डील साइन करना चाह रहे हैं। वैसे सिंगापुर, यू नो अबाउट सिंगापुर, मैंने रिसेंटली इसके बारे में जाना, न्यूजीलैंड इम्पोर्ट्स 30% ऑफ फ्यूल फ्रॉम सिंगापुर। यप, तो आप सिंगापुर पे हमारा रिलायंस देखिए। कोविड के वक्त आपने देखा होगा कि सिंगापुर और न्यूजीलैंड की तारीफ हो रही थी, बिकॉज सिंगापुर वॉज अनदर कंट्री इन द वे दे मैनेज्ड कोविड केसेस, एंड न्यूजीलैंड तो आप जानते ही हैं क्या हमारी वाहवाह हुई थी, क्या हा हा, न्यूजीलैंड तो क्या सेफ कंट्री एंड स्टफ लाइक दैट। सो वी आर ऑल्सो क्लोज टू सिंगापुर फॉर दैट एज अ रीजन। अभी वीकेंड में अगर आप लोगों ने स्पोर्टिंग इवेंट्स फॉलो किए होंगे, यू माइट हैव सी, आई थिंक नाउ वी आर एट अ पॉइंट कि ऑस्ट्रेलिया कभी जीत नहीं सकता न्यूजीलैंड से, एंड वी टॉकिंग अबाउट वॉरियर्स ऑब्वियसली, राइट? द गेम एंड द वे इट एंडेड, बॉय ओ बॉय, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, यू आर नाउ कॉन्फिडेंट, इफ स्पेशली फॉर वॉरियर फैंस, राइट? यू लाइक, वेल आई कैन बेसिकली क्लोज माई आईज एंड वॉच द गेम एंड बी श्योर दैट वी आर विनिंग। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कभी लाइफ में। डू नॉट फॉरगेट। गुड मॉर्निंग, इट्स 8 o'clock, इट्स एक्चुअली 11 past 8 in the morning। थैंक्स फॉर लिसनिंग।

0: ठंडा लखनऊ गर्म या ठंडा, रिलायंस वेंटिलेशन का हाजिर हो जाएगा बंदा। कॉल अस नाउ फॉर अ फ्री कोट ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन मेक्स
1: हैप्पी हेल्दी होम्स। चलो लेट्स गो।
2: बिल्कुल नहीं जाऊंगा।
1: अरे जाना जरूरी है, चलो।
2: मैं जाऊंगा, बट डेंटर के पास नहीं जाऊंगा।
1: बाबा, वी आर गोइंग टू डॉक्टर राजीव, जिनके पास 25 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, एंड ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू डेंटल केयर। और इनके यहाँ आजकल डेंटल क्लीन एंड पॉलिश पे स्पेशल्स भी चल रहे हैं फॉर जस्ट $120 टीज एंड सी सप्लाई एट 357 ग्रेट साउथ रोड, ओटाहू।
3: सालों से न्यूजीलैंड में डेंटल केयर में विश्वसनीय नाम डॉक्टर राजीव एट ओटाहू डेंटल केयर। फॉर अपॉइंटमेंट्स कॉल ऑन 0927675 64, that's 2767 564, or visit otahuhudental.co.nz.
4: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit AMI.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
5: Kick off the winter season with these winning deals from Rebel. Like 20% off all women's Puma, New Balance and Under Armour clothing and running shoes. And 20% off football, rugby and netball equipment. These deals and so much more are now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
6: The Daily Advantage. One small idea to make today better with Jalesh.
7: आज के Daily Advantage में एक ऐसा बता रहा हूँ जो काफी practical बात है, मतलब इसके लिए आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको मालूम है, बस आपसे होता नहीं है शायद। See, आपको ना आपके मोबाइल फोन में मैसेजेस सिर्फ एक सर्टेन टाइम पे, जैसे आप अपने आप को प्रॉमिस कर लो कि सुबह अगर 8 बजे या 7 बजे आप काम शुरू करते हैं तो एक बार लंच टाइम पे आप अपने मैसेजेस चेक करेंगे, पर्सनल मैसेजेस मोबाइल फोन में। एक बार दोपहर को 3 बजे कर लीजिए, और एक बार बस गाड़ी चलाने से पहले या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के पहले 3 बार। इससे क्या होता है, कॉन्स्टेंटली क्या है, कॉन्स्टेंटली जब आप अपना मोबाइल फोन चेक करते रहते हैं, हाँ किसने मैसेज किया, कहाँ व्हाट्सएप आया, कौन सा नोटिफिकेशन आया, इससे क्या होता है, इससे फ्रैगमेंटेड अटेंशन बिल्टअप होता है, और एक ऐसा नशा है जो आपको कॉन्स्टेंटली उसी तरफ खींचता रहेगा। एक बार आपको आदत हो गई ना हर 15 मिनट में फोन उठा के, कुछ आया नहीं आया बस देख लो, एक बार देख लो, ये जो देख लेने की आदत है ना, इट विल नॉट बी गुड फॉर यू मैन, आई एम टेलिंग यू, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मैं पहले ऐसा था, एंड नाउ आई एम लाइक ना आई थिंक आई चेक ट्वाइस अ डे नाउ, बट दैट्स अबाउट इट। और ये अच्छा कंट्रोल है, यू शुड बी एबल टू कंट्रोल हाउ मेनी टाइम्स यू एक्चुअली पिक अप योर फोन एंड चेक मैसेजेस। इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर योर वर्क प्लेस, एंड आई फील इट्स गुड फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंटायर नेशन, मैन। सो या

0: Attention New Zealand, it's Lotto NZ's biggest ever Mother's Day. Treat your mum to a triple dip and she could win one of 100 extra prizes of $30,000. Get Mother's Day sorted at your local Lotto NZ store. Prizes drawn May 16th. T's and C's apply.
1: Ghar banana start kiya hai. Ab to tension hi tension hai.
2: Oh. बिल्डर कौन है तुम्हारा?
1: अभी डिसाइड ही नहीं किया, सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं।
2: यार सिंपल है, केएमबी कंस्ट्रक्शन से बात करो।
1: क्या स्पेशल है उनमें?
2: अरे वो घर ऐसा बनाते हैं बिना स्ट्रेस, टाइम पे और बजट के अंदर। 18 सालों का एक्सपीरियंस है ऑकलैंड में और जो काम लेते हैं कंप्लीट करके ही देते हैं। भूपेंद्र कुमार को कॉल करो 021-874-871 पर या विजिट करो kmbconstruction.co.nz।
3: At Bunnings Trade, we've got your next build covered from foundation to finish. With our estimating and takeoff service, our team provides costings and calculated quantities, then partner with local suppliers to keep you covered throughout your build. Call us on 0800 134 872. Bunnings Trade.
4: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% and equity eligibility lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
5: This is Tarana News.
6: मेसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल स्पूनली का कहना है कि एक्ट की नई प्रस्तावित इमिग्रेशन पॉलिसी अस्पष्ट है। स्पूनली का कहना है कि इससे ब्यूरोक्रेसी बढ़ेगी और आबादी के एक बड़े हिस्से को नाराज करने का जोखिम पैदा करती है। एक लीडर डेविड सिमो ने कल अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव के लिए 6 सूत्रीय प्लान की घोषणा की है। इसमें टेम्परेरी वर्क वीजा पर देश आने वालों को $6 पे डे के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर से चार्ज भरना होगा। इसके साथ ही रेसिडेंस क्लास वीजा होल्डर्स के लिए 5 ईयर वेलफेयर स्टैंड डाउन पीरियड रखा जाएगा और ओवर स्टेज से निपटने के लिए एक एनफोर्समेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा। स्पूनली का कहना है कि देश में वर्कफोर्स के लिए न्यूजीलैंड माइग्रेंट्स पर निर्भर रहता है तथा इस तरह की पॉलिसी से माइग्रेंट्स को देश से दूर रखा जाएगा। फ्यूल सिक्योरिटी पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफ लक्सन सिंगापुर गए हुए हैं। व्यापार मंत्री टॉड मैकले और फाइनेंस मिनिस्टर निकोला वेलेस भी इस दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ में गई हुई हैं। दोनों देशों के बीच में सालाना रूप से $11 बिलियन का व्यापार होता है। सिंगापुर न्यूजीलैंड में सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। सिंगापुर का मुख्य व्यापार फ्यूल, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन और टेक है। वहीं न्यूजीलैंड बड़ी मात्रा में भोजन सामान सिंगापुर को सप्लाई करता है। इस दौरे पर सिंगापुर के साथ में फूड फॉर फ्यूल वाले समझौते को और मजबूत किया जा सकेगा। चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और बेस्टिलिटी मटेरियल अपने पास रखने के आरोप में 9 महीनों की होम डिटेंशन की सजा काट रहे पूर्व डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर जेवन मैक्स किमिंग को मिले सम्मान उनसे छीन लिए गए हैं। पिछले एक महीने से देश के 5 राज्यों में चुनावी माहौल बना हुआ था। 4 मई यानी कि आज इस लोकतांत्रिक त्यौहार का आखिरी दिन है। पिछले एक महीने में कौन किस पर भारी पड़ा और किसने कितनी रैलियां की इसका पूरा हिसाब होने वाला है। बता दें कि असम, केरल और पांडुचेरी में 9 अप्रैल को ही शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो गई थी। इसके बाद 23 अप्रैल को तमिलनाडु चुनाव संपन्न हुआ। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग पूरी हुई। इसके बाद में 29 अप्रैल को बंगाल की बाकी सीटों पर मतदान हुआ था। फिजी की अर्थव्यवस्था को अभी भी इनवर्ड रेमिटेंस से

0: काफी लाभ मिल रहा है। इस साल फरवरी में 274.2 मिलियन डॉलर्स लोगों ने अपने रिश्तेदारों के पास फिजी में रेमिटेंस के रूप में भेजा। आउटवर्ड रेमिटेंस 110 मिलियन डॉलर्स का रहा है। फिजी में आजकल कई बांग्लादेशी नागरिक फिजी जाकर काम करते हैं तथा वे रेमिटेंस अपने देश वापस भेज रहे हैं।
1: पैसिफिक में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजे डीजी सेल का $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या करे कैश ट्रांसफर $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ और जीते एक्साइटिंग प्राइजेस।
0: रास्ते पर इस वक्त सदर्न मोटरवे मैनकाउस से एटलीस्ट 47, मेसी से 35, नॉर्दर्न पर कॉन्स्टोलेशन ड्राइव से 35, टू दी एयरपोर्ट 27, वेलिंगटन में पोरीरुआ सिटी सेंटर से 47, लेविन से एन आवर 10, लवाहट से 28, अपाहट से 44, टू दी एयरपोर्ट 19 मिनट्स।
1: बी इन द ड्रॉ टू विन वन ऑफ 15 $500 कैश प्राइजेस दिस मदर्स डे विद डिजी सेल। तो भेजे $20 का टॉप अप या $300 कैश टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक।

0: हर तरह का इलाज करवा के देख लिया, पर ये बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही।
1: तो डॉक्टर अजीत के पास गई, उनके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर देखो।
0: आयुर्वेदिक वो काम करता है?
1: बिल्कुल, डॉक्टर अजीत पिछले 4 दशक से उन बीमारियों का स्थायी इलाज कर रहे हैं जिनसे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी।
0: पर यह सुरक्षित तो है ना?
1: सिर्फ सुरक्षित नहीं, यह तो आपकी पूरी लाइफस्टाइल को सेहतमंद बना देता है।
2: कंसल्टेशन एंड अपॉइंटमेंट्स के लिए डॉक्टर अजीत को आज ही कॉल करें 09303-0065 पे या विजिट 465 पानल रोड पानल, वेबसाइट ayurveda.com।
3: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल प्रोजेक्ट।
2: ये होगा संडे 17th मई को 11 AM टू 4 PM
3: 378 आरारीमू रोड रामा साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर्स, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ।
2: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर।
3: One temple, one community, eternal blessings.
4: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
5: Right now at Guthrie Vowron, enjoy free curtain making on thousands of quality fabrics. Take 15% off selected blinds, shutters and motorization. Plus receive a free in-home measuring quote. Cozy up your home in time for the cooler months. Guthrie Vowron, inspiration starts here.
6: Everyday Explained, why everyday things work the way they do, with Jalesh.
7: ये सवाल हमेशा से मेरे दिमाग में था लेकिन मैंने सोचा नहीं था कभी इसके बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। सी, जैसे आप इमेजिन कीजिए कि एक नॉर्मल रोड है, ठीक है? सो यू आर ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 80 km/h बिकॉज दैट इज व्हाट द रोड अलाउज यू। सो 80 km/h गोइंग गोइंग गोइंग गोइंग और फिर एक ब्रिज आता है, तो सीधा रोड है, एक ब्रिज आया। एज सून एज द ब्रिज कम्स, 80 km की स्पीड लिमिट ऑल ऑफ अ सडन 50 km की हो गई जस्ट ऑन द ब्रिज। एंड देन यू आर वंडरिंग क्या सेम रोड है, व्हाट्स द डिफरेंस? अभी तक मैं 80 पे जा रहा था, अब ये मुझे क्यों कह रहे हैं कि 50 km/h पे जाओ? एनी गेसेस? ब्रिजेस जो होते हैं दे आर मोर सेंसिटिव टू वाइब्रेशन एंड लोड स्ट्रेस। लोअर स्पीड लिमिट जो है वो रिड्यूस करता है डायनेमिक फोर्स को, समझ रहे हैं आप? इसीलिए जब भी कोई ब्रिज आता है वहां स्पीड लिमिट एकदम से ड्रॉप हो जाती है। इट्स नॉट बिकॉज वो चाहते हैं कि आपकी स्पीड वो ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, इट्स फॉर दी ओवरऑल सेफ्टी ऑफ एवरी वन। लेकिन जैसे जो भी सस्पेंशन ब्रिजेस होंगे ना, जैसे कि न्यूयॉर्क में बहुत सारे ब्रिजेस सस्पेंशन ब्रिजेस है, वो उसको क्यों बनाते हैं? क्योंकि किसी ड्राइवर की रेगुलर स्पीड को वो तोड़ना नहीं चाहते, तो सस्पेंशन ब्रिज जो होता है वो मोर और लेस सेम स्पीड को मेंटेन रख सकता है। लेकिन जो प्रॉपर सीमेंट से बने हुए ब्रिजेस होते हैं उसमें स्पीड लिमिट कम करनी पड़ती है। सो नेक्स्ट टाइम यू एवर गो थ्रू अ ब्रिज यू शुड नो दिस लॉजिक।

हमें ऐसे लगा जेन्युइनली आपको मंडे मॉर्निंग को थोड़ा जगाने के लिए ये गाना अच्छा रहेगा. इट्स अ एनर्जेटिक सॉन्ग, राइट? यू लाइक इट एंड दैट इज व्हाई वी प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू. आप लोगों ने हमारा आज का शो सुना, उस बात के लिए आपका शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. इट्स ओनली अ मंडे, आई नो. अच्छा, कल का हमारा शो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग अस कि ऑकलैंड में रेडियो सेट्स पे वापस रेडियो तराना कब से सुनाई देना शुरू करेगा. इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन. सी, इसका जवाब मैं आपको श्योरिटी से तो नहीं दे सकता, लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड, आई हैव अ फीलिंग ईदर बाय वेंसडे इवनिंग और बाय थर्सडे मॉर्निंग एवरीथिंग शुड स्टार्ट वर्किंग एज नॉर्मल. नाउ दैट्स माय फीलिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड. एंड इफ नॉट, मुझे ऐसा लगता है फ्राइडे से तो हो ही जाएगा यार, इस फ्राइडे से. सो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बता देना कि, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद रोवा वगैरह डाउनलोड नहीं किया, राइट? तो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनको मालूम हो दैट इट शुड स्टार्ट वर्किंग दिस वीक सम टाइम. हाँ, आपको बताएंगे ऑब्वियसली रेडियो पे, जैसे अनाउंस करेंगे कि यार एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल नाउ, यू कैन लिसन टू अ शो. सो दैट विल हैपन एज वेल. नाउ बिफोर आई लीव फ्रॉम हियर, मैं आपको एक बड़ा कमाल का गाना सुना के जाने वाला हूँ. दिस सॉन्ग, हैव यू एवर हर्ड दिस सॉन्ग? सुनो इसे. नाइस सॉन्ग, राइट? वो रणबीर कपूर की मूवी आई थी, मूवी का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी, ये गाना उसी फिल्म से है. एंड देन द लास्ट सॉन्ग ऑफ द आवर इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, इट्स दिस वन हियर. इस गाने को चलाए हुए एक जमाना हो गया, लेकिन क्योंकि हम रेडियो पे समीर सेन के गाने चला रहे हैं, विच इज वाई विल ऑल्सो प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू. सो ऑल ऑफ दैट इज कमिंग फॉर यू ऑन रेडियो शो बिटवीन नाउ एंड 9 o'clock. You take care of yourself. Bye-bye and have a beautiful day ahead.

0: कौन?
1: मैं यमराज हूँ।
0: ओहो, जय हो महाराज। लेने आए हो तो चलो।
1: कमाल है, जाने की इतनी जल्दी?
0: हाँ, मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक, और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है। ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है।
1: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में बांटना चाहिए।
0: ओके, थैंक यू महाराज, मैं बांटता हूँ ये ज्ञान। सभी को कॉल करना चाहिए ग्लोबल फाइनेंस को 09255-5500 पर।
2: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
3: Join the Great Big Balance Check at New World. Whether it's treating yourself to a chocky bar or treating the whole fam to dinner, you could have New World dollars waiting to spend. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
4: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
5: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक हैं म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन।
6: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन। नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871 पर।

0: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
1: रेडियो तराना की घड़ी सुबह के 9 बजा चुकी है.
2: This is तराना News.
3: समाचार सुनिए संजेश नारायण से. प्रधानमंत्री द्वारा अपने कॉलिशन पार्टनर पर राजनीति करने का आरोप लगाने के बावजूद नेशनल पार्टी के एक सीनियर मिनिस्टर ने कहा है कि कॉलिशन या गठबंधन बहुत अच्छा काम कर रहा है. ये टिप्पणियां विदेश मंत्री विंस्टन पीरस के कार्यालय द्वारा जारी किए गए उन ईमेल से संबंधित है जिनमें ईरान पर अमरीकी हमलों पर न्यूजीलैंड के रुख पर चर्चा की गई थी. पीरस ने बाद में कहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय को इसकी सूचना न देना एक गलती थी. नेशनल पार्टी के कैंपेन चेयरपर्सन सिमन ब्राउन ने एक इंटरव्यू में कहा कि नेशनल पार्टी 7 नवंबर को होने वाले चुनाव में अपने वोटों को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. इस बीच ब्राउन ने कहा कि गठबंधन या कॉलिशन बहुत अच्छा काम कर रहा है और तीनों पार्टियां न्यूजीलैंड वासियों को गठबंधन समझौतों को लागू करने के लिए मिलकर काम कर रही है. ईरान युद्ध खत्म करने के लिए अमरीका के प्रस्ताव पर गौर कर रहा है, लेकिन ईरान ने कहा है कि इस प्रस्ताव में न्यूक्लियर प्रोग्राम को शामिल नहीं किया गया है. अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर वेपन तैयार करे और वह अपने यूरेनियम भंडार को यूएस को दे दे. ईरान के प्रस्ताव के मुताबिक वह 30 दिनों के अंदर सभी मुद्दों को सुलझाना चाहता है तथा वह युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने का प्रस्ताव रख रहा है, न कि सीज़फ़ायर को बढ़ाने का. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कल एक और जहाज पर हमला हुआ. बल्क खेरिया को कई छोटी नावों से निशाना बनाया गया. हालांकि राहत भरी बात यह रही है कि इस हमले में क्रू सुरक्षित बताए गए हैं. ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास में एक बल्क कैरियर ने कई छोटी नावों द्वारा हमला किए जाने की जानकारी दी है. टीचर्स जो म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री पढ़ाते हैं ड्राफ्ट कैरिकुलम से खुश नहीं है. जो सबमिशंस पेश किए गए हैं उसके तहत म्यूजिक कैरिकुलम अनटीचेबल बताया गया है. साइंस क्लासेस ओवरक्राउडेड होंगे जबकि फिजिकल एजुकेशन कैरिकुलम को पूरी तरह से रीराइट करने की मांग की जा रही है. इसके साथ ही टीचर्स ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि ड्रामा और डांस कैरिकुलम को एक साथ लाने का फैसला किया गया है. मेसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल स्पूनली का कहना है कि एक्ट की नई प्रस्तावित इमिग्रेशन पॉलिसी अस्पष्ट है. स्पूनली का कहना है कि इससे ब्यूरोक्रेसी बढ़ेगी और आबादी के एक बड़े हिस्से को नाराज करने का जोखिम पैदा करती है. एक लीडर डेविड सिमो ने कल अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव के लिए 6 सूत्रीय प्लान की घोषणा की है. इसमें टेम्पररी वर्क वीजा पर देश आने वालों को $6 पे डे के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर से चार्ज भरना होगा. इसके साथ ही रेसिडेंस क्लास वीजा होल्डर्स के लिए 5-year वेलफेयर स्टैंड डाउन पीरियड रखा जाएगा और ओवरस्टेज से निपटने के लिए एक एनफोर्समेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा. स्पूनली का कहना है कि देश में वर्कफोर्स के लिए न्यूजीलैंड माइग्रेंट्स पर निर्भर रहता है तथा इस तरह की पॉलिसी से माइग्रेंट्स को देश से दूर रखा जाएगा. बाको प्रीमियर लीग मैच में हराने के बाद में लंबासा फुटबॉल क्लब एक्स्ट्रा प्रीमियर लीग पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर चली गई है. लंबासा ने कल गोविंद पार्क बा में हुए मैच में बाको 2-1 से हरा दिया. दोनों के पास में 14 पॉइंट्स है लेकिन गोल डिफरेंस पर लंबासा आगे है. कल वाले एक अन्य मैच में लोटोका ने ननरोंगा को 3-2 से हराया. नसीनो ने नैनी को 2-1 से पराजित किया जबकि नावुआ ने तालिबु ने तसीरी को 4-1 से हरा दिया है. लम्बासा 14, बा 14, रेवा 13, लोटोका 13, सुवा 11, नसीनो के पास 10, नैनी के पास में 7 पॉइंट.
1: जागोरे कम लाइफ का आयोजन किया गया है पास्ता अनिल और रीना कान द्वारा. ये हिल्स चर्च 179 हिल्सबरा रोड में होने जा रहा है 9 मई को शाम को 6 बजे से. और जानकारी के लिए आप 0211017959 पर संपर्क कर सकते हैं. पुलिस रिक्रूटमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया है शनिवार 23 मई को सुबह 9:30 से दिन में 12 बजे तक फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर 546 माउंट एल्बर्ट रोड 3 किंग्स में. श्री वेंकटेश्वरा देवास्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भोजन मेला होने जा रहा है रविवार 17 मई की सुबह 11 से शाम को 4 बजे तक 378 आररीमू रोड रामारामा में. एंट्री बिल्कुल ही फ्री है.
4: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tire pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
5: जब बात होती है पर्दों की तो नाम आता है डी कैरोल कर्टन्स का, जो कर्टन्स के साथ साथ स्पेशलाइज करते हैं इन सन फिल्टर रोलर ब्लाइंड्स, जो दिन में दे सही लाइट और यूवी रे से प्रोटेक्शन और नाइट में दे कंप्लीट प्राइवेसी। इनके सभी ड्रेप्स एंड कर्टन्स आते हैं विद फ्री लाइनिंग, प्लस तराना का नाम मेंशन करने पर 20% का डिस्काउंट। कम एंड मीट देयर फ्रेंडली टीम एट 19 मॉर्निंग साइड ड्राइव, माउंट एल्बर्ट। फोन 09815-3811। डी कैरोल कर्टन्स।
6: कानून तोड़ दिया, अब तो तू बेटा क्रिमिनल हो गया।
7: तुम पे बहुत तरस आता है यार, पर पुलिस का मामला है तो।
6: डरो मत, गलती कभी कभी हो ही जाती है और कानूनी गलती हो जाने पर एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। गुल लॉ लीगल सर्विसेज फाउंडर मिस्टर गुल के पास लॉ के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक्सपीरियंस है। वो आपको सलाह ही नहीं देंगे बल्कि आपकी सिचुएशन को समझेंगे भी। कॉल टुडे ऑन 0223530872 और विजिट gullaw.co.nz।
8: At Woolworths, whether it's a Sunday roast or midweek wraps, we've got chicken for every occasion. Now you can grab our fresh chicken thighs, bone in, skin on special for just $5.90 a kg. That's the fresh food feeling. At Woolworths, T's and C's apply.
9: ऐसा लगता है कि दूर किसी पुराने जमाने की पगडंडी पर कोई मुसाफिर बहुत सारी स्मृतियां एक बोरी में डाले खड़ा सुबह 9 का इंतजार कर रहा है, और जैसे ही घड़ी टन से 9 बजाती है, मुसाफिर बोरियों को खोलता है और ब्लैक एंड व्हाइट तराने की झनकार सारी घर में फैल जाती है।
1: दोस्तों, इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसे भी सितारे चमके जो बहुत ही अंडररेटेड थे, जिन्होंने अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ किया, बगैर बहुत ज़्यादा ड्रामा डाले अपने किरदार को बहुत ही सादगी के साथ पर्दे पर ले करके आए और किसी भी फ्रेम को बहुत ही खूबसूरत बनाया। लेकिन फिर भी उनके चर्चे बहुत ही कम हुए, उनकी बातें बहुत ही कम हुई, काम भी उनको कम मिले, लेकिन जब भी उनके नाम का जिक्र आता है तो आंखें बड़े ही सम्मान के साथ में उनके आदर में झुक जाती है। ऐसी ही अपने ज़माने की एक एक्ट्रेस थी जिनका नाम था आशा माथुर, और आज आशा माथुर जी ही हमारी और आपकी मेहमान हैं। आशा माथुर जी के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारियां नहीं मिलेगी, पता नहीं क्यों उनके ऊपर कुछ खास लिखा नहीं गया था, हालांकि उन्होंने फिल्मों में तो बहुत सारे काम किए थे। तो आशा माथुर की एक फिल्म का एक पहला गाना आपको सुनाते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी की और भी बातें करेंगे।

0: Chemist Warehouse has now opened in Fangaparoa. Find the new Chemist Warehouse in Fangaparoa next to the Coast Shopping Mall.
1: With the biggest range of all your health and beauty essentials at the lowest prices, they've got everything you need to look and feel your best. They're open 7 days a week from early till late, including public holidays. If you can't make it in-store, shop online 24/7. Chemist Warehouse, great savings every day.
2: If your business needs a boost, a push in the right direction, or some shouter to get you through, KiwiBank can help with Fast Capital, the digital loan application with real-time decisions. It's the fuel for your rocket, the wind in your sails, and an umbrella in the rain that allows you to grow, expand, or provide a buffer for your business. Search KiwiBank Fast Capital to apply online today. This is Kiwi. Eligibility criteria, lending criteria, T's and C's and fees apply.
3: Craving हो रही है उस thick और creamy दही की जो घर पे मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको Kashish Natural Yogurt से, जिसका हर spoon है एकदम delightful. 100% vegetarian, gelatin free and gluten free. Smoothies बनानी हो या marination masala या बस सीधा tub से खाने का दिल हो, तो enjoy करें Kashish Natural Yogurt, क्योंकि ये है naturally delicious. Available at all Indian supermarkets across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish Natural Yogurt. Saturday 9th May ko Radio Tarana ki team aapko shopping karwane wali hai in NZ Beds, Manukau Supercenter store. Aur exclusively us weekend in-store deals ke alawa, you will receive a free pillow with every purchase made of any bed. Trade-in options bhi available hain aur aapko free local delivery bhi mil sakti hai. T's and C's apply. NZ Beds with 40 years in business and thousands of happy customers, ये आपको देंगे guaranteed best price. और 9th May को मिलते हैं इनके Manukau Super Center वाले store में, at the corner of Lambie Drive and Cavendish Drive.
4: Black and White तराने सुनने वालों, ले गए ना हम आपको आपकी पुरानी सपनों की नगरी में. एक एक गाना उन दिनों के थिएटर्स की याद दिलाता है, ट्रांजिस्टर रेडियो की याद दिलाते हैं. ये यादें बड़ी ही प्यारी हैं, दिल को गुदगुदाने वाली हैं. इन्हें गानों के साथ आपको सुनाया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट तराने में.
5: आशा माथुर एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती थी. जमाना वो था कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में अब कलर्स की तरफ मोड़ ले रही थी, और इसी मोड में आशा माथुर जी के दिल में भी उमंगे जाग रही थी कि वो भी फिल्मों की तरफ अपने कदम को बढ़ाना चाहती हैं. आशा माथुर जी बहुत ही मासूम चेहरे वाली इंसान थी. बहुत ही छोटी उम्र से उनको डांस और एक्टिंग का बहुत ही बड़ा शौक हुआ करता था. बस इसके चलते वो लोगों के दिल सिल्वर स्क्रीन के लिए के जरिए बहलाने के लिए तैयार हो गई. उनका स्टेज प्रेजेंस, उनकी मासूमियत, उनकी खूबसूरती, उनका किसी भी किरदार में बहुत ज़्यादा ड्रामा ना डाल करके नोटेबल प्रेजेंस रखना, ये उनकी खास बात थी. 1950s और 1960s के दौर में आशा माथुर जी ने कई लोगों का दिल अपनी खूबसूरती और अच्छे किरदार के जरिए बहलाया.
6: कौन करता दोस्तों दुनिया में शायर की कदर, मोरी कदर नहीं.

0: to share.
1: If you're out there working hard, it's time to put down the tools and pick up a pie. Just head into your nearest Zed and show your Zed Business fuel card to get $1 off any pie. Now that's worth going to work for. Ends 25 May while stocks last.
2: घर को स्वस्थ रखने के लिए अपने बेड शीट्स और पिलो केसेस को हर 7 से 10 दिन में जरूर धोएं ताकि डस्ट, माइट्स और एलर्जीज दूर रहें। आप चिंता मत करो, ये काम स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रॉस स्किल को सौंप दो। यहाँ आपको 24/7 सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट या फिर आप अपने कपड़े यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ की टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको कपड़े दे देंगे। स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 स्टोरार्ड रोड मॉन्ट्रॉस्को, आसान, भरोसेमंद और 24/7।
3: राइट नाउ एट वूलवर्थ्स कलेक्ट डबल बोनस पॉइंट्स ऑन एवरी $50 शॉप, प्लस बूस्ट योर बजट एंड कलेक्ट 10 टाइम्स पॉइंट्स ऑन सम ऑफ योर फेवरेट ब्रांड्स। बूस्ट इन द ऐप, शॉप इन स्टोर, ऑनलाइन एंड स्कैन योर एवरीडे रिवॉर्ड्स कार्ड एट चेकआउट बिफोर संडे 10th ऑफ मई।
4: अक्सर पुरानी फिल्मों के सिर्फ सबसे सुपर हिट गाने ही सुनने को मिलते हैं, इसी चक्कर में थोड़े से कम हिट गाने भुला दिए जाते हैं। उन्हीं भूली बिसरी यादों को हम ताजा करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट तराने में।
2: बात दरअसल ये है कि आशा माथुर जी को मेन स्ट्रीम में कभी भी ऐसा कोई रिकग्निशन ही नहीं मिला। उनके नाम के बारे में भी लोगों को बहुत पता नहीं है, लेकिन हमारे साथी मगन डाया ने उनकी खूबसूरत फिल्मों के इतने अच्छे अच्छे नगमे जो चुने हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। कभी भी उन्होंने अपने किरदार में बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश नहीं की। उनके सादेपन और उनके इमोशंस को वो जिस तरह से लेकर आती थी अपने अदायगी के ज़रिए, मानने वाले ये बात ज़रूर मानेंगे कि एक अच्छे किरदार के लिए, खासतौर पर एक फीमेल आर्टिस्ट के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप में ग्लैमर ही हो। आपकी सादगी भी आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है।

0: It's nesting season at Freedom. Save up to 50% off selected sofas, including fabric and leather sofas, modulars and recliners. Enjoy more comfort for less this nesting season. Only at Freedom.
1: Getting the right heater for your room can make a real difference this winter. The right size, type and placement all affect how comfortable you feel without using more energy than you need. Search EECA, that's EECA, get winter ready.
2: It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
3: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर स्टोर जहां पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर
4: वो रिकॉर्ड्स जिन पर शायद धूल बैठ गई थी पर उन पर खरोच न आने दी हमने तभी तो वो LP वाले गाने आज भी बगैर किसी दिक्कत के ब्लैक एंड व्हाइट तराने में सुन रहे हैं आप अक्सर पुरानी फिल्मों के सिर्फ सबसे सुपर हिट गाने ही सुनने को मिलते हैं इसी चक्कर में थोड़े से कम हिट गाने भुला दिए जाते हैं उन्हीं भूली बिसरी यादों को हम ताजा करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट तराने में
5: ब्लैक एंड व्हाइट तराने में आज आशा माथुर एक्ट्रेस आशा माथुर को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं 21 नवंबर 1934 को इनका जन्म हुआ और ये एक भुला दिया गया नाम है एक भुला दिया गया चेहरा है कुछ एक गाना जो काली घटा का 1951 की बनाई गई फिल्म हमसे ना पूछो कोई प्यार क्या है इस गाने के लिए वो जानी जाती है या 1955 की फिल्म अमानत का बाकी अदाएं देखी ना जाए देखना ये गाने के लिए वो जानी जाती है आशा माथुर को उनके लीड रोल में 1954 की फिल्म मयूर पंख या 1955 की फिल्म लाखों में एक या 1955 की नकाब के लिए ही जाना जाता है ये इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड वुमेन में से एक है उन्होंने BA किया था और BA की पढ़ाई की थी उस जमाने में आशा माथुर और बीना रॉय दोनों को इंट्रोड्यूस किया था फिल्म इंडस्ट्री में किशोर साहू ने फिल्म थी 1951 की काली घटा जबकि बीना रॉय इनको ये ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी और उन्होंने कुछ बड़ी फिल्मों में काम किया जैसे 1953 की अनारकली या 1963 की ताजमहल वहीं पर आशा माथुर जी ज़्यादातर माइथोलॉजिकल फिल्मों में थी या कॉस्ट्यूम फिल्म जैसे कि आलिफ लैला 1953 की राजयोगी भारतरी 1954 की मलका ए आलम नूर जहां 1954 की अमर कीर्तन 1954 की इन द लिस्ट गोज ऑन लेकिन ये फिल्में कुछ खास बड़ी फिल्में नहीं थी ना ही बड़ी बजट की फिल्म थी और ना ही इन फिल्मों में कोई खास कमाई की थी या नाम कमाया था हाँ उनके परफॉर्मेंसेस इस फिल्म में कमाल की थी जिसकी वजह से आज भी हम इस प्रोग्राम के जरिए उनको रिकग्निशन दे रहे हैं उनका वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल रोल जिसमें उनकी अदायगी की तारीफ की जाती है वो थी 1954 की फिल्म पूनम ये अशोक कुमार जी की पत्नी होती है जो सफा कर रही होती है अपनी शादीशुदा जिंदगी में आशा माथुर जी की शादी एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर के साथ में हुई थी मोहन सहगल जी जो इस शादी के बाद में इस इंडस्ट्री से निकल गई दो बच्चे हैं इनके दीपक सहगल और ये फिल्म के एडिटर है दीपक सहगल और दूसरा बेटा है उमा सहगल इन्होंने भी कुछ अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए तैयार की है जिसकी वजह से उनका बेटा भी इस इंडस्ट्री में जाना जाता है आशा माथुर के बच्चे शायद मोर पॉपुलर है जो उन्होंने एक्टिंग नहीं की लेकिन मोर पॉपुलर है देन हर इन द इंडस्ट्री

0: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora. Buy two full price pieces and receive a third one free, just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May, in store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply.
1: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
2: Yaar, mujhe Fiji jana tha.
3: Kab jana hai?
2: December ki chuttiyan ho jaye tab jayenge.
3: Rental sort out kar liya?
2: Nahi yaar, nahi mila kuch.
3: I think you should contact Coastal Rental Cars. Inke paas family cars, SUVs aur sabhi luxurious gaadiyan hain aur gaadiyan achhi conditions mein.
4: Coastal Rental Cars. Visit coastalrentalcars.com.fj or for bookings call on 00679-652-0228.
3: Explore Fiji the coastal way.
5: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर स्टोर जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर
6: ब्लैक एंड व्हाइट तराने की बात ही कुछ और है वो नगमे जो कहीं खो गए थे तराना उन्हें ढूंढ कर लाया है इस प्रोग्राम को सजाने के लिए
7: आशा माथुर जी के ऊपर प्रोग्राम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा कल के नगमे भी बड़े ही बेमिसाल हैं आपको सुनाऊं

0: और अगर वक्त रहा तो ये गाना भी शामिल करेंगे।
1: Anyway,

0: Rana.
1: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
2: सुबह के 10 बजे हैं.
3: This is Tarana News.
4: समाचार सुनिए संजेश नारायण से. 6 स्कूलों में फैसिलिटी अपग्रेड्स के लिए सरकार ने 56.6 मिलियन डॉलर्स की राशि देने की अनाउंसमेंट की है. यह अनाउंसमेंट आज एजुकेशन मिनिस्टर एरिका स्टैनफोर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर क्रिस बिशप ने की है. ये पैसे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की ओर जो 2 बिलियन डॉलर्स दिए गए हैं उसमें से दिए जाएंगे. जिन 6 स्कूलों को ये राशि दी जाएगी उनमें नॉर्थलैंड के कैरीकेरी हायर स्कूल, जहां पर 12 रिप्लेसमेंट क्लासरूम्स का निर्माण किया जाएगा, ब्राउन्स बे में पाइन हिल स्कूल जहां पर 3 रिप्लेसमेंट क्लासरूम्स का निर्माण किया जाएगा, वेलिंगटन के हट इंटरमीडिएट में 14 क्लासरूम्स का निर्माण किया जाएगा, नेटोने पार्क स्कूल वेलिंगटन में 7 नए क्लासरूम्स का निर्माण किया जाएगा, कैंटरबरी के एशबेटन इंटरमीडिएट में 8 नए रिप्लेसमेंट क्लासरूम्स का निर्माण किया जाएगा, जबकि साउथलैंड के मोरोवा वाई कॉलेज में 8 नए क्लासरूम्स का निर्माण किया जाना है. इन स्कूलों में काम अगले 6 महीनों में शुरू होगा. एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर डेविड सीमो का कहना है कि ईरान युद्ध के बीच में कीमतों में वृद्धि एक कठिन वास्तविकता यानी कि रियलिटी है और न्यूजीलैंड को इससे यथासंभव बेहतर तरीके से निपटना होगा. उनकी यह टिप्पणी उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें कहा गया है कि एनर्जी की बढ़ती लागत के कारण से शिपिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मास्क ने न्यूजीलैंड के भीतर इंपोर्ट वस्तुओं के लिए लैंड ट्रांसपोर्ट पर 27% फ्यूल से चार्ज लागू कर रहा है. डेविड सीमो का कहना है कि दुर्भाग्य से पूरी अर्थव्यवस्था में लोगों को इसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में माइटेन ने घोषणा की है कि प्लास्टिक गटरिंग मेकर माली ने अपने प्राइसेस को 20% से बढ़ा दिया है. क्राइस्टचर्च में चाकू से धमकाने के बाद में एक व्यक्ति की गाड़ी छीनने के आरोप में 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है कि कल लिनवुड के बाकली रोड पर 7:50 PM यह घटना घटी. चोरी की गाड़ी कल 9:25 PM देखे जाने के बाद में रोड स्पाइक काम में ला करके उसे रोका गया. पुलिस का कहना है कि कुछ दूर तक चोरी की गाड़ी का पीछा करने के बाद में बेन साइड में इस गाड़ी को रोका जा सका है. 5 युवकों पर कई चार्जेस लगाए गए हैं. घरों में लोहे के ग्रिल और प्लास्टिक की जालियां सुरक्षा और सुविधा के खातिर लगाई जाती है, लेकिन दिल्ली के विवेक विहार में हुए अग्निकांड में यही ग्रिल और जालियां मौत का जंजाल साबित हुई है. इनके कारण लोगों को भीषण आग से भागने का रास्ता नहीं मिला और वो जिंदा जलकर मर गए. काफी मशक्कत के बाद में दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंच करके ग्रिल काट करके कुछ लोगों को बाहर निकाले, लेकिन घर के पीछे की तरफ गलियां और बंद रास्ते रेस्क्यू अभियान में लगातार रुकावटें पैदा करते रहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में महज चंद ही घंटे का समय अब बचा है. 4 मई को लगभग दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी कि बंगाल में अगली सरकार किसकी बन रही है. क्या ममता बनर्जी चौथी बार वापस सत्ता में आ रही है या फिर भाजपा पहली बार जीत दर्ज करेगी. ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने भाजपा की जीत का दावा किया है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने अपना पोल जारी नहीं किया है. एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने एग्जिट पोल न जारी करने की वजह बताते हुए कहा कि लगभग 70% वोटर्स ने सर्वे करने गए लोगों से बात करने से मना कर दिया. नसीनू में लंगेरे ब्रिज पर पुलिस रोड ब्लॉक पर गाड़ी न रोकने और एक पुलिस ऑफिसर को टक्कर मारने के आरोप लगे 3 में से एक आरोपी को आज नसीनू मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश किया जाएगा. तीनों उस गाड़ी में सफर कर रहे थे जिन्हें पुलिस चेक पॉइंट पर गाड़ी रोकने के लिए कहा गया था. उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी. पुलिस का कहना है कि 40 वर्षीय संदिग्ध को घटना में चोट लगी थी, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और आज नसीनू मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश किया जाएगा, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं. इस बीच जिस महिला पुलिस ऑफिसर को चोट लगी थी उनका इलाज अभी भी किया जा रहा है. समझा जा रहा है कि जिस गाड़ी से उन्हें टक्कर मारी गई उसमें ड्रग्स लेकर जाया जा रहा था. महिला पुलिस ऑफिसर मिनिस्टर फॉर डिफेंस पीओ तिकुंदुवंदुआ की बेटी बताई गई है. वुमेन्स ए लीग मुकाबले में वेलिंगटन को पहले लेग के सेमीफाइनल मैच में ब्रिस्बेन रोवा से उसके होम ग्राउंड में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा. अब ब्रिटेन सेमीफाइनल मैच इसी रविवार को 2:30 बजे से वेलिंगटन के पुरेरोवा में खेला जाएगा. इस बीच ऑकलैंड FC ने एलिमिनेशन फाइनल मैच में मेलबर्न सिटी को पेनल्टी शूटआउट में 7-6 से हरा दिया. फुल टाइम एक्स्ट्रा टाइम तक मैच 1-1 गोल से बराबर था. अब सेमीफाइनल में ऑकलैंड FC का सामना एडिलेड यूनाइटेड से इसी शनिवार को होगा.
0: Chemist Warehouse has now opened in Fangaparoa. Find the new Chemist Warehouse in Fangaparoa next to the Coast Shopping Mall.
5: With the biggest range of all your health and beauty essentials at the lowest prices. They've got everything you need to look and feel your best. They are open 7 days a week from early till late, including public holidays. If you can't make it in-store, shop online 24/7. Chemist Warehouse, great savings every day.
6: अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ. मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड ब्रेथटेकिंग फोटोग्राफ्स. दे ऑफर डीजे वेडिंग वीडियो एंड फोटो पैकेजेस फ्रॉम ड्रोन एंड गिम्बल शॉट्स टू 4K वीडियो शूटिंग फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर और मैसिव वेडिंग. कॉन्टैक्ट मल्टी डीजे.
7: विद ऑल लेटेस्ट इक्विपमेंट दे ऑल्सो ऑफर इजी पेमेंट ऑप्शंस. कॉन्टैक्ट डीजे दिनेश, फोन नंबर 0210584711. Yes, sir.

Balajeshni today on 02196-1386 for sales on Tarana. So yaad rakhna, number ghumana, 02196-1386 for advertising on Radio Tarana. इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $1,500 कैश प्राइज तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश T's and C's apply.

रिश्ते को, ना लाइटर नोट, रिश्ते को बचाने के लिए और कभी कभी बहस में ना पड़ने के लिए आपको यारो ऐसा करना पड़ता है। अब क्या ही कर सकता है इंसान। तो किसी ने लिखा है कि मौजूदा हालत में यदि रिश्ते बचाने हैं तो कभी किसी से बहस नहीं करें। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उसे बताए, हाँ आज सुबह हमारे घर की तार पर उड़कर हाथी आकर बैठा था।

0: अब यहाँ न्यूजीलैंड में फिलहाल चर्चा का ये विषय बना हुआ है कि क्या न्यूजीलैंड को यूएस का साथ देना चाहिए स्ट्रेट ऑफ होमूस को खोलने के लिए या नहीं। इसमें लड़ाई में शामिल होने की कोई बात नहीं है, हालांकि इनडायरेक्टली लड़ाई में शामिल हो ही जाएगा कोई देश अगर इसमें शामिल होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने न्यूजीलैंड को इनवाइट किया है कि वो यूएस लेड कॉलिशन को ज्वाइन करे मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जिसके तहत पहला काम ये होगा कि स्ट्रेट ऑफ होमूज को खोला जाए। हम अक्सर न्यूजीलैंड में ऐसा होता है कि हम किसी के फटे में टांग नहीं उड़ाना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी मदद हर कोई करे। जब खुशी का वक्त हो तो हम हाथ बढ़ा करके सब कुछ ले ले, और जब मुसीबत का वक्त आए तो हाथ खड़े करके कह दे हम बड़े ही शांतिपूर्ण देश हैं, हम इन सब चीज़ों में अपना टांग नहीं अड़ाता। ये गलत है, क्योंकि इस तरह के एटीट्यूड से न्यूजीलैंड बहुत दिन ये बात कहे कि नहीं बच पाएगा कि हम छोटे देश हैं, हम शांति प्रिय देश है। स्ट्रेट ऑफ होमूज बंद है किसकी वजह से? यूएसए और ईरान की वजह से। अगर यूएसए सामने से कह रहा है कि हाँ हमें स्ट्रेट ऑफ होमूज को खोलने के लिए मदद की ज़रूरत है और ईरान इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि हमें उनका साथ देना चाहिए यूएस का? क्योंकि इसका सीधा सीधा असर, स्ट्रेट ऑफ होमूज के बंद होने का सीधा सीधा असर न्यूजीलैंड के ऊपर पड़ रहा है, हमारे और आपके ऊपर पड़ रहा है। वो जमाना गया कि न्यूजीलैंड शांति प्रिय देश है, ये चुपचाप बैठा रहता है और इतना अच्छा देश है कि सब इनकी मदद करेंगे, ये एटीट्यूड गलत है। गलत के खिलाफ कदम उठाना और अपने लिए कदम उठाना, फिर चाहे कितने लोग इसका आलोचना करें कि ये शांति प्रिय देश इन सब चीज़ों में कैसे शामिल हो गया, ये एटीट्यूड गलत है। अगर हमें मदद चाहिए तो हमें मदद करने के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए।
1: Best of music, best of shows. This is Radio Tarana.
2: नमस्कार, मैं आपसे एक ऐसी ताकत के बारे में बात करने जा रहा हूं जो दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, लेकिन अगर इंसान इसे समझ ले तो पूरी लाइफ बदल सकता है, डिसीजंस बदल सकता है, रिलेशनशिप्स बदल सकता है और पर्सनालिटी में एक अलग ही डेप्थ आ सकती है। इस ताकत का नाम है पावर ऑफ साइलेंस, यानी मौन रहने की ताकत। इस दुनिया में हर कोई आज बोलना चाह रहा है, अपनी बात प्रूव करना चाह रहा है कि मैं सही हूं, लेकिन लाइफ में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो सिर्फ बोलना नहीं जानते बल्कि ये भी जानते हैं कि कब चुप रहना है। साइलेंस कमजोरी नहीं है, अवॉइडेंस नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। साइलेंस क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है, मैच्योरिटी है। आपके साथ 10 मिनट स्टॉक में मैं हूं आरजे कार्तिक। 10 मिनट में पूरी बात समझाते हैं। आज की दुनिया में नॉइज बहुत ज्यादा है, सुबह उठते ही मोबाइल की आवाज है, सोशल मीडिया के अपडेट्स हैं, लोगों की उम्मीदें, आपके घर वालों की उम्मीदें, कंपेरिजन, इतनी नॉइज है कि इंसान खुद की आवाज को सुनना भूल गया है। लेकिन सच यह है कि साइलेंस, प्रेजेंस ऑफ क्लैरिटी, ऑफ स्ट्रेंथ, ऑफ अवेयरनेस, जब बाहर का शोर कम होगा ना, तब आपको अंदर की आवाज सुनाई देगी। और जब इंसान अपने अंदर की आवाज सुनना सीख गया तो उसकी लाइफ का डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। साइलेंस आपको सबसे पहले खुद से जोड़ता है। हम दिन भर दूसरों की बातें सुनते हैं, सोसाइटी क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया क्या कह रहा है, लेकिन हम अपनी इनर वॉइस जो वो क्या कह रही है उसको सुनना भूल जाते हैं। तो कुछ देर के लिए जब आप शांत बैठेंगे तो आपको जवाब मिलेंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि लाइफ में करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है और किन चीजों से आपको दूरी बनानी है। साइलेंस आपको क्लैरिटी देगा, क्लैरिटी आपको डायरेक्शन देगी और डायरेक्शन आपको डेस्टिनी से मिलाएगी। साइलेंस आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप मौन हो जाते हैं तो आपके माइंड में अचानक आइडियाज आने लगते हैं, लेकिन जब आप दुनिया के बीच में, उन थॉट्स के बीच में होते हैं तो आपको कभी कोई नया आइडिया नहीं आता। जितने इनोवेटर्स हुए हैं, जितने महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को तभी एक्टिवेट किया जब वो साइलेंट हो गए। साइलेंस आपकी ब्रेन को सोचने का स्पेस देता है। इसीलिए लाइफ में अगर आप अगले लेवल पर जाना चाहते हैं, साइलेंस को अपनाना शुरू कीजिए। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। किसान अपने खेत पर था, काम कर रहा था, उसी दौरान उसकी एक बहुत ही महंगी घड़ी जो है वो खलिहान में कहीं गिर गई। घड़ी दिखने में असाधारण थी, लेकिन उसके किसान के लिए उसकी इमोशनल वैल्यू थी, क्योंकि उसके पिताजी ने उसे दी थी। उसने फार्म हाउस में जो उसका घास का ढेर था, जो खलियान था, वहां पर उसने बहुत देर तक ढूंढा, मिली नहीं। थकार करके उसने वहीं पास में बच्चे खेलते थे, उनसे मदद मांगी कि जो बच्चा घड़ी ढूंढ के देगा उसको इनाम दूंगा। बहुत सारे बच्चों ने प्रयास किया लेकिन मिली नहीं। धीरे धीरे बच्चे थकार के बाहर चले गए कि नहीं मिल रही। किसान ने भी उम्मीद छोड़ दी कि आज तो भाई। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है, कहता है काका मुझे एक मौका दीजिए। किसान उसे मौका देता है, वो जाता है खलियान के अंदर, ढूंढता है और उस घास के ढेर में से निकाल लाता है घड़ी। किसान बहुत हैरान होता है, पूछता बेटा इतने सारे लोग नहीं ढूंढ पाए, तुमने कैसे ढूंढ ली? बच्चे ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि मैं बस अंदर जाकर के शांत रहा और घड़ी की टिक टिक सुनने लगा। जैसे मुझे वो टिक टिक सुनाई देने लगी, साइलेंस जब हुआ, जब शांति हुई, उसी दिशा में गया और घड़ी तक पहुंच। ये कहानी उस घड़ी की नहीं है, कहानी आपकी और हमारी लाइफ की, हमारी लाइफ के जवाब भी हमारे आसपास हैं, लेकिन हम नहीं सुन पा रहे क्योंकि आसपास बहुत नॉइज। जिस दिन आप थोड़ी देर साइलेंस में बैठ जाएंगे उसी दिन आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। साइलेंस आपको इमोशनल स्ट्रेंथ की पहचान जो है वो देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हर बात का जवाब देना कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन सच बात यह कि हर बात का जवाब देना इमोशनल वीकनेस हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सामने वाला जो है आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, आप हर बात का जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति साइलेंस को चूज करता है वो अपने इमोशंस का मालिक बनता है। वीक लोग रिएक्ट करते हैं, स्ट्रांग लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, इसीलिए कई बार बड़े लोग साइलेंस जो है उसे चूज करते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां साइलेंस आपकी ताकत बन सकता है। पहली सिचुएशन वो है जब सामने वाला गुस्से में, उस समय लॉजिक नहीं चलेगा, इमोशन चलेगा। अगर आप उसी समय जवाब देंगे तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी, लेकिन अगर आप साइलेंस को चूज करेंगे धीरे धीरे सिचुएशन शांत हो जाएगी। कई सारे रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग सही समय पर चुप रहना नहीं जानते। दूसरी सिचुएशन है जब कोई आपको उकसा रहा है, प्रोक कर रहा है। लाइफ में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो इमोशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, उकसाएंगे, वो चाहेंगे कि आप रिएक्ट करें, गुस्सा हो। लेकिन अगर आप साइलेंस को चूज करेंगे तो आप उनकी गेम से बाहर निकल जाएंगे। साइलेंस दुनिया में सबसे पावरफुल रिप्लाई है। तीसरी सिचुएशन है जब आपको पूरी जानकारी नहीं है। इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं हर जगह नहीं बोलते, पहले ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, फिर बोलते हैं। साइलेंस कई बार मैच्योरिटी की सबसे बड़ी पहचान है। चौथी सिचुएशन है जब आपकी बात की कद्र नहीं हो रही, हर जगह खुद को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, कुछ लोग समझना नहीं चाहते, वो सिर्फ जज करना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में साइलेंस सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाता है। साइलेंस कई बार मैसेज देता है कि अब मैं अपनी वैल्यू को समझ रहा हूं। और पांचवी सिचुएशन है जब सामने वाला व्यक्ति समझना नहीं बल्कि सिर्फ जीतना चाह रहा है। आर्ग्यूमेंट करने से ऐसे लोगों से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर आर्ग्यूमेंट जीतना जो है जरूरी नहीं है, कभी कभी अपने माइंड की पीस, मेंटल पीस को बचाना जरूरी है। साइलेंस स्ट्रेस को कम करता है, पेशेंस को बढ़ाता है, और आज की फास्ट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि हम इंस्टेंट रिएक्शन देना चाहते हैं, हम रुकना नहीं चाहते, और यही हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। साइलेंस जो है आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाएगा। कई बार रिश्ते ज्यादा बोलने से नहीं बल्कि सही समय पर सुनने से मजबूत होते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को बिना इंटरप्ट किए सिर्फ उसकी बात सुनते हैं तो सामने वाला इमोशनली सेफ फील करता है। लिसनिंग इटसेल्फ इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ साइलेंस, और जो इंसान सुनना सीख गया वो रिश्ते जीतना सीख गया। साइलेंस आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखता है। हर बार डिस्कशन जरूरी नहीं है, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है, हर किसी को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। जब आप अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन से दूरी बनाएंगे तो आपकी मेंटल एनर्जी, मेंटल पीस बचेगा, और वही एनर्जी जो है आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। साइलेंस आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है। लाइफ में बार बार खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं, बल्कि आप चुपचाप रह करके अपनी वैल्यू बता सकते हैं। जो आप साइलेंटली डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, साइलेंटली हार्डवर्क चूज कर रहे हैं, साइलेंटली काइंडनेस दिखा रहे हैं, तो आपकी लाइफ खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत बनती है कि बंदा बड़ा अच्छा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि साइलेंस की पावर को आप डेली लाइफ में कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे इसे एम्पावर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है डेली 10 मिनट्स साइलेंस प्रैक्टिस। हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने साथ बैठिए, बिना मोबाइल के, बिना म्यूजिक के, बिना डिस्ट्रैक्शन के। शुरुआत में आपको अनकंफर्टेबल लगेगा कि ये क्या है, क्योंकि आपको साइलेंस की आदत नहीं, लेकिन धीरे धीरे साइलेंस आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। दूसरा तरीका है पॉज बिफोर रिस्पॉन्स रूल। जब भी कोई सिचुएशन आती है, खास करके इमोशनल सिचुएशन है, इंस्टेंट रिएक्शन मत दीजिए, खुद को 5 सेकंड दीजिए, गहरी सांस लीजिए। यही छोटा सा पॉज आपके रिएक्शंस को पावरफुल रिस्पॉन्सेज में बदल देगा। तीसरा तरीका है सिलेक्टिव स्पीकिंग हैबिट डेवलप करना। हर बात पर बोलना जरूरी नहीं है, खुद से पूछिए क्या जो मैं बोलने जा रहा हूं वो जरूरी है, क्या ये हेल्पफुल है। अगर नहीं है तो साइलेंस को चूज कीजिए, धीरे धीरे आपकी बातों की वैल्यू बढ़ने लगेगी। चौथा तरीका है डिजिटल साइलेंस क्रिएट करना। दिन में कुछ समय ऐसा रखिए जब आप कंप्लीटली ऑफलाइन रहें, ना फोन है, ना सोशल मीडिया, ना नोटिफिकेशंस हैं। ये डिजिटल साइलेंस आपके माइंड को रीसेट करेगा, आपकी थिंकिंग को क्लियर करेगा। और पांचवा तरीका है लिसनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, बिना जजमेंट के सुनिए, क्योंकि लिसनिंग जो है अपने आप में एक पावरफुल फॉर्म है ऑफ साइलेंस, और यही स्किल आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाती है। एक और बड़ा कमाल का तरीका है डोंट एक्सप्लेन योरसेल्फ एवरीवेयर। हर जगह पर खुद को मत बताइए कि भैया मुझे ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा पता है। जहां जरूरत हो वहीं पर बोलिए, बाकी जगह चुप रहिए। साइलेंस अपने आप में कोई टेक्निक नहीं है, साइलेंस एक लाइफस्टाइल। जब आप इसे अपनाएंगे तो आपकी थिंकिंग बदल जाएगी, आपकी एनर्जी बचेगी और आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल बन जाएगी। इसलिए आज से एक छोटी सी जो है कोशिश शुरू कीजिए। हर दिन सिर्फ 10 मिनट साइलेंस में बैठिए, बिना मोबाइल, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ अपने साथ बिताइए, मौन धारण कीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी क्लैरिटी बढ़ रही है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और आपकी पर्सनालिटी में एक नई ताकत आ रही है। क्योंकि सच ये है कि हर सवाल का जवाब शब्द नहीं देते, कुछ जवाब खामोशी भी दे जाती
0: है। रियली कुछ जवाब खामोशी भी दे जाते हैं आपका जो माई टाइम, मैं चुपचाप साइलेंस में अपने दिमाग को शांत करना, बिल्कुल लॉजिक बात बता रहे थे आरजे कार्तिक। डिजिसेल की ओर से आपके लिए लाया जा रहा था, आने वाले रविवार को मदर्स डे मनाया जाएगा, इस मदर्स डे को आप डिजिसेल के साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपकी माँ अगर फिजी आइलैंड्स में है तो वहाँ पर या फिर यहाँ पर भी रह करके आप फिजी में किसी को भी इस मदर्स डे पर मदर्स डे की खुशी दे सकते हैं। सो $20 आप टॉप अप कराएं डिजिसेल पर, या $300 अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं फिजी के माई कैश वॉलेट में या फिर पैसिफिक आइलैंड्स के माई कैश वॉलेट में, तो आपका भी नाम ड्रॉ में जाएगा और इस मदर्स डे पर $15,500 कैश प्राइज दिए जा रहे हैं डिजिसेल की तरफ से। सो दिस इज एन ईजी वे कि आप अपनी माँ के लिए पैसे भेजें या किसी को भी पैसे भेजें, $20 का टॉप अप कराएं या फिर $300 मनी ट्रांसफर करें माई कैश वॉलेट पर पैसिफिक में कहीं पर, और आपका नाम ड्रॉ में शामिल हो जाएगा। $500 कैश प्राइज आपको 15 में से 15 एक जीतने का मौका रहेगा। अच्छा बेहतरीन मौका है ये आपको माँ के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे जीतने का। आज ही आप डिजिसेल के साथ में पैसे भेजें।
1: पवन शो,
0: मैं अगले ब्रेक के बाद में बातें करने जा रही हूँ अभिषेक जोशी से। वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की बातें करें, कल भी इंपॉर्टेंट दिन रहेगा, वी विल सी हाउ इट गोज। भारत में जो इलेक्शन हो रहे हैं उनके रिजल्ट्स आ जाने वाले हैं, चंद घंटों में हमें पता चलने लग जाएगा। लेकिन वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर फिर से पोलिंग की जाएगी और मई के आखिर तक यहाँ पर पोलिंग की जाएगी और रिजल्ट्स तब आएंगे। तो नॉर्मल रिजल्ट्स पर इसका क्या असर होने जा रहा है और बाकी इलाकों में पोलिंग एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं, हम ये जानेंगे अभिषेक जोशी से राइट आफ्टर दिस एडवर्ड ब्रेक।
3: न्यूजीलैंड के कई बड़े बड़े इवेंट्स में होने वाले जो बड़े बड़े माकी आप देखते हैं ना, अरे मनगाओ दिवाली सिख गेम्स में ये माकी इवेंट्स ऑकलैंड माकी एंड पार्टी हायर के हैं, 20 सालों से हैं बिजनेस में। इनके माकी बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस, घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माकी लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा। इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265-0505 और सुनिए ये पोर्टल लू भी हायर पर देते हैं। इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265-0505
4: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स, मंडप और माकीज पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ, बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: माँ।
6: हाँ मेरे लाल।
5: खुश हो ना माँ?
6: बहुत मेरे पुत्र।
5: नागर अच्छा है ना माँ?
6: बहुत वधिया है पुत्र।
5: आशीर्वाद दो ना माँ।
6: हमेशा खुश रहे, चढ़दिया कलावाच रहे हैं मेरे पुत्र।
5: गालियाँ तो वैसे ही देती रहती है माँ।
6: चुप फिट्टे मुँह तेरे, और मेरा

0: Visit Beds, Manikau Supercenter store, जहां पर आपको मिलेगा up to 70% discount on selected beds, mattresses from $299, and a free pillow with every purchase made in the weekend. So see you this Saturday, 10 a.m. to midday at NZ Beds, Manikau Supercenter.
1: Abhishek Joshi Wellington से हमारे साथ शामिल होने जा रहे हैं. Before we cover politics and election results, Abhishek, हम ये जानना चाहेंगे जगवलपुर बोट हादसे में क्या हुआ था, and does it look like कि जो अधिकारी ऑन बोर्ड थे उनकी ढिलवाई से ये हुआ?
2: पहले तो सभी सुनने वालों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. तो ये जो ट्रेजेडी हुई है, ये बारकी डैम है जबलपुर में, तो उस डैम में हुई है. तो अब क्या होता है कि बेसिकली ये डैम का जो है वो टूर होता है, तो द स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट्स द टूर बेसिकली. उनके जो बोट्स होते हैं तो लोगों को ले जाते हैं, सो इट्स अ सीनिक थिंग. तो अब अनफॉर्चुनेटली गुरुवार के दिन क्या हुआ है कि ये सडनली जो है वेदर पलट गया जब ऑन वन ऑफ द टूर्स जो ये बोट पे थे. और सडनली वेदर पलटने से क्या हुआ कि वो बोट आगे जाके एकदम से बोट भी पलट गई. और ऐसा बताया जाता है कि उस बोट में एटलीस्ट 41 पीपल दे वेर ऑन बोर्ड. तो अब ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया, क्योंकि सर्च ऑपरेशंस दो दिन तक चले और फिर अभी कल जो है वो सर्च ऑपरेशंस खत्म हुए और फिर फाइनल कंफर्मेशन आया है कि अनफॉर्चुनेटली जो डेथ टोल बताया जा रहा है वो 13 है. कि परसों तक 11 बॉडीज रिकवर हुए थे और कल अनफॉर्चुनेटली दो मिसिंग पर्सन के बॉडीज भी रिकवर हुए हैं और उसमें एक 5 साल का लड़का भी है. तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी है. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि बेसिकली द बोट जो थी वो बहुत पुरानी थी, 20 साल पुरानी थी. और स्टेट गवर्नमेंट ने तुरंत कार्रवाई चालू कर दी है और फिर उसमें से 3 क्रू मेंबर्स को डिसमिस भी कर दिया है. एंड एक उच्च स्तरीय प्रोब, जिसको हाई लेवल प्रोब बोलते हैं, वो भी ऑर्डर कर दिया है. और अदर थिंग व्हाट गवर्नमेंट हैज डन इज उन्होंने एक इमीडिएट बैन इशू कर दिया है कि जो भी एक कट ऑफ उन्होंने कर दिया है कि जो भी पुराने बोट्स हैं सबको बैन कर दिया है और सबको इमीडिएटली ऑफ मतलब ऑन द ग्राउंड कर दिया है सबको. तो ऑपरेशन से इमीडिएटली निकाल दिया है. बट हैविंग सेड दैट कि अब डैमेज तो हो ही गया है, तो इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. बट आई थिंक इट्स अ स्टार्क रिमाइंडर कि कैसे एक लीजर ट्रिप एकदम से मतलब जस्ट क्विकली एक डिजास्टर हो गया है व्हेन द इंफ्रास्ट्रक्चर इज एजिंग. एंड सो ऑल द गवर्नमेंट्स ये एक लेसन है कि
1: तो कोई चेक नहीं करने के लिए होता, उनको कंप्लाई नहीं करना होता है.
2: देर आर रूल्स, देर इज अ प्रॉपर डिपार्टमेंट दैट डज दैट. तो बट प्रॉब्लम क्या होता है कि ये दो चीज होती है इसमें. एक तो थोड़ी सी लापरवाही टू सम एक्सटेंट, एंड द सेकेंड वन इज द गवर्नमेंट प्रोसेसेस. तो ये क्या होता है कि बहुत लंबी प्रोसेस होती है कि अगर उन्होंने बता भी दिया है कि ठीक है दिस आर ऑल एजिंग, तो फिर वो अप्रूवल प्रोसेस रहो, फिर आई थिंक टेंडर्स, फिर दे इनवाइट द टेंडर्स. तो एक गवर्नमेंट प्रोसेस एक प्रोसेस होती है जो कि लंबी, और फिर देन दे नीड टू sort of have a transparency on paper as well. तो ये सब करने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर there are other important things. तो ये फाइल कहीं तो दब जाती है, फिर you know these are all the problems, typical problems ये government machinery में होती है. तो I think we need to have more refined processes in play और फिर थोड़ा सा pragmatism भी आना चाहिए system में just to try and avoid these kind of tragedies going forward.
1: Government ka koi bayan iske liye aaya, kis minister ke niche aata hai ye?
2: तो ये आएगा अब इनके वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर के अंडर में आएगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है. तो स्टेट गवर्नमेंट तो अब देखे, अब ये ब्लेम गेम तो स्टार्ट हो ही जाएगा उसमें. तो जो कि ऑपोजिशन विल स्टार्ट ब्लेमिंग, गवर्नमेंट विल स्टार्ट डिफेंडिंग, ये सब टिपिकल स्टफ विल स्टार्ट नाउ.
1: और ये जो
2: स्टार्ट डिमांडिंग द मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन एंड ऑल द स्टफ.
1: और ये जो आग में जल के मर जाने की

0: घटना हो रही है, वो इज इट ट्रू कि लोग फंस गए थे और वो जो घर के अंदर छड़े लगाई जाती हैं उसकी वजह से फंस गए थे?
1: ये किस से रिलेटेड है? ये इसी से
0: नहीं, ये जो लेटेस्ट आग की घटना घटी है, शायद ये
1: नहीं यार।
0: ओवरनाइट हुआ, आपने इसको नहीं अच्छी तरह से फॉलो किया.
1: हाँ,
0: दैट्स
1: मैंने
0: ओके.
1: अभी वो
0: या
1: फॉलो नहीं किया है
0: दैट्स
1: उसके।
0: ओके,
1: हाँ
0: दैट्स ओके.
1: हाँ
0: नेक्स्ट में हम इसको कवर करेंगे. अच्छा, गोइंग
1: हाँ
0: बैक टू इलेक्शन, सो वेस्ट बंगाल में जो रीपोलिंग होगी इसका क्या असर आज के रिजल्ट्स पर होगा? मतलब अब हमें मई के आखिर तक इंतजार करना होगा या हमें थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि किस तरफ किसका रुझान है?
1: हाँ जी। तो इस जो रीपोलिंग ऑर्डर की है फाल्टा में, तो उससे मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा इसमें। हालांकि एक असेंबली सेगमेंट है, तो इफ इट इज टू टाइट देन उससे फर्क पड़ेगा। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि यू नो इट्स वन असेंबली सेगमेंट, उससे कुछ ज्यादा मतलब
0: ओके,
1: पता चलेगा, क्योंकि वी डोंट हैव टू वेट अंटिल
0: या
1: देन। आज शाम तक पता चल जाएगा, मतलब न्यूजीलैंड के शाम तक पता चल जाएगा।
0: ओके. अभिषेक, वुड इट बी राइट टू से कि ममता बनर्जी बौखलाई हुई नजर आ रही है?
1: तो इफ द रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, और सब जगह जो सोशल मीडिया में चल रहा है, तो उससे तो लग ही रहा है कि ममता बनर्जी इस बार बहुत ज्यादा नर्वस दिखाई दे रही है, इंक्लूडिंग द बॉडी लैंग्वेज। तो अब क्या है कि ममता बनर्जी इंप्रेशन और इमेज आपने अगर देखा होगा ओवर द इयर्स, सो शी इज अ फाइटर, यू नो, और बहुत एग्रेसिव होती है वो। तो शी इज बेसिकली डोमिनेटिंग फिगर है। तो अब फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट फ्यू इयर्स, आप अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे या फिर जिस तरीके से वो कमेंट्स दे रही है, तो शी इज गॉन ऑन द अदर साइड नाउ, यू नो। तो ज्यादा करके रिएक्टिव हो गई है। तो इससे पहले क्या होता था कि स्पेशली आपने अगर 21 के इलेक्शंस, लास्ट 10 के इलेक्शंस, और इवन द 24 नेशनल इलेक्शंस अगर देखो, आपने अगर देखा होगा, तो ममता बनर्जी वुड यूज टू सॉर्ट ऑफ यू नो डोमिनेट, और बीजेपी यूज टू रिएक्ट टू इट। तो मुद्दे उठाना ममता बनर्जी करती थी और फिर बीजेपी रिएक्ट करती थी। बट इस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम ये ऐसा लग रहा है कि द रोल्स हैव बीन स्वॉप्ड, और बीजेपी मुद्दे उठा रही है और फिर ममता बनर्जी उस रिएक्शन में, उसको डिफेंड करने के चक्कर में पड़ी हुई है। तो बहुत ज्यादा बुखलाई हुई है। और तो बेसिकली द लीडर्स एंड द पार्टीज, दे हैव देयर ओन इंटेलिजेंस मैकेनिज्म। तो वो क्या करते हैं कि उनके हिसाब से ग्राउंड लेवल पे उनको ज्यादा पता चल जाता है, उनके रिसोर्सेस रहते हैं, उनके एजेंट्स रहते हैं, उनके लोग रहते हैं अराउंड। तो पता नहीं, अब कुछ पता चला होगा ममता बनर्जी को कि ये जो है, जिसको बोलते हैं ना, ग्राउंड खिसक रहा है उनके पैरों के तले। तो हो सकता है उस पे ऐसे लग रहा है, बट विल सी कि अभी कुछ घंटों में पता
0: पता
1: चल
0: चल
1: जाएगा।
0: जाएगा. तो अभिषेक, जहां पर रिपोलिंग की जाएगी वहां पर लैप्स तो हुआ है, तो किन के ऊपर आरोप है, कौन ये कर रहा था?
1: देखिए, ये जो हुआ है ये अनप्रेसिडेंट हुआ है। अब मैं अनप्रेसिडेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता है कि ये फाल्टा बोलते हैं उसको, नॉट आई मीन इट्स इंग्लिश में फाल्टा, इट्स प्रोनाउंस इफ यू गो विद द स्पेलिंग, बट इट्स फाल्टा। तो फाल्टा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, क्या होता है यूजुअली कि रीपोलिंग जब होते हैं तो एक हैंडफुल ऑफ बूथ्स विद इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं, लाइक दो या तीन ऐसे हो सकते हैं, विच इज वेरी कॉमन। बट इस बार क्या हुआ है कि पूरा का पूरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, विच इज पूरा ही रिपोलिंग ऑर्डर कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, विच इज लाइक अब फाल्टा में 285 पोलिंग स्टेशन है। सो दे विल गो बैक अगेन टू द बैलेट्स ऑन 21 मई। तो इसमें ऐसा क्यों हुआ है? तो जो रिपोर्ट्स बता रही है कि जो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स हैं, उन्होंने ये पाया है कि ये सिस्टमेटिकली जो ईवीएम्स है उसको उससे टैम्पर किया गया है। जो जिसको बोलते हैं, इसको बोला गया है ब्लैक टेप स्कैंडल। तो उसमें क्या हुआ है कि कुछ कुछ जो पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनके यहाँ पे तो ब्लैक मास्किंग टाइप लगा दिया गया है, और कुछ कुछ इस पे परफ्यूम भी लगा दिया है कि जिससे कि वो स्टिकी हो जाए और वो मतलब बटन दबे ना
0: वाह
1: उस कैंडिडेट का, और फिर ब्लैक मास्किंग टेप से फिर क्या होगा कि उसमें भी चॉइस ना मिले लोगों को कि वो ऑप्शन है ही नहीं उसमें. तो दिस इज अनप्रेसिडेंटेड.
0: तो डू यू नो
1: और
0: कि किस
1: इलेक्शन कमीशन
0: पार्टी के को रोका गया था कि उनको वोट ना मिल सके, ब्लैक टेक किस कैंडिडेट
1: देखिए,
0: पे
1: अभी
0: लगे
1: तो
0: थे?
1: प्राइमा फेसिया, या प्राइमा फेसिया इट इज तृणमूल कांग्रेस जो बताया गया है कि बीजेपी के ये जो कैंडिडेट्स का जो रो होता है ईवीएम में वो ब्लॉक कर दिया गया है.
0: ओ अच्छा
1: तो ऑब्वियसली यू नो दोज आर द सपोर्टर्स ऑफ तृणमूल यू नो हु हैव डन दैट. तो इसीलिए बीजेपी ने ऑफिशियल कंप्लेंट की, फिर ईसीआई ने जो इलेक्शन कमीशन ने उस पर कार्रवाई की, और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया कि बहुत जगह फाल्टा में ये सब हुआ है. तो इसीलिए उन्होंने ना अनप्रेसिडेंटली, और कई जगह उन्होंने ये भी पाया कि सीसीटीवी फुटेज से, सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़ की
0: वाह
1: गई है. तो उससे भी है ना उनको वो पता नहीं चल रहा है कि वो ब्लैकआउट कर दिया गया है. तो
0: या
1: ये सब देखते हुए पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी यू नो फाल्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज दे हैव डिक्लेयर्ड रीपोलिंग.
0: ओके. एंड एंड एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं खासतौर पर वेस्ट बंगाल के लिए? हालांकि और जगह भी बहुत ही अहम इलेक्शन हो रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल ही अभी आज सबसे ज्यादा चर्चे में है, नजर उधर रहेगी. व्हाट्स योर फोरकास्ट अभिषेक?
1: देखिए, अब उसमें कई फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो एक तो इस बार अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग परसेंटेज भी हुआ है. अब एंड यू आर राइट इन दैट सेंस कि इलेक्शंस तो 5 स्टेट में हुए हैं, बट वेस्ट बंगाल ज्यादा छाया हुआ है, स्पॉटलाइट में है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी. तो अब देखिए, अभी तक के अराउंड 6 या 7 एग्जिट पोल्स आए हैं, तो उसमें मेजोरिटी अब देखेंगे तो 4 ने तो स्ट्रेट अवे बीजेपी को एज बताया है, और 1-2 ने ममता बनर्जी को भी एज बताया है. बट अगर बंगाल की हिस्ट्री देखोगे आप, एंड विथ ममता बनर्जी रेपुटेशन, शी इज अ फाइटर एंड शी इज स्ट्रीट फाइटर, तो यू कैन नॉट रूल रूल हर आउट इजीली. तो पिछले बार भी यही हुआ था कि बीजेपी आ गई आ गई आ गई आ गई, बट यू नो इफ यू लुक एट इट रिजल्ट तो बहुत ही अलग निकला था. बट आई मीन इट्स अ ह्यूज मेजोरिटी फॉर ममता बनर्जी.
0: ओ
1: बट
0: अच्छा,
1: हैविंग सेड
0: एग्जिट पोल्स
1: दैट, इस
0: कुछ और कह
1: बार
0: रहे थे उस वक्त?
1: पिछले बार भी एग्जिट पोल्स यही बोल रहे थे कि
0: अच्छा
1: बीजेपी बीजेपी क्लोज क्लोज रहेगा. मतलब ऐसा नहीं कि बीजेपी जीत गई, बट इट वॉज शोन टू बी वेरी वेरी क्लोज, मतलब किधर भी पलट सकता है. तो बट रिजल्ट तो यू नो इट वेंट समथिंग एल्स, यू नो इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट लाइक वन साइडेड विद बीजेपी जस्ट स्टॉपिंग एट 77 एंड ममता बनर्जी पार्टी गोइंग 200 के ऊपर चली गई है. तो इस बार लेकिन थोड़ा सा अलग है. इस बार इतना तो गारंटी से मैं बता सकता हूँ कि बीजेपी 77 तो क्रॉस कर लेगी, पक्का है, तो वो गारंटीड है. बट कहाँ तक जाएगी, क्योंकि जैसा मैंने बोला था पिछले शो में भी कि 148 इज द मेजोरिटी मार्क, तो उनको ऑलमोस्ट डबल करना है. ठीक है, पिछले अपने अकाउंट से. तो अब ये देखने लायक है कि अगर
0: क्यों डबल
1: बीजेपी
0: करना है?
1: इतना सेम लगा सकता है, क्योंकि 148 दे हैव टू फ्रॉम लास्ट
0: ओ
1: टाइम इफ यू कंपेयर,
0: ओके गॉट
1: 77 वो रुक गए थे,
0: इट
1: तो
0: ओके गॉट
1: 77 to 148 इट्स ऑलमोस्ट लाइक डबल.
0: ओके
1: तो उनको है ना अपने सीट्स जो है तो 50% बढ़ाने हैं. तो 50% बढ़ाने के लिए उनका वोट शेयर जो था वो 38% था लास्ट टाइम. तो उनको एटलीस्ट यू नो 45 to 46% तो करना ही है एट बेयर मिनिमम. तो करीब करीब है ना 6 से 7% वोट शेयर उनको बढ़ाना है, विच इज अ डॉन्टिंग टास्क. तो अब देखो, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी, जैसा हमने अभी कुछ मिनटों पहले डिस्कस किया था कि जिस तरीके से ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज है या जिस तरीके से वो डिफेंड कर रही है, और बहुत सारी चीज हुए है, मतलब आई मीन बंगाल है ना. सो ममता बनर्जी वॉज कंसिडर्ड बिकॉज वो महिला मुख्यमंत्री है, तो महिला की सुरक्षा तो ऑब्वियसली उनका उनको ये उनके तरफ देखा गया था कि महिला होने से महिला की सुरक्षा का प्राइम इंपॉर्टेंस रहेगा. बट पिछले 1-2 साल से जो आरजीकार मेडिकल केस का रेप केस हुआ है स्पेशली, यू नो दैट्स लाइक
0: स्पेशली
1: बिकम अ
0: आफ्टर दैट
1: वेरी
0: उनके जो बयान
1: इमोशनल.
0: आ रहे थे, इट लुक लाइक कि वो तो
1: करेक्ट करेक्ट. वो बहुत इमोटिव हो गया है। तो आपने अगर कुछ कुछ जब सर्वेस देखे होंगे कि लोग जब जाते हैं और लोगों से बात करते हैं तो स्पेशली वुमन वे वेरी वेरी वेरी इमोशनल, तो उन्होंने और सबका एक ही कहना था कि ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। तो इस बार तो माहौल तो बदला हुआ तो लग रहा है, बट वेदर दैट विल कन्वर्ट इंटू वोट्स एंड इनटू सीट्स रादर देन वोट्स एज वेल, यू नो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वोट शेयर बढ़ जाता है लेकिन सीट्स में कन्वर्ट नहीं होता है। तो सो दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। तो बट बंगाल एक ऐसा स्टेट है तो आई एम नॉट गोइंग टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, यू नो, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रेडिक्ट कि कौन डेफिनेटली जीत रहा है, बट इतना गारंटीड है कि बीजेपी का वोट शेयर और सीट्स तो बढ़ने हैं, पक्का है।
0: और उस विक्टिम लड़की का जो मेडिकल कॉलेज में हुआ था उसकी माँ भी मैदान में उतरी है बीजेपी की तरफ से, राइट?
1: करेक्ट। तो अब द मोस्ट इमोटिव पार्ट ऑफ दैट, मैंने वीडियो देखा है तो वो बीजेपी की तरफ से है, तो और बिचारी उनको है ना हर जगह जब भी प्रचार के लिए जाती है डोर टू डोर, यू नो, एवरी 5 seconds, बिकॉज यू नो इफ यू गो डोर टू डोर एवरी 5 to 10 seconds या फिर यू नो शी हैज टू गो थ्रू द सेम ऑर्डियल, क्योंकि लोगों में इतना कनेक्ट है और उसी टॉपिक पे वो फिर उसको मतलब उनको वो बोलना पड़ा कि ये करना पड़ा, तो हाउ हार्ड इट मस्ट बी ऑन हर। सो दैट वाज वेरी वेरी वेरी डिस्टर्बिंग विजुअल्स।
0: इट शोज द वर्ल्ड इज रियली ब्रूटल, बिकॉज वो अपनी आवाज इसके जरिए नहीं उठाएगी तो और कैसे भारत में वो अपनी आवाज को उठा सकते हैं? लोग इसको कह रहे हैं कि वो अपना अलग मोटिवेशन लेकर उतरी है टू गेट फेमस। It's just the word.
1: You know, so it is all a political conspiracy, ये बताया जा रहा है। But I think उस issue पे क्या हुआ है कि ठीक है incident हुआ है, तो अब इतने बड़े देश में incidents होते हैं, you know, and you cannot control it. But the way the government responded और उसके बाद में जो comments आए हैं ना, so that disturbed a lot of people and that was like more insensitive to the whole
0: very insensitive and that makes you think jo Trinamool ko wo karte hue kyunki unhi ke supporters hi ye gande comments kar rahe hain unke bare mein, to you know their thinking aati hai samne।
1: एक महिला खुद हो के आप एक महिला हो और चीफ मिनिस्टर हो, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, यू नो, दैट वाज द लास्ट थिंग, यू नो, व्हाट पीपल वांटेड।
0: आई डोंट नो क्या आज रिजल्ट्स होंगे, मे बी विल टॉक अगेन टुमारो अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा, नहीं तो फिर बाद में बातें करेंगे। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू फॉर योर टाइम दिस मॉर्निंग।
1: नो वरीज, थैंक यू।
0: थैंक यू अभिषेक जोशी से हमारी बातें हो रही थी ऑन इंडिया।

0: मायावती जी का 66th बर्थडे मनाया जा रहा है 6TB रॉबर्टसन रोड फवोना में। खुशी के दिन पर आपके हस्बैंड हैं यन्मय शंकर, आपकी बहन है शकुंतला, बेटे हैं आपके शिवनेश, शिवनील, साथ में एमिश है, अनिश है, इकलौती बेटी है आपकी स्विरी, सात नाती पोते हैं आपके और रिश्तेदार हैं यहाँ न्यूजीलैंड में ओवरसीज में। ऑकलैंड ड्यूटी फ्री के जितने भी स्टाफ हैं उन्होंने भी आज आपको बेस्ट विशेस दिए हैं। हमारी टीम की ओर से भी मायावती जी आज के दिन के लिए आपको शुभकामनाएं, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सुरेखा सूद जी का भी आज मनुरेवा में बर्थडे मनाया जा रहा है, आपको भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बेस्ट विशेस मिल रहे हैं। सुरेखा सूद जी हैप्पी बर्थडे एंड मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। 6:30 बजे कैप्टन आपको याद करेंगे। मैसेजेस इसके लिए आप हमारे पास में टेक्स्ट कर सकते हो 8812 या ईमेल कर दें info@tarana.co.nz पर। सागर ने आज हमारे पास भेजा है किशोर दा का आखिरी रिकॉर्ड किया गया गाना आशा ताई के साथ में। इन्होंने आज शाम को ये गाना रिकॉर्ड किया और कल ही उन्होंने इस दुनिया से विदा ले ली थी। फिल्म का नाम वक्त की आवाज, किशोर दा के साथ में आशा ताई। बप्पी लहरी जी ने इस म्यूजिक या इस गाने पर म्यूजिक दिया है और इस गाने को लिखने वाले हैं इंडिवर जी। इसे फिल्माया गया था मिथुन दा और श्रीदेवी के ऊपर।
1: ए गुरु आ जाओ,

0: यही वो गाना है जो आखिरी बार किशोर दा ने रिकॉर्ड किया था, आशा ताई के साथ में आखिरी गाना उनका रिकॉर्ड हुआ था 1988 की फिल्म वक्त की आवाज़ के लिए। सागर ने हमारे पास ये गाना भेजा था। आज का केक ड्रो भी हो चुका है और केक ड्रो में नाम निकला है माया जी आपका। कंग्रेचुलेशंस टू यू माया जी, आप रिंग कर लें 0800 786 101 पर। आज रिंग करना होगा बिफोर 2 PM प्लीज़।
1: श्री वेंकटेश्वरा देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेंपल प्रोजेक्ट।
2: ये होगा संडे 17 मई को 11 AM टू 4 PM
1: 378 RRE Moo Road रामारामा साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर्स, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ।
2: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर।
1: One temple, one community, eternal blessings.
3: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
4: मम्मी मम्मी एयरफोन कान माथी निकाल जरा।
5: હે શું કીધું દીકરા?
4: અરે કેટલા વર્ષથી નવું ઘર કરતી હતી, આપણે લઈ લીધું ને ઇન્ડેલેબલ વાળાનું નવું ઘર।
5: તું કેટલો સારો છો દીકરા।
4: મમ્મી નવું ઘર છે, સાચવ જરા, બધું અહીંયા વેરવિખેર પડ્યું છે।
5: તમે ઝેન્ઝી વાળા ઘડીમાં ને કામ કરાવો છો, હે ભગવાન।
4: મમ્મી
5: ઘર બનાવવા વાળાનો ખૂબ ખૂબ આભાર।
4: ધન્યવાદ ઇન્ડેલેબલ હોમ્સ।
0: ન્યુઝીલેન્ડ કે મોસ્ટ ટ્રસ્ટેડ ઓર એક્સપિરિયન્સ સબ ડિવિઝન એન્ડ બિલ્ડિંગ સ્પેશિયલિસ્ટ ઇન્ડેલેબલ હોમ્સ। ફોન 0800 233 111।
6: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर।
7: रेडियो Time check.
6: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
0: सुबह के 11 बजे हैं।
8: This is Tarana News.
9: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही US के नेतृत्व में होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसे प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए कई देशों से मदद की मांग की। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वेसल को एस्कॉर्ट करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ में सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है जिस पर गौर किया जा रहा है।
10: Doing very well with regard to just about everything, but doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader Khamenei. But we'll see.
9: नेल्सन में महिला पुलिस ऑफिसर को अपनी गाड़ी से टक्कर मार करके उनकी जान लेने वाले आरोपी पर मुकदमा चलाया जा रहा है। पिछले साल नए साल के दिन 62 वर्षीय साजन लिन फ्लेमिंग की मौत उस वक्त हो गई थी जब उन्हें गाड़ी से टक्कर लगी। वो अपने एक साथी पुलिसकर्मी के साथ में सेंट्रल नेल्सन के बक्सटन स्क्वायर में फुट पेट्रोल पर थी जब 33 वर्षीय हेडन डोनाल्ड जेसन टास्का ने उन्हें कथित रूप से अपनी गाड़ी से टक्कर मारी। टक्सा ने उन पर लगे चार्जेस को स्वीकार नहीं किया है। उन पर मैडा और अटेम्प्टेड मैडा वाला एक मामला दर्ज है। इस घटना में सीनियर साजन एडम रैमसे चोटिल हो गए थे। उन पर कई सर्जरीज कराए गए हैं। तीसरे पुलिस ऑफिसर कंकशन का शिकार हुए थे तथा 2 आम लोग भी इस दुर्घटना में घायल हुए थे। टस्कर ने कॉजिंग ग्रीवियस बॉडली हार्म विद रेकलेस डिसरिगार्ड और सेफ्टी सहित डेंजरस ड्राइविंग वाले 3 चार्जेस को स्वीकार नहीं किया है। देश में 11 हफ्ते के एक बच्चे की मौत में जांच के बाद में कोरोना ने पाया है कि बच्चे के माता पिता हेल्थ सिस्टम पर उतना भरोसा नहीं कर रहे थे। इस कारण से बच्चे को एंटीनेटल और पोस्टनेटल के लिए हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। अजारिया लेवी की मौत साल 2023 में वाइकाटो के माता में हो गई थी। वह 11 हफ्ते 4 दिन के थे जब उनकी मौत हो गई। उनके माता पिता, जिनकी पहचान अरियाना और एलन लेवी के नाम से की गई है, ना तो बच्चे को एंटीनेटल और न ही पोस्टनेटल केयर के लिए लेकर गए थे। उनका जन्म बिना किसी मिडवाइफ के घर पर हुआ था। भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की पवित्र तीर्थ यात्रा 2026 कैलाश मानसरोवर यात्रा चीन के सहयोग से जून से अगस्त के बीच में आयोजित की जाएगी। कुल 1000 तीर्थ यात्री 50-50 के समूह में यात्रा कर सकते हैं। दो मार्गों पर उपयोग विदेश मंत्रालय के बयान से काठमांडू का रुख स्पष्ट हो गया है। बयान में कहा गया कि सरकार ने राजनयिक माध्यमों से भारत और चीन दोनों का ध्यान अपनी चिंताओं की ओर आकर्षित किया है। इस बात को दोहराया कि लिपुलेख क्षेत्र नेपाल का अभिन्न अंग है और दोनों देशों से आग्रह किया कि वे वहां किसी भी प्रकार की गतिविधि, चाहे वह सड़क निर्माण हो, सीमा व्यापार हो या धार्मिक तीर्थयात्रा, नहीं करें। फिजी में और एम्यूनिशन मिलने के बाद में पुलिस की चिंता बढ़ी है। नंबोआ टॉप लाइन बस स्टॉप पर स्टूडेंट्स ने 13 राउंड्स एम्यूनिशन देखा था। पुलिस ये पता कर रही है कि क्या ये एम्यूनिशन सेना की है। आपको बता दें कि 21 से 26 अप्रैल के बीच में जो एम्यूनिशन मिले थे उसे मिलिट्री ट्रेनिंग से जोड़ करके देखा जा रहा है। फिलहाल सेना के प्रमुख मेजर जनरल चोने कलोनोवाई ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि देश में कुछ लोगों ने गैरकानूनी रूप से अपने पास में बंदूकें रखी हुई है। बार्सिलोना को एल क्लासिको टाइटल जीतने के लिए बस रियल मैड्रिड के साथ में मैच ड्रॉ करना होगा। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच में नाउ कैंप में मैच खेला जाना है। वैसे रियल मैड्रिड ने आज सुबह हुए मैच में एस्पेनोल को 2-0 से हरा दिया। विनिसियस जूनियर ने इस मैच में 55th और 66 मिनट में दो गोल्स बनाए थे। फिलहाल मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर गई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आज सुबह लिवरपूल को 3-2 से हराया। इस जीत के बाद में मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम ने पॉइंट्स टेबल पर तीसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है। उसके पास में 35 मैचेस के बाद में 64 पॉइंट्स है। लिवरपूल के पास में 58 पॉइंट्स।
11: Weather report brought to you by Crew Care. Visit crewcare.co.nz.
0: क्राइस्टचर्च में आज सुबह ड्रिजल्स के साथ में बूंदाबांदी के साथ में दिन की शुरुआत हुई। पूरे दिन ऐसे ही बादल छाए रहेंगे। 16 आज का मैक्सिमम टेम्परेचर, रात को गिर के 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आज 5:28 पीएम पर सनसेट होगा। कल भी पार्टली क्लाउडी पीरियड्स ही बताए जा रहे हैं, पर बारिश नहीं होगी। कल का मैक्सिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। वेलिंगटन में आज तेज हवाओं के साथ में बादल भी रहेंगे, पर बारिश नहीं होगी। 15 आज का मैक्सिमम, रात को 12 मिनिमम। आज 5:24 पीएम पर सनसेट होगा। कल भी आज जैसा ही वेदर रहेगा, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। हैमिल्टन में आज धूप खिली रहेगी, मेनली काम पीरियड्स रहेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर 18 जाएगा, मिनिमम ओवरनाइट 6 डिग्री सेल्सियस। 5:29 पीएम पर सनसेट होगा। कल बादल थोड़े ज्यादा गहरा जाएंगे, जो परसों तक थोड़े बहुत बरसने भी लगेंगे। कल का मैक्सिमम टेम्परेचर इन हैमिल्टन 19 डिग्री सेल्सियस। ऑकलैंड में सुबह जो बादल थे वो अब छट जाएंगे, अब दोपहर के बाद धूप खिल जाएगी। टेम्परेचर भी आज का अप टू 20 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला है। मिनिमम ओवरनाइट नॉट बैड 13 डिग्री सेल्सियस। 5:32 पीएम पर सनसेट होगा। कल ज्यादातर बादल ही रहेंगे, धूप बहुत ही कम खिलेगी। बुधवार के बाद में बूंदाबांदी के लिए आसार है, विच विल कंटिन्यू टिल नेक्स्ट संडे। तो आज ही धूप का मजा आप ले ले। कल का मैक्सिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस।
12: लॉस ऑफ अ लव्ड वन इज एन अनफिल्ड वैक्यूम, डिमाइज न्यूज।
0: दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ऑकलैंड के आनंद राजू और पूर्णिमा राव के पिता स्वर्गीय पंजाली के पति दिलाई लंबासा के भूतपूर्व निवासी एस्को मोटर्स के सर्विस मैनेजर अप्पल राजू का अंतिम संस्कार बुधवार के सुबह 10 बजे एंस फ्यूनरल होम 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। शोक सहानुभूति के लिए आप 02155226777 पर संपर्क कर सकते हैं। दोबारा सुनिए, सूचित किया जाता है कि ऑकलैंड के आनंद राजू और पूर्णिमा राव के पिता स्वर्गीय पंजाली के पति दिलाई लंबासा के भूतपूर्व निवासी एस्को मोटर्स के सर्विस मैनेजर अप्पल राजू का अंतिम संस्कार बुधवार की सुबह 10 बजे एंस फ्यूनरल होम 11 बॉलीवुड प्लेस बीरी में किया जाएगा। शोक सहानुभूति के लिए आप 02155226777 पर संपर्क कर सकते हैं।
13: शोक सूचनाएं ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम की तरफ से।
0: जीवन में कुछ पल बहुत ही अलग होते हैं, और जब किसी प्रियजन को अलविदा कहना हो तो हर चीज आसान होनी चाहिए और सम्मानजनक भी। ओकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में सभी धर्मों के अंतिम संस्कार की सेवा प्रदान की जाती है। इनके इजी पे फ्यूनरल प्लान के साथ परिवार के लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है। और एडवांस पेमेंट और इजी इंस्टॉलमेंट टर्म्स के बारे में जानकारी के लिए आप उन्हें आज ही 2788600 पर रिंग करें। ओकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम, हर विदाई में सम्मान और सेवा।
6: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.
14: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tire pressure regularly and lighten the load like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
15: मेरी पसंद सोमवार रात 7 से हेमंत के साथ।

0: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰਾਨਾ
1: ਪਵਨ।
2: तो जो खबर आज सुर्खियों में है वो यही है कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि यूएसए अब शिप्स को एस्कॉर्ट करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकालने वाले हैं और ये आज रात न्यूजीलैंड समय अनुसार ही शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा ये एक इंसानियत के नाते ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने व्हाइट हाउस से यूएस सेंट्रल कमांड के जरिए ये ज्यादा डिटेल्स भेजी है, जबकि दोनों देशों के बीच में अभी भी झगड़ा चल रहा है, उसकी वजह से तेल का दाम ऊपर जा रहा है। अब एस्कॉर्ट करके निकालने का मतलब यही होगा कि जिन लोगों का इस लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, जितनी डिटेल्स मैंने अभी तक इसमें पढ़े हैं, उनको जाने का मौका दिया जाएगा। पर जिन लोगों का इस झगड़े से कुछ लेना देना है, फॉर एग्जाम्पल अगर यूएस ने किसी से मदद मांगी थी और उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया, तो उनके शिप्स को मेरे ख्याल से वो एस्कॉर्ट करके नहीं ले जाने वाले हैं। बट फाइन लाइन्स में और क्या क्या लिखा है पूरी विस्तृत तौर से तो हमने नहीं पढ़ा, पर हाँ यही बड़ी खबर है कि आज से ही या लेट टुडे सोमवार यूएसए समय अनुसार वो बहुत सारे शिप्स को एस्कॉर्ट करके निकालेगा, मतलब कि कोई उनके ऊपर हमला ना कर पाए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी अनाउंसमेंट की है, यही अभी की बड़ी खबर है।

0: परेश रावल और नसीरुद्दीन शाह ये बहुत ही डिफरेंट कैलिबर के स्टार्स हैं। उनको वो अपना काम बहुत ही कन्विक्शन के साथ में करते हैं और उसके बाद वो सेटिस्फाइड है कि हमने अच्छा काम किया, उसके वो सेटिस्फेक्शन से जो देखने वाले उनको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। सो दैट टोटली क्लियरली शोज कि उनको रिवॉर्ड की कोई भी परवाह नहीं होती।
1: लेकिन मेरे लिए अवार्ड क्या है कि मुझे नसीर भाई रात को 11:30-12 बजे फोन करेंगे मुंबई मेरी जान देखने के बाद, परेश क्या परफॉर्म किया, जियो जियो, पेट भर जाता है। या ओमपुरी साहब बोले ए कमीना क्या काम किया है तूने, पेट भर जाता है। दैट्स इट, दैट्स एन अवार्ड।
2: बाद के दिनों में ये दोनों आपके दोस्त बन गए थे?
1: कौन,
2: नसीर भाई और ओमपुरी जी?
1: हाँ, दोस्त नहीं, मैं बहुत रिस्पेक्ट है सर, बहुत रिस्पेक्ट है।
2: अभी संपर्क में हैं आप लोग?
1: हाँ,
2: जैसे आप परेश रावल जब भाजपा के सांसद बन गए और नसीर भाई लगातार सरकार की आलोचना में रहे,
1: तो सर मैं तो एक एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यार, वो कौन है अपने रिपोर्टर है दिबांग
2: जी,
1: दिबांग साहब ना, तो उसमें किसी ने सवाल पूछा था, पूरी पैनल बैठे थे, बोल मैंने देखो नसीर भाई बोलेंगे या आमिर कहेगा या शाहरुख कहेगा, उनको मैं डिस्कार्ड नहीं कर सकता, वो जो कहेंगे मैं सोचूंगा, क्योंकि उनका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, दे हैव नो एक्स टू ग्राइंड। तो वो बोल रहे हैं ना तो मैं वो सुनूंगा, सोचूंगा, सुधारने की कोशिश करूंगा, वो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, उसमें क्या हो गया सर, तो बोलना ही चाहिए ना, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। मेरी, मैं उनको इज्जत देता हूं उनमें और मुझे प्यार करते, उसमें कोई अंतर नहीं आता है।
2: नहीं, दिस इज वेरी अश्योरिंग एंड हार्ट वार्मिंग टू लिसन कि नाइतफाकी हो सकती है वैचारिक रूप से, लेकिन उससे
1: अरे नसीर भाई तो यार, वो तो नसीर भाई तो यार, वो तो वो जो इधर है वो इधर है यार। देर आर वेरी फ्यू पीपल इन आवर इंडस्ट्री, वेरी फ्यू, एक आपके यहां बैठ के गए नाना पाटेकर, वेरी फ्यू पीपल जो इधर हो इधर है। सुकून होता है यार ऐसे लोगों के साथ रहो तो, यू फील सेफ, नहीं तो यू कांट लुक ओवर द शोल्डर अगेन एंड अगेन।
0: और आपकी गलती अगर कभी हो और आप ही के इंडस्ट्री के लोग आपको आकर के एकांत में बताते हैं आई थिंक दिस इज नॉट राइट, आपको उसको ऑफेंसिव तरीके से नहीं लेना चाहिए, यू शुड टेक इट वेरी स्पोर्टिंगली, यार की परवाह करता है यार, इसलिए आकर के सामने से बताने की हिम्मत रखता है। डिजिसेल की ओर से ये सेगमेंट आपके लिए लाया जा रहा था मदर्स डे के अवसर पर। $20 का टॉपअप अगर आप कराते हैं पैसिफिक आइलैंड में कहीं पर भी, या $300 का मनी ट्रांसफर करते हैं माई कैश वॉलेट में, तो आपका नाम ड्रो में जाएगा और इस मदर्स डे पर 15 में से एक $500 कैश प्राइज आपको जीतने का मौका रहेगा। डिजिसेल के साथ में आप कनेक्ट, शेयर और विन दोनों कर सकते हैं इस मदर्स डे पर। पैसिफिक में कहीं पर भी पैसे भेजें या फिर टॉपअप कराएं और इस मदर्स डे पर विनर बन जाएं।
3: पवन,
0: अगले ब्रेक के बाद आज मैं पवन पीडिया में आपको बताने वाली हूँ यही न्यूजीलैंड की एक ऐसी घटना जिसमें मेडिकल सिस्टम की फेलिया के डर से एक माँ ने अपने घर पे ही बच्चे को जन्म दिया और फिर 11 हफ्ते के इस बच्चे की जान चली गई। हालांकि पेरेंट्स की कोई गलती नहीं थी। 2023 में ये घटना घटी। मैं आपके सामने ये बात इसलिए लाना चाहती हूँ कि कभी कभी हमारे माइंड में जो चीज़ें होती हैं वो हमें कहीं का नहीं छोड़ती है, क्योंकि माइंड का जो डर होता है ना उसका निकालना बहुत ज़रूरी होता है बहुत ही लॉजिक तरीके से। मैं आपको ये न्यूज़ स्टोरी बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। सो प्लीज़ कीप ट्यून्ड पवन पीडिया में, मैं इसके बारे में बताऊंगी, यही न्यूजीलैंड की एक घटना है।
4: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल प्रोजेक्ट।
5: ये होगा संडे 17th मई को 11 AM टू 4 PM
4: 378 आरारीमू रोड रामा साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर्स, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, इन बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ।
5: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर।
4: One temple, one community, eternal blessings.
3: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
2: Mummy, earphone kaan mathi nikal jara.
6: હે શું કીધું દીકરા?
2: અરે કેટલા વર્ષથી નવું ઘર કરતી હતી, આપણે લઈ લીધું ને ઇન્ડેલેબલ વાળાનું નવું ઘર.
6: તું કેટલો સારો છો દીકરા.
2: મમ્મી નવું ઘર છે, સાચવ જરા, બધું અહીંયા વેરવિખેર પડ્યું છે.
6: તમે ઝેન્ઝી વાળા ઘરડીમાં કામ કરાવો છો, હે ભગવાન.
2: મમ્મી
6: ઘર બનાવવા વાળાનો ખૂબ ખૂબ આભાર.
2: ધન્યવાદ ઇન્ડેલેબલ હોમ્સ.
0: ન્યુઝીલેન્ડ કે મોસ્ટ ટ્રસ્ટેડ ઓર એક્સપિરિયન્સ સબ ડિવિઝન એન્ડ બિલ્ડિંગ સ્પેશિયલિસ્ટ ઇન્ડેલેબલ હોમ્સ. ફોન 0800-233-111.
5: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड. सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिड डे एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर.
7: 3 मिनट का पवनपीडिया, नो समथिंग न्यू ऑन पवनपीडिया.
0: सो पेरेंट्स ने एक छोटे से बच्चे को नोटिस किया था कि धीरे धीरे उनके उसका वेट नीचे जा रहा है, गाल कम हो रहे हैं और धीरे धीरे वेट इसका नीचे जा रहा है. और घर पर इस बच्चे को रखा था, किसी भी तरह से डॉक्टर की हेल्प इन्होंने नहीं ली थी तब तक जब तक बच्चे ने सांसें लेनी बंद नहीं कर दी थी. कोरोना ईएन चैलफोर्ड ने ये डिटेल्ड रिपोर्ट अजारिश या अजारिया लेवी के बारे में निकाली है. 11 हफ्ते के इस बच्चे की को वेकाटो अस्पताल में नवंबर 16, 2023 में ले जाया गया था, जहां पर बताया गया कि उनकी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे. अजारिया के बारे में बताया गया कोरोना की रिपोर्ट में कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से उसका वेट नहीं ऊपर जा रहा था या उसकी बॉडी कोप नहीं कर पा रही थी, न्यूट्रिएंट्स ले नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से पैथोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया कि उन बॉडी न्यूट्रिएंट्स ले नहीं रहा था, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से फॉल्टरिंग ग्रोथ, बच्चा बढ़ नहीं रहा था और अल्टीमेटली उसकी जान चली गई. इस बच्चे की विदाउट मिडवाइफरी सपोर्ट इस बच्चे के पेरेंट्स ने घर पर ही इस बच्चे को जन्म दिया था, क्योंकि हेल्थ सिस्टम में उनके साथ में माँ अरियाना लेवी ने बताया कि कुछ क्लिनिकल एरर्स हो गए थे उनके प्रीवियस प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज हुए थे, जिसके डर के मारे उन्होंने दूसरा बच्चा अस्पताल में ना पैदा करके घर पे पैदा करने को ठाना. अजारिया अपेरेंटली बहुत ही हेल्थी बोर्न हुआ था, बट जो फोटोज एविडेंस के तौर पर डाले गए थे उसमें वो बच्चा बहुत ही वीक दिख रहा था, बहुत ही कमज़ोर दिख रहा था. चेहरे को देख के ऐसा लगता था हड्डियों के ऊपर सिर्फ चमड़ी ही है. 11 हफ्ते के बच्चे को देख के लगता था कि ये 4.5 हफ्ते का बच्चा होगा. अप्रोक्सीमेटली ये 3 kg ही, ये बेबी 3 kg ही वजन में था. उनके पेरेंट्स अरियाना और एलन लेवी, उन्होंने नोटिस किया कि नवंबर 12 को कि बच्चा थोड़ा अनसेटल्ड लग रहा है, थोड़ा परेशान लग रहा है. फॉलोइंग डे से उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को हम वो उसका उसकी फीडिंग रिड्यूस हो गई थी, वो कम खाने पीने लग गया था और बहुत दुबला लगने लगा था, तो उनके पेरेंट्स ने उसको 2 घंटे के बजाय एवरी आवर पर फीड करना शुरू किया ताकि बच्चे को इनफ न्यूट्रिएंट्स मिल सके. पुलिस ने फिर एक डायरी पाई उनके पास, जहाँ पर वो लिखते थे कि बच्चे को कितना पिलाया जा रहा है दूध. साथ में स्टेथोस्कोप भी था और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिली थी, जो वो बच्चे के हीलिंग के लिए कुछ प्रेयर था उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में. उस प्रेयर में बच्चे के ठीक हो जाने के लिए लगातार उसमें चांटिंग चल रही थी. नवंबर 15, 2023 को शाम को 6 बजे बच्चे के पेरेंट्स ने देखा कि बच्चे को सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और उसका रंग भी थोड़ा सा नीला पड़ रहा है. हालांकि ये शाम को 6 बजे उनको लगने लगा था, लेकिन एम्बुलेंस को उन्होंने रात को 11:30 बजे के करीब रिंग किया, जब बच्चे ने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया. पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसमें इस डेथ में हुई, कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी किसी के ऊपर नहीं किया गया, लेकिन कोरोना टेलफोर्ड ने रिकॉर्ड किया कि कॉज ऑफ डेथ अनअसर्टेन था, लेकिन ये प्रिवेंट किया जा सकता था, बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। कोरोना ने कहा कि क्लियरली पेरेंट्स को लगा था कि बच्चा वेट लूज कर रहा है, तो उन्होंने इसके लिए क्या कदम उठाए अपार्ट फ्रॉम उसको ज़्यादा फीड करने के लिए या फिर प्रेयर चांट सुनाने के लिए अलावा उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने हेल्थ प्रोफेशनल्स को कॉन्टेक्ट किया, उनसे पूछा कि बच्चे के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? अगर समय पर बच्चे को मेडिकल इंटरवेंशन मिल जाती तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद इसकी जान बचाई जा सकती थी। कोरोना ने रेकमेंड किया है जितने भी पेरेंट्स हैं वो बच्चों को फ्री वेल चाइल्ड तमेरिकी ओरा सर्विसेज में ज़रूर से भर्ती कराएं और इमीडिएट 3111 पर कॉन्टैक्ट करें अगर बच्चे को लेकर के कोई भी दुविधा हो रही है। बच्चा अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर अटक अटक के सांस ले रहा है या नीला पड़ रहा है तो आपको 111 पर तुरंत बगैर इंतज़ार किए रिंग करना ही चाहिए।

0: दीवाना।
1: एक दीवाना शहर में
0: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

0: drawing inspiration from urban communities around the world.
1: We present Pick O Toy Toy, a brand new urban development in Papa Toy Toy. Brick, low maintenance, 2 and 3 bedroom homes from 649,000.
0: 5 minutes from New World, eateries, schools, City Rail Link, Pohinui Bus Interchange and major motorways.
1: Join the new community. Selling now. Find out more at pikotoetoe.nz.
0: That's pikotoetoe.nz.
2: साली जी, ऑकलैंड फिर कब आओगी?
3: जी जू, मैं तो स्पेशली यहाँ क्राइस्टचर्च से बार बार ऑकलैंड बेकन बीन्स के लिए आती थी, पर आपको पता है अब हमारे यहाँ क्राइस्टचर्च में ही बेकन बीन्स खुल गया है, या एट 268 लिंकन रोड एडिंगटन क्राइस्टचर्च। अब यहाँ पे बेकन बीन्स के

0: हमेशा याद करके LAWA वेबसाइट देखें। तैरने जाने से पहले LAWA.org.nz देख लें। साउथ कोस्ट के तारकेना बे से दूर रहें। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर तट के करीब डिस्चार्ज हो सकता है शॉर्ट नोटिस पर और बगैर चेतावनी के, खासतौर पर गंभीर बारिश के समय। और जानकारी के लिए wellingtonwater.co.nz देखें।
1: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर।
2: What say Kiwi Indians? Top trending talks, Pawan के साथ।
3: सबसे पहले भारत की खबरों में, तो इंडिया ने फॉर्मली नेपाल के उस प्रोटेस्ट का खंडन किया है कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट को लेकर के, जो लिपुलेख से होकर के जाता है। इंडिया ने साफ तौर से कहा है कि ये रास्ता तो कई सालों से अपनाया गया है, 1954 से इसी रास्ते से सफ़र कर रहे हैं जितने भी पिलग्रिम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कोई कि कोई नया रास्ता ढूंढ के निकाला गया है। तो गौरतलब हो कि नेपाल ने ये प्रोटेस्ट किया था, एक लॉज किया था दोनों चाइना और इंडिया के खिलाफ, और उन्होंने ये कहा था कि जो पिलग्रिमेज रूट है ये 1816 में सुगौली ट्रीटी के तहत ये जो इलाका है ये नेपाल के इंटेग्रल पार्ट ऑफ नेपाल में आता है। पर इंडिया ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है इस मुद्दे पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी तरह से इन पिलग्रिमेज को रोक सकते हैं। दैट्स इंडिया। फिजी की खबरों में, पुलिस अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। एक स्कूल स्टूडेंट नंबुआ टॉपलाइन बस स्टॉप पर बस के लिए इंतज़ार कर रहा था और वहीं बस स्टॉप पर उनको बंदूक की गोलियां मिली। 13 rounds ऑफ एम्युनिशन उनको मिला यहां पर। पुलिस ने कहा है कि वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं इसकी ऑथेंटिसिटी की, कि किस तरह की बंदूक की गोलियां ये है, ये फंक्शन करती भी और कहां से ये लाई गई है, पूछताछ जारी है। मीनवाइल जो एम्युनिशन फाइंड रिपोर्ट है 21st of April को 2026 मिलिट्री ट्रेनिंग को लेकर के, इस पर भी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, इसलिए बंदूक गोलियां वेपन्स का बैरक से चले जाना, ये सब बहुत सारे बड़े बड़े सवाल अभी फिलहाल फीजी में आ रहे हैं। उसी पर ये गोलियां पाना एक बड़ी खबर है।

0: Chemist Warehouse has now opened in Fangaparoa. Find the new Chemist Warehouse in Fangaparoa next to the Coast Shopping Mall.
1: With the biggest range of all your health and beauty essentials at the lowest prices, they've got everything you need to look and feel your best. They are open 7 days a week from early till late, including public holidays. If you can't make it in-store, shop online 24/7. Chemist Warehouse, great savings every day.
2: डैडी कैसे? राम राम।
3: ठीक बेटा, राम राम। घर बने? कहाँ तक पहुँचा?
2: पेंटिंग हुए है डैडी।
3: कितना अच्छा बिल्डर मिल गए रे। का नाम है उन लोगों के?
2: इनडेलिबल होम्स।
3: हमारे पास भी 10-15 घर रहता, अगर हमारे टाइम पे ऐसा बिल्डर मिल जाता।
2: अभी भी सकता बनाए डैडी, बनाए के हमें दे दो। हाँ,
3: वाह।
1: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इनडेलिबल होम्स। फोन 0800-233-111।
4: What kind of businesses run on Business Fiber? Businesses with no time for downtime, businesses that could flatline when deadlines are missed, and businesses that simply can't afford to be offline. If you need fast restoration when there's a network outage, get your business running on Business Fiber.
5: At Bunnings, you know you're going to get the lowest prices every day. Because where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
6: Bunnings Warehouse.
5: Lowest prices are just the beginning.
7: पवन के साथ सुनो, कहानी अभी बाकी है।
8: कहानी का टाइटल है आ अब लौट चले। थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं कि कहानी में लास्ट वीक हमने क्या बताया था। एक व्यक्ति है, ये अपने परिवार को छोड़ करके एक दूर दराज शहर में काम करने के लिए आया है, बैंक में काम करने के लिए आया है। बस स्टॉप पर एक महिला से मुलाकात हुई, थोड़ा सा आकर्षण हुआ और वही महिला उनके बैंक में भी आई, जहाँ पर लोका के संदर्भ में वो उनसे बातचीत कर रही है। आउट ऑफ द वे जा करके उसके आकर्षण में पड़ के ये उन इस कस्टमर की देखरेख कर रहा है। धीरे धीरे औपचारिकता के साथ साथ में 11 बजे के बाद उनको बुलाया गया था कि वो आए और फॉर्मेलिटी कर दी जाएगी उनके लौका के लिए। काफ़ी इंतज़ार के बाद 2 बजे तक वो वहाँ पर आई और कैबिन की चरमराहट पर थी उनकी नज़र। नमस्ते, हर बार की तरह संक्षिप्त शब्दों में उसने मुस्कुराकर कहा और कागजात देते हुए बोली, ये लीजिए सारे पेपर्स, राशन कार्ड, फोटो और जो आपने मंगवाए थे। बैठिए प्लीज। उसके हाथ से पेपर्स लेकर के मैंने पूछा, कुछ लेंगे आप? नो थैंक यू, बच्चे स्कूल से घर आने वाले हैं, स्कूल में ही थोड़ा लेट हो गई थी। पहले सोचा कि कल आऊंगी, फिर लगा न जाने क्या क्या आप क्या सोचेंगे। थोड़ी बहुत खाना पूर्ति कर उसे लॉकर दिलवा दिया और अपना ताला लॉकर में लगवाने को कहा। जैसा कि नियम था, मुस्कुराकर वो आभार प्रकट करती चली गई। एक सवेरे जॉगिंग करते हुए मैं पार्क में पहुंचा तो वो लंबे कदमों से चक्कर लगाने में लीन थी। मुझे देखकर एक क्षण के लिए रुकी भी, शायद पहचानने का प्रयत्न कर रही थी। पर शुरुआत मैंने ही की, बोला, मेरा नाम जानती हो? मेरी बात काटती हुई हाथ जोड़ करके बहुत ही शिष्ट व्यवहार से वो बोली, आपको भला कैसे भूल सकती हूँ, 5 साल से जो नहीं हो पाया वो 2 दिन में आपने कर दिया। उसके पहने हुए नीले रंग के ट्रैक सूट और महंगे जूते उसकी पसंद और छवि को दुगना कर रहे थे। इस शहर में तो इन वस्तुओं का उपलब्ध होना संभव नहीं था, परंतु उन सब के बावजूद बिना किसी मेकअप के उसके चेहरे में गजब की कशिश थी। कोई भी साहित्यकार मेरी आंखों से देखता तो शायद तारीफ में इतिहास रच डालता। यहाँ कैसे आप? कहीं पास में ही रहते हैं क्या? मैंने पूछा। जी, सामने वाले सोसाइटी में। घूमते घूमते इधर निकल आई, रविवार था, कहीं जाने की जल्दी तो नहीं थी। एक ही पार्क है यहाँ। बातों बातों में उसने बताया कि 2 छोटे बेटे हैं, पति आर्मी में मेजर है और दूसरी जगह पोस्टेड है, छुट्टियों में आते रहते हैं, समय बिताने के लिए उसने ये सब शौक रखे हैं, वरना नीरस से जीवन में क्या रखा है। न जाने क्यों पहले दिन से ही उसके प्रति आकर्षण था और उसका प्रत्येक हाव भाव मेरे दिमाग पर अजीब सी मीठी कसक छोड़ता रहा। मुझे उससे मिलने का नशा सा हो गया। रविवार को मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता रहता और वो भी पार्क में आती रही। हम दोनों पार्क के 2 चक्कर तेजी से लगाते और फिर तीसरी बार में इधर उधर की बातें करते रहते। मैं बैंक की बताता और वो अपने स्कूल के शरारती बच्चों के बारे में। उसका इस तरह नियमित समय से आना लगभग तय था। चेहरे की मुस्कुराहट तथा भाव से उसका भी मेरे प्रति झुकना कोई असामान्य नहीं लगा। एक दिन अपना उम्र प्रमाण पत्र साहित्यपति कराने बैंक में आई तो उसमें लिखी उम्र देख करके मैं तो थोड़ी देर के लिए हैरान ही रह गया।

0: अब दौर से कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है, वरी मत कीजिए। स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस के आपकी मदद के लिए तैयार हैं। यहाँ आपको मिलता है 24 आवर्स सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े छोड़ दीजिए और इनकी टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको बिल्कुल तैयार देगी। यहाँ सूट्स, बिजनेस शर्ट्स, ड्रेसेस और फॉर्मल वेयर के प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं, और ड्यूवे ब्लैंकेट्स, स्पोर्ट्स गेयर की सफाई भी यहाँ पर होती है। स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स, 220 स्टोडार्ड रोड मॉन्ट्रोस, आसान, भरोसेमंद और 24/7।
1: A good lawyer is recognized for their experience, trustworthiness and understanding of their client's legal needs. Over the past 30 years, Schaubner is chosen by many, consultant with Sutcliffe Matson Law, now based in new premises at Botany Junction. For property, business, subdivisions, leasing, relationship property, wills, trusts, powers of attorney and other legal matters, call Schaubner on 021-625-708 or email schaubner@smlaw.net.nz.
2: India jana hai? तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए। Fly with Air India from New Zealand. Easy return connections via Australia or Singapore to India. और फिर seamless travel within India. दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, Air India connects you to every corner of India. वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही friendly Indian hospitality के साथ। तो अगली बार घर का सफर हो, Fly Air India. For more information, visit your local travel agent today.
3: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
4: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
5: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.
6: Let's see ki aaj vibes kaisa hai, vibe kaisa hai New Zealand ka.
7: ग्लोबल एनर्जी प्राइस के ऊपर जाने के कारण से एपी मेला मैस्क ने अपने फ्रेट चार्जेस को 27% से बढ़ाने की अनाउंसमेंट की है। कंपनी के मुताबिक वह अपने इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट यानी कि रेल, सी और रोड सभी चार्जेस को 27% से बढ़ाने जा रही है। फ्यूल सिक्योरिटी पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफ लक्सन सिंगापुर गए हुए हैं। व्यापार मंत्री टॉड मैकले और फाइनेंस मिनिस्टर निकोला वेलेस भी इस दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ में गई हुई है। दोनों देशों के बीच में सालाना रूप से $11 बिलियन का व्यापार होता है। सिंगापुर न्यूजीलैंड में सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। सिंगापुर का मुख्य व्यापार फ्यूल, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन और टेक है। वहीं न्यूजीलैंड बड़ी मात्रा में भोजन सामान सिंगापुर को सप्लाई करता है। इस दौरे पर सिंगापुर के साथ में फूड फॉर फ्यूल वाले समझौते को और मजबूत किया जा सकेगा। देश में पिछले 10 दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में 18 लोगों की जान चली गई। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 20 अप्रैल से लेकर पिछले 10 दिनों में 14 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 18 लोगों की जान चली गई है। 18 में से 16 लोगों की मौत ऐसे रास्तों पर हो गई जहां पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पे आवा है तथा वहां ट्रैफिक सेफ्टी बैरियर्स नहीं है। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर डेविड सीमो का कहना है कि वे इसलिए माइग्रेंट्स के इंग्लिश रिक्वायरमेंट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें शिकायत मिलने लगी है कि जो माइग्रेंट्स बिना इंग्लिश टेस्ट के देश आते हैं उनके लिए ट्रांसलेशन पर बहुत समय बर्बाद हो रहा है।
8: I talk to people who work in healthcare who normally would say, mate, without migrants, we wouldn't have a hospital, so you know, you've got to get on board. What they're now saying is actually the amount of time that I spend dealing with people that came in as partners, parents or dependents who didn't have to face an English language test, the amount of time we spend, the amount of translating that we require, it's actually gunking up the whole healthcare system where I work.
7: अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होमोस से जहाजों की आवाजाही यूएस के नेतृत्व में होगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसे प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम दिया है। अमरीकी राष्ट्रपति ने स्ट्रेट ऑफ होमोस खोलने के लिए कई देशों से मदद की मांग की। अब अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अमरीका स्ट्रेट ऑफ होमोस से वेसल को एस्कोर्ट करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ में सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है जिस पर गौर किया जा रहा है।
9: Doing very well with regard to just about everything, but doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader Khomeini. But we'll see.
7: Full news next hour. Pal.
10: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक है म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन।
11: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन। नया घर बना रहे हैं या एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आज ही कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871 पर।
6: दिलीप और समीर सेन ये चाचा भतीजे की जोड़ी है, साथ में इन्होंने म्यूजिक देना शुरू किया अर्ली 90s में और उन्होंने कुछ बहुत ही जानी मानी फिल्मों के अच्छे अच्छे गाने पर म्यूजिक दिया है। इस हफ्ते भर वो गाने आप सुनेंगे। इनके ही सामने उतनी नज़र कभी नहीं की कि पर्टिकुलर म्यूजिक पर किसने म्यूजिक दिया है, पर्टिकुलर सॉन्ग पर किसने म्यूजिक दिया है। आप में से कई लोगों ने दिलीप सेन समीर सेन का नाम तो सुना होगा पर आपको नहीं पता होगा कि ये म्यूजिक डायरेक्टर्स थे या कितने अच्छे अच्छे गानों पर इन्होंने म्यूजिक दिया है। इस हफ्ते भर ही हम आपको सुनाने वाले हैं इनके कुछ जाने माने काम में। फिल्म 1993 की फिल्म आईना के गानों पर इन्होंने म्यूजिक दिया था। अफलातून या पोस्टर लगवा दो बस 1997 ये दिलीप सेन समीर सेन का म्यूजिक था। अर्जुन पंडित अनाड़ी नंबर वन ये कुछ जाने माने गानों पर इन्होंने म्यूजिक दिया है। समीर सेन ये एक म्यूजिक घराने से खुद बिलोंग करते हैं और डांस गुरु के ये और म्यूजिक शंभू महाराजा सेन के ये बेटे हैं और उन्होंने अपने नेफ्यू दिलीप सेन के साथ में काम करना 90s में शुरू किया। इनका एक बेटा है सोहेल सेन, दिलीप सेन का बेटा है। वत्स योर राशि, एक था टाइगर मूवीज में इन्होंने भी म्यूजिक दिया है। सो इस हफ्ते भर उनके नगमे हम आपको सुनाते रहेंगे। यू विल बी इंट्रीग्ड टू नो कि क्या क्या म्यूजिक इन्होंने दिया था। अगला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ इस पर म्यूजिक देने के लिए उनको नॉमिनेशन भी अवार्ड्स के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में, रेडियो अवार्ड्स बोलने वाली थी, फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए दिया गया था। फिल्म का नाम द डॉन, साधना सरगम और कुमार सानू। वो गाना सुनाने से पहले मैं चार गानों की झलक आपको सुनाना चाहूंगी जो हमारे साथियों ने तैयार कर रखी है। जैसे 90s की रानी आज प्रोग्राम की शुरुआत 12 बजे के बाद इस गाने के साथ करेंगी।

0: ਬੁਲਾਣਾ ਤਰਾਨਾ
1: ਰੇਡੀਓ ਤਰਾਨਾ Time check.
2: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
3: A very good afternoon, listeners. Tarana clock mein madhyan 12 baj chuke hain.
4: This is Urdu News.
5: ईरान ने पाकिस्तान की इस आलसी के जरिए अमेरिका को अपनी जवाबी तजावीज पहुंचा दी हैं, जिनमें बुनियादी तवज्जो जंग बंदी की बजाय जंग के मुकम्मल खात्मे पर मरकूज है। ईरानी सरकारी खबर रसा इदारों के मुताबिक अमेरिका की जानिब से पेश की गई 9 नुकाती तजावीज के जवाब में ईरान ने 14 नुकात पर मुश्तमिल अपना मौकफ वाशिंगटन तक पहुंचा दिया है। खबर रसा इदारे तस्नीम के मुताबिक अमेरिका ने 2 माह की जंग बंदी की तजवीज दी थी, तहम ईरान ने इसके बरक्स मुतालबा किया है कि तमाम मामला 30 दिन के अंदर हल किए जाएं और जंग बंदी में तोसी की बजाय मुस्तकिल और हतमी खात्मे को तरजीह दी जाए। ईरान की तजावीज में चंद अहम नुकात भी शामिल हैं, जिनमें मुस्तकबिल में हमलों से गुरेज की जमानत, ईरान की तरफ से अमरीकी अफवाज का इनखला, बहरी नाकाबंदी का खात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली, जंगी नुकसान का अजाला, तमाम इकतसादी पाबंदियों का खात्मा, लेबनान समेत दीगर महाजों पर कशीदगी का अख्तितम और आबनाए हरमूज के लिए एक नया निजाम भी शामिल है। ईरानी हुकाम का कहना है कि वो इन तजावीज पर अमरीका के बाजाबिता रद्द अमल के मुंतजर हैं। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान देते हुए कहा था कि वो ईरानी मंसूबे का जायजा लेंगे, लेकिन इब्तदाई तौर पर इसे काबिले कबूल नहीं समझते। दूसरी जानिब ईरानी दफ्तर खारजा ने अमरीकी सदर के एक और बयान पर सख्त रद्द अमल दिया है। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरानी बहरी जहाजों की जब्ती को खुद कजाकी करार दिया, जो बैन अलावामी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी का एतराफ है। उनका कहना था कि यह बयान किसी लग्जिश का नतीजा नहीं बल्कि अमरीकी इकदामात की मुजरिमाना नोयत को जाहिर करता है। तर्जुमान ने आलमी बिरादरी, अकवामे मुत्तहिदा के रुकन मुमालिक और सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि वो ऐसे इकदामात को मामूल का हिस्सा बनने से रोकें और वाजह तौर पर इनकी मजम्मत करें। उधर ईरानी सदर मसूद पजिश्कियान ने असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर अपने बयान में कहा कि मुल्क के दिफा में सामने आने वाली हालिया कामयाबियों का सेहरा असातिज़ा को जाता है, जिन्होंने नई नस्ल को ईमान, कुर्बानी और वतन से मोहब्बत का दर्स दिया। याद रहे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के इस तनाजर में सिफारती कोशिशें भी तेज हो गई हैं और पाकिस्तान की सालिसी को इस अमल में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान की जानिब से पेश करदा मंसूबे का जल्द जायजा लेंगे, तहम इब्तदाई तौर पर इसे काबिले कबूल नहीं समझते। फ्लोरिडा के इलाके पाम बीच में मियामी रवानगी से कबल साफियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ये इम्कान मौजूद है कि अमरीका ईरान के खिलाफ अपने हमले दोबारा शुरू कर दे। उनके मुताबिक इन्हें मुजवजा माहिदे के मजमू खदोखाल से आगाह किया जा चुका है, तहम इसकी मुकम्मल तफसीलात अभी फराहम की जानी बाकी हैं।
6: Start military strikes on targets.
7: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, sir.
5: दूसरी जानिब ईरान ने वाजे किया है कि इसकी तजावीज का मकसद मुस्तकिल बुनियादों पर जंग का खात्मा है। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी के मुताबिक ये तजावीज पाकिस्तान के जरिए बतौर सालिस अमरीका तक पहुंचाई गई हैं और अब फैसला वाशिंगटन को करना है कि वो सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करता है या कशीदगी को बरकरार रखता है। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पैगाम में ईरान पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ईरान ने गुज़िश्ता कई दहाइयों के दौरान अपने इकदाम की भारी कीमत अदा नहीं की। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी सदर की जानब से मुस्तरद की गई तजावीज में आबनाए हरमुज में कश्ती रानी की बहाली, ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी मुहासरे का खात्मा और दीगर कशीदगी कम करने के इकदाम शामिल थे, जबकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल मुजाकर